मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़। न्यूज़ ऑन AIR ऐप, DTH और वेब्स OTT पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आज बुधवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 31वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 22 जुलाई 2026। सुबह के 5:56 हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 6 बजने को हैं। हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। सरकार संसद में नीट से संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉ जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है।
2: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
1: नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए सभी विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है। इनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हैं। इन नेताओं को लोक कल्याण मार्ग के पास प्रदर्शन स्थल से हिरासत में लिया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तर मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। स्कुब्जे में भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार फोरम में राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के बीच मौजूदा व्यापार वास्तविक क्षमता से बहुत कम है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस दशक के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो सकेगा। किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तर मैसेडोनिया की पहली यात्रा द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता दर्शाती है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर की 2 दिन के फिलीपींस यात्रा आज से शुरू हो रही है। वे मनीला में आसियान रूपरेखा के अंतर्गत विदेश मंत्री स्तर की बैठकों में शामिल होंगे। इनमें आसियान भारत ईस्ट एशिया सम्मेलन और आसियान रीजनल फोरम की बैठकें शामिल हैं। विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका के विदेश मंत्रियों के साथ

0: क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भी शामिल होंगे। उनके द्विपक्षीय बैठकें करने की भी उम्मीद है। भारत ने अफगानिस्तान के नूरिस्तान में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री भेजी है। खाद्य सामग्री और टेंट सहित अन्य राहत सामग्री अफगानिस्तान के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को भेजी गई है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत इस कठिन समय में अफगानिस्तान के संकटग्रस्त लोगों के साथ है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु का दौरा करेंगे। श्री राधाकृष्णन कोयम्बटूर में जीएनकेएनएम नर्सिंग कॉलेज के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति तिरुप्पुर में अविनाशी लिंगेश्वर शिव मंदिर भी जाएंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री श्री मोदी को विजयनगरम जिले के भोगपुरम में अलूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के लिए आमंत्रित करेंगे। इस हवाई अड्डे का उद्घाटन 1 अगस्त को प्रस्तावित है। श्री चंद्रबाबू नायडू केंद्रीय मंत्रियों अमित शाह, पीयूष गोयल, मनोहर लाल खट्टर और सीआर पाटिल के साथ राज्य से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये पुरस्कार साहसिक गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। नामांकन 20 अगस्त तक गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर कर सकते हैं। युवा कार्यक्रम विभाग ने माई भारत पोर्टल पर राष्ट्रीय ध्वज प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। ये प्रश्नोत्तरी 15 अगस्त तक खुली रहेगी। इस पहल का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास, विकास, महत्व और गरिमा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस प्रश्नोत्तरी में बहुविकल्पीय 20 प्रश्न हैं। 10 मिनट के अंदर इनके उत्तर देने होंगे। हॉकी इंडिया ने हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। विश्व कप 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स में आयोजित किया जाएगा। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे। भारत का पहला मैच 15 अगस्त को वेल्स के साथ होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। इस कार्यक्रम में आज का विषय है तिल की खेती। इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं दिनेश कुमार सिंह।
2: भाइयों, आज हम तिल की खेती के बारे में चर्चा करेंगे। इसकी बुआई का सही समय जुलाई माह का दूसरा पखवाड़ा है, अतः आप सही समय पर इसकी बुआई करें। खेत तैयार करते समय यह बात ध्यान दें कि खेत की मिट्टी मध्यम किस्म की हो और उसमें फालतू पानी के निकासी की पूरी व्यवस्था हो। बरसात के मौसम में बुआई करते हैं, अतः जब खेत जोतने लायक हो तो 3-4 बार जोतकर खेत तैयार कर लेते हैं। तिल की फसल को जिन उर्वरकों की आवश्यकता होती है उन्हें हम दो बार में प्रयोग करते हैं। एक तो खेत की तैयारी करते समय और दूसरा खड़ी फसल में पहली बार निराई गुड़ाई के बाद। खेत की तैयारी के समय जो उर्वरक देते हैं उसे कोण में और जो उर्वरक खड़ी फसल में देते हैं उसे भूरख कर प्रयोग करते हैं। जहाँ तक उर्वरक की मात्रा का प्रश्न है तो उर्वरक की सही मात्रा तो मिट्टी की जांच कराने से ही मालूम होती है। उर्वरक देने का सबसे सही तरीका यही है और यदि मिट्टी की जांच न करा सकें तो तिल की फसल के लिए जो सामान्य मात्रा वैज्ञानिकों द्वारा निर्धारित की गई है उसे प्रयोग करें। यदि मिट्टी की जांच कराए हैं तो उस अनुसार और यदि मिट्टी की जांच नहीं कराए हैं तो तत्व के रूप में 6 किलोग्राम नत्रजन और 6 किलोग्राम फास्फोरस, कहने का मतलब ये कि लगभग 14 किलोग्राम यूरिया और 36 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट खेत की तैयारी के समय और 14 किलोग्राम यूरिया पहली निकाई के बाद टॉप ड्रेसिंग करते हैं। खेत की तैयारी हो जाने के बाद अच्छी प्रजाति वाला बीज लेकर फिर बुआई करते हैं। तिल की उन्नतशील प्रजातियों में टाइप 4, टाइप 12, टाइप 10, टाइप 78, टाइप 32 और शेखर प्रमुख हैं। इनमें से जो भी प्रजातियां मिल जाएं लेकर के बुआई करें। एक हेक्टेयर में बुआई हेतु 3-4 किलोग्राम बीज लगता है, कहने का मतलब ये कि एक बीघा जो कि 20 बिस्वा का होता है उसमें 1 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। बीज से फैलने वाले रोगों से फसल को बचाने के

0: जेली इसे थीरम दवा से शोधित करते हैं। 1 किलोग्राम बीज के शोधन के लिए 2.5 ग्राम थीरम दवा पर्याप्त होती है। बीज शोधन के बाद उसकी बुआई करते हैं। बुआई हल के पीछे कोणों में और बीज कम गहराई पर बोने चाहिए। कोण से कोण की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर यानी 1 से 1.5 फीट होनी चाहिए। बरसात की फसल होने के कारण वर्षा होने पर सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, किंतु फसल में जब लगभग 25 से 30% फली लग जाए और खेत में नमी की कमी हो तो उस समय एक हल्की सिंचाई अवश्य करनी चाहिए। जहाँ तक तिल की फसल में निकाई की बात है तो इसमें पहली बार उस समय निकाई करते हैं जब पौधे 20 से 25 दिन के हो जाते हैं। इससे खरपतवार नष्ट हो जाते हैं, इससे पौधों को अधिक खुराक मिलती है तथा गुड़ाई हो जाने से मिट्टी में वायु संचार बढ़ता है, जिससे मिट्टी के जीवाणु सुचारू रूप से अपना कार्य करते हैं और पौधा स्वस्थ रहता है। इसी निकाई के समय एक कार्य और करना चाहिए, जो पौधे ज़्यादा घने हो गए हों उन्हें उखाड़कर स्वस्थ पौधों के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर निर्धारित कर देनी चाहिए। पौधे जब 30 से 35 दिन के हो जाएं, तो एक बार एक और निकाई कर देनी चाहिए। तो इस तरह से इन सब बातों को ध्यान में रखकर तिल की खेती करनी चाहिए।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। आज के विषय तिल की खेती पर जानकारी दे रहे थे दिनेश कुमार सिंह।

ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आराधना। प्रेम और समर्पण हमेशा एक भक्त को संपूर्ण बनाते हैं और यही भाव मनुष्य के ज्ञान पटल को समृद्ध कर भक्ति के सही अर्थ को स्थापित करता है और भक्त को अपने आराध्य के दर्शन करवाता है।

जब भक्त को अपने आराध्य के दर्शन प्राप्त होते हैं तो इसका अर्थ है कि सही में भक्ति सिद्ध हो चुकी है और अब मनुष्य के ज्ञान और वैराग्य का प्रकाश उसके आसपास की प्रकृति को भी सौहार्दपूर्ण बनाना शुरू कर चुका है।

भक्ति जब पूर्ण होगी तो वो इतनी समृद्ध होगी कि वो अपने आसपास के समस्त वातावरण को भाव विभोर कर देगी और उस पूर्णता को प्राप्त किए भक्त के संपर्क में आने वाले समस्त चर अचर प्राणियों को भी भाव विभोर कर प्रेम में समृद्धता प्रदान करेगी। भक्ति के सफल होने का एकमात्र संकेत यह है कि वह भक्त को पूर्ण भाव प्रदान करके उसे एक उत्तम विचार की ओर अग्रसित करती है।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम आराधना। आज के कार्यक्रम में कलाकार थे नरेंद्र चंचल, चित्रा सिंह और संजय तलवार। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम विचार बिंदु। आज का विषय है बंधन और मुक्ति।
1: इस नश्वर संसार को अपना मान लेना ही बंधन है, जबकि इसे ईश्वर का मानना ही मोक्ष अथवा मुक्ति है। संसार का कोई भी संबंध और वस्तु स्थिर नहीं है, उन सबको एक दिन छोड़ना ही पड़ता है। जैसे किसी यात्रा के समय जिस सीट पर हम बैठते हैं उसे हमें छोड़ना ही पड़ता है, वैसे ही सांसारिक यात्रा पूर्ण होने पर हमें करना पड़ता है। जीवन में तेरी मेरी और मेरा तेरा का द्वंद्व उसी दिन विराम ले लेता है जिस दिन पंच भौतिक शरीर प्राण शून्य हो जाता है। अतः समय और स्वस्थ रहते हुए ही हमें आत्मकल्याण का साधन कर लेना चाहिए, क्योंकि आग लगने पर कुआं खोदने से क्या लाभ। आज सत्संग से विमुख हो रहा मनुष्य भटकाव का शिकार हो गया है। वो धन बल और वैभव आदि को ही सत्य मान लेता है। स्मरण रहे कि मरण धर्मा संसार में अनेक जीव आते जाते हैं, किंतु लोक में उसी का आना जाना उत्तम है जिसने अपने जीवन काल में मानवता के लिए कोई ऐसा महनीय कार्य किया हो जिसका जनमानस सम्मान करते हुए उसे अपने आचरण में उतार कर वैसा ही करने का प्रयास करे। वस्तुतः जिसके सत्कार्यों का गुणगान जनमानस करे वो सदा मुक्त है। जीवन की प्रत्येक अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति ही सांसारिक बंधन है, और अनुकूलता और प्रतिकूलता में सम रहना ही विमुक्त पुरुषों के सुलक्षण है। जिसे भी नश्वर संसार के बंधनों से मुक्ति की अभिलाषा हो वो केवल दो कार्य करे। प्रथम, स्वयं को उपलब्ध धन जन और ऐश्वर्य आदि में अपनत्व का भाव और जो नहीं प्राप्त है उन कामनाओं का परित्याग। ये याद रखना चाहिए कि व्यक्ति कर्मों से बंधन में नहीं होता, अपितु कर्मों में आसक्ति के कारण बंधन में जकड़ जाता है। श्रीमद् भगवद् गीता में भगवान श्री कृष्ण का कथन है, हे अर्जुन, जो पुरुष मुझे अनन्यचित होकर सदा ही निरंतर

0: मेरा स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। श्री रामचरित मानस में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यानी जीव परमात्मा का अंश है, अतः वो अविनाशी है। परमात्मा का अंश होने से जीव का स्वरूप भी उसी के जैसा है। जो जीव आत्मज्ञान से संपन्न होता है उसे मुक्त कहते हैं, और जो जीव अज्ञानी होता है उसे बद्ध कहते हैं। जीव और ईश्वर एक शरीर में नियंता और नियंत्रित के रूप में स्थित हैं। इसे ऐसा समझें कि शरीर एक वृक्ष है, इसमें घोंसला बनाकर जीव और ईश्वर नाम के दो पक्षी रहते हैं। वे दोनों चेतन होने के समान और कभी न बिछड़ने के कारण सखा हैं। इनके निवास करने का कारण केवल एक लीला है। इतनी समानता होते हुए जीव तो शरीर रूपी वृक्ष के फल सुख दुख आदि भोगता है, परंतु ईश्वर उनसे अनासक्त और साक्षी मात्र रहता है। शारीरिक और मानसिक जितने कर्म होते हैं सब गुणों की प्रेरणा से होते हैं, किंतु अज्ञानी मनुष्य झूठ मूठ स्वयं को कर्मों का कर्ता मान बैठता है, और यही उसके बंधन का कारण है। विवेकी मनुष्य अपने आप को कर्ता नहीं मानता और समस्त विषयों और कार्यफलों से विरक्त रहता है। विद्वान पुरुष प्रकृति में रहकर वैसे ही अनासक्त रहते हैं जैसे स्पर्श से आकाश, जल की आर्द्रता से सूर्य और गंध से वायु। उनके शरीर को लोग पीड़ा पहुंचाएं या पूजा करें, वे उससे दुखी या सुखी नहीं होते। मनुष्य को आत्मा संबंधी सभी भ्रमों को दूर करके परमात्मा में मन लगाना चाहिए।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम विचार बिंदु। आज का विषय था बंधन और मुक्ति। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। इस कार्यक्रम में आज का विषय है इस मौसम में आहार विहार। इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर चंद्रशेखर पांडे।
2: मैं चंद्रशेखर पांडे, मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयुर्वेद संघ का चिकित्सा विज्ञान संस्थान में प्रोफेसर पद पर कार्यरत हूं, और आज हम लोग ग्रीष्म ऋतु के आहार विहार पर चर्चा करेंगे। ग्रीष्म ऋतु ज्येष्ठ और अषाढ़ को मिलकर बनती है। हमारे भारत में 6 ऋतुएं होती हैं, और उस ऋतु में प्रकृति में जो परिवर्तन होते हैं उस परिवर्तनों के अनुसार अपने शरीर की साम्यावस्था बनाए रखने के लिए जो प्रयत्न होता है, जो नेचुरल प्रयत्न होता है, उसे आहार विहार के द्वारा पूरा किया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति बीमार हो गया तो उसके लिए अलग से प्रयत्न होते हैं, लेकिन सामान्य हमारे शरीर में जल की कमी हो गई, पोषण की कमी हो गई, या उस ऋतु में हमको जिन जिन चीजों की जैसी जैसी कमी होती है उनको बनाए रखने के लिए समुचित आहार विहार लेना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य प्रबल होता है, जलीयांश का शोषण होता है, वायु प्रबल होती है, अग्नि विषम होती है, हमारी अग्नि बहुत तीव्र नहीं होती, भोजन पचने की प्रक्रियाएं कम होती हैं, और इसके लिए प्रकृति ने हमको सबसे अच्छा साधन दिया है कि जो जिस देश में जिस काल में उत्पन्न हुए पदार्थ हैं उनका अपनी प्रकृति के अनुसार समुचित सेवन करना चाहिए। यानी उत्पन्न हुए पदार्थ तो बहुत हैं, लेकिन वह सबके लिए एक समान रूप से साथ में हैं, सुटेबल हैं, ऐसा नहीं है। हमारी प्रकृति के लिए जो समुचित हैं उनको लेना चाहिए। प्रकृति ने ऋतु के अनुसार ऐसे पदार्थ दिए, जल की कमी होती है तो हमारे यहाँ जलीयांश के लिए तरबूज है, खरबूज है, प्रकृति अपने आप पैदा करती है, फल पैदा करती है, आम पैदा होते हैं। उसी तरह से हमारे यहाँ सब्जियां ऐसी पैदा होती हैं जो उस ऋतु में आप ले सकते हैं, तो उस ऋतु में उस देश में उस काल में उत्पन्न हुई सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए। हम लोग कुछ चीजें ऐसी हैं जो परंपरागत रूप से हमारे यहाँ लंबे समय की टेस्टिंग के बाद परंपरा बन गई है, जैसे मंथ का लेना, सत्तू का लेना। सत्तू हमारे यहाँ एक ऐसा पदार्थ है जो पहली चीज तो सेमी डाइजेस्टेड हो जाता है, रोस्ट कर लेने के बाद, उसका चूर्ण बना लेने के बाद वो सुपाच्य हो जाता है, सभी लोगों को पचता है। अगर प्रत्येक व्यक्ति जौ और चने का सत्तू अपनी प्रकृति के अनुसार, मैं सामान्य रूप से बताता हूं

0: दो चम्मच जौ, एक चम्मच चना। अगर आपकी जैसी रुचि है काला नमक जीरा डाल के या चीनी डाल करके, थोड़ा 10 बूंद घी डाल करके सत्तू का नियमित रूप से मंथ के रूप में प्रयोग करना चाहिए। इसी तरह से फलों का रस है, जिस फल का रस आपके लिए सुटेबल हो उस फल का रस प्रयोग करना चाहिए। खीरा है, तरबूज है, इनके रस भी लोग प्रयोग करते हैं सामान्य रूप से सब लोगों को, लेकिन आजकल एक विचित्र प्रणाली आ गई है, वह है फल का रस को हम लोग मान लेते हैं कि पौष्टिक है, होना भी चाहिए, लेकिन प्रिजर्वेटिव साधन आने के बाद और हमारे मन में अधिक लाभ लेने की आकांक्षा के कारण फलों की गुणवत्ता से हम लोग समझौता करने लगे। फलों के भीतर प्राकृतिक रूप से जो तत्व हैं उन तत्वों को हम कम या ज्यादा करके उनको रुचिकर बनाने के चक्कर में उनमें एडल्टरेशन करने लगते हैं, उनका समय के अनुसार जल्दी पकाने लगते हैं, जल्दी वृद्धि करने लगते हैं। तो अगर हम उस ऋतु में उत्पन्न हुए फल और सब्जियों का प्रयोग कर रहे हैं तो यह भी ध्यान दें कि वह प्राकृतिक रूप से पके हुए, प्राकृतिक रूप से बड़े हुए, और कहा गया है कि देश काल के अनुसार हवा जल इनसे प्रेरित हो, यानी प्रॉपर नरिश्ड वो फल हो उसका प्रयोग करना चाहिए। तो जो ऋतु में उत्पन्न फल हैं उनका प्रयोग, जल का प्रयोग, और उस ऋतु में प्रचलन के अनुसार जो भोजन की व्यवस्थाएं हैं, जैसे प्राकृतिक रूप से हल्का भोजन करना, हल्की दालों का प्रयोग करना, उड़द की दालों का कम प्रयोग करते हैं, मूंग की दालें प्रयोग करते हैं, लौकी इत्यादि सब्जियां प्रयोग करते हैं, अधिक मसाले वाली सब्जियों का प्रयोग नहीं करते। हालांकि कटहल इसी ऋतु में होता है लेकिन उसका एक समुचित प्रयोग ही उचित है, और मंथ जैसे सत्तू इत्यादि है उसका प्रयोग करते हैं। फलों में फलों के रसों का प्रयोग करते हैं, फलों का प्रयोग करते हैं, गन्ने के रस का प्रयोग करते हैं, लेकिन गन्ने के रस के प्रयोग में भी वही सावधानी अपेक्षित है जो फलों के प्रयोग में है, क्योंकि गन्ना काट के रखा हुआ है 8 दिन 10 दिन बाहर धूप में सूखा हुआ है, उसका रस प्रयोग करने पर। तात्पर्य है कि उस ऋतु में, उस काल में, उस देश में उत्पन्न हुए फल सब्जियों का प्रयोग करें, लेकिन यह ध्यान देना है कि उस ऋतु में, उस काल में उत्पन्न हुई फल सब्जियां स्वयं में स्वस्थ हों। अगर वह उस काल में उत्पन्न हुई फल सब्जियां अन्न आहार समुचित रूप से स्वस्थ नहीं है, अगर उनका स्वयं का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो उसके प्रयोग करके हम अपना स्वास्थ्य नहीं अपितु अपने स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाएंगे, ये सावधानी अपेक्षित है।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। इस मौसम के आहार विहार विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर चंद्रशेखर पांडे। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ।

वन गमन के लिए तैयार श्रीराम माता कौशल्या से विदा ले चुके हैं, किंतु साथ जाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ पत्नी सीता से माता की उपस्थिति में कुछ भी कहने में उन्हें संकोच हो रहा है। उधर समय अपनी गति से निकला जा रहा है, अतः सीता के लिए उनकी सिखावन भी अनिवार्य है कि यदि वो अपना और पति का कल्याण चाहती हैं तो उन्हें श्रीराम की आज्ञा मानकर घर पर ही रहकर सास की सेवा करनी चाहिए। आदरपूर्वक सास ससुर के चरणों की सेवा से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है। पत्नी से श्रीराम का कहना है, हे सुमुखी, जब जब प्रेम से व्याकुल होकर माता मुझे याद करें तब तब उन्हें पुरानी कथाएं सुनाकर धीरज बंधाना। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु तथा वेदवाणी द्वारा सम्मत आचरण का फल बिना किसी क्लेश के तुम्हें मिल जाएगा। हठ करने के कारण

गालव ऋषि तथा राजा नहुष जैसों ने केवल कष्ट ही सहे हैं, किंतु वन प्रवास में होने वाले घोर कष्टों का वर्णन सुनकर भी सीता ने अपना निश्चय नहीं बदला। वन मार्ग में नंगे पैरों में चुभने वाले कुश कांटे और कंकड़, दुर्गम पर्वत और खो, रीछ, बाघ, भेड़िये, सिंह आदि के डरावने गर्जन तर्जन की आशंका उन्हें तनिक भी विचलित नहीं कर सकी। वन के भीषण सर्पों, भयानक पशु पक्षियों तथा स्त्री पुरुषों को उठा ले जाने वाले राक्षसों के झुंड का वर्णन भी सीता को उनके निर्णय से नहीं डिगा पाए।

आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। आज की कड़ी के कलाकार थे भूपेंद्र सिंह। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आइए अब आपको जानकारी देते हैं हमारे वाराणसी केंद्र से आज दिनांक 22 जुलाई 2026 को प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण। संसद में प्रश्नकाल की रिकॉर्डिंग का समय होगा रात 10 बजे और संसद समीक्षा का प्रसारण होगा रात्रि 8 बजे। ये दोनों कार्यक्रम आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। उर्दू कार्यक्रम का प्रसारण होगा सुबह 9:30 पर हमारे लखनऊ केंद्र से। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:31 पर सुनिए विद्या काटगड़े का गायन। दिन में 12:45 और रात 10:30 पर कलाकार नीरज मिश्रा का सितार वादन। सुगम संगीत के कार्यक्रम में दिन में 12:30 पर सुनिए महुआ बनर्जी के भजन। कार्यक्रम कृषि जगत में सुनिए कृषि कार्य में उपयोगी आधुनिक कृषि यंत्र विषय पर इंजीनियर विनोद कुमार सिंह से बातचीत। साथ ही सुनिए महेंद्र सिंह यादव और साथी के गाए लोकगीत। इन्हीं के गाए लोकगीत आप सुनेंगे कार्यक्रम लोक संगीत में सुबह 9:50 और दिन में 1:45 पर। कार्यक्रम युववाणी में युवाओं में तनाव प्रबंधन विषय पर जानकारी देंगे प्रोफेसर संदीप कुमार। और साथ ही सुनिए यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन और रोजगार सूचना।

उपभोक्ता अधिकार, जागरूक बने, सुरक्षित रहें, विषय पर एडवोकेट अर्चना जायसवाल से सुरेखा सिंह की बातचीत। इसी के साथ बहनें सुनेंगी गीत संगीत और सेहत ज्ञान। गैर फिल्मी गीतों के कार्यक्रम अंजुमन का समय होगा रात्रि 9:30 पर। कार्यक्रम रस माधुरी रात्रि 8:15 और रसरंग शाम 7:31 पर प्रसारित किए जाएंगे। शाम 7 अंग्रेजी कार्यक्रम में वार्ता का विषय होगा द तिरंगा, अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर एवरी इंडियन। वार्ताकार होंगी डॉक्टर दिव्या सिंह। कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत का प्रसारण होगा दोपहर 2:30 पर। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम का समय होगा दोपहर 12 से। व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी गीत एक्सप्रेस आप सुनेंगे दोपहर 11। फिल्म संगीत के कार्यक्रम झनकार का समय होगा सुबह 10 से। सदाबहार फिल्मी गानों के कार्यक्रम मधुरिमा का प्रसारण होगा सुबह 8:45 पर। अब से थोड़ी देर यानी सुबह 7 से सुनिए कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस।

ये थे हमारे केंद्र से आज दिनांक 22 जुलाई 2026 को प्रसारित किए जाने वाले प्रमुख कार्यक्रम। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलो हर्ट्स, डीआरएम 1233 किलो हर्ट्स, न्यूज ऑन एआईआर ऐप, डीटीएच और वेब्स ओटीटी पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। प्रशासनेन उक्तं यत् नीट प्रश्नपत्र अनधिकृत प्रकाशन प्रकरणे तदनुबद्ध विषयेषु च संसदि चर्चायै प्रशासनं सज्जमस्ति। ह्यः नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् केन्द्रीय मन्त्री जितेन्द्र सिंहः लोकसभायां विपक्षनेतारं राहुल गान्धिनम् आरोपितवान् यत् प्रशासनस्य आश्वासनस्य अनन्तरमपि सः नीट विषयक चर्चायाः स्वपूर्वामाग्रहात् निवृत्तः।
1: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
0: पूर्वाहणे कांग्रेस दलस्य अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी प्रियंका गांधी वाड्रा अन्य दल सदस्या नीट विषयक चर्चा आधृत्य प्रदर्शनम अकुर्वन्। केन्द्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह तथा केन्द्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन लोक कल्याण मार्ग स्थिते प्रदर्शन स्थले कांग्रेस नेतृभिः सह मेलनम कृतवन्तौ। तत्रैव संसदि विपक्ष सदस्यैः पुनः पुनः कृतैः व्यवधानैः लोकसभा राज्यसभा च नीट प्रश्नपत्र अनधिकृत प्रकाशन प्रकरणं समेत्य विविध विषयेषु ह्यः आदिवसं यावत् स्थगिते अभवताम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सद्य एव जाते नीट परीक्षायाः प्रश्नपत्र अनधिकृत प्रकाशन प्रकरणे संलग्न जनान् विरुध्य दृढ निग्रहं कर्तुम् अथ राष्ट्रस्य यूनां हितस्य संरक्षणं च पुनः उद्घाटितवान्। असौ अवदत् यत् भविष्ये एतादृशानां घटनानां निवारणाय प्रशासनेन बहवः उपायाः क्रियमाणाः सन्ति। प्रधानमन्त्री एतत् संसद भवन परिसरे राष्ट्रिय जनतांत्रिक संयुतेः मंगल मिलन इति नाम्ना अपि प्रख्याते संसदीय दलीय

योपवेशने उक्तवान्। वार्ताहरान् संसूचयन् संसदीय कार्यमन्त्री किरण रिजिजुः अवदत् यत् उपवेशने प्रधानमन्त्री देशव्यापिनां भावि परीक्षाणां प्रश्नपत्र अनधिकृत प्रकाशन निवारणाय सर्वेषां सम्बन्धित पक्षाणां समन्वित प्रयत्नानां आवश्यकतां विशेषतया प्रतिपादितवान्। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः इत्येषा भारत उत्तर मैसेडोनिया देशयोः आर्थिक सम्बन्धान् विस्तारयितुम् उक्तवती। उभयदेशीय उद्योगिनः व्यापारात् परं निवेश प्राविधिकी नवोन्मेषाधारित दीर्घकालिक सहकार्यं प्रवर्धयितुम् आग्रहम् अकरोत्। स्कोप्जे इत्यत्र भारत उत्तर मैसेडोनिया व्यापार मञ्चं सम्बोधयन्ती राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी

0: गुड मॉर्निंग बनारस।
1: जाएगी मस्ती, लगेगा इंफोटेनमेंट का डोज।
2: जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: आ गई है बनारसी कुड़ी। सो बनारस, लेट्स गेट रेडी टू ग्रूव। प्रेजेंटिंग आरजे सना।
0: हाँ जी, हेलो, हाय, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क बनारस, कैसे हैं आप? आई होप एंड आई विश कि आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं की वजह से हम सब भी एकदम बढ़िया हैं गुरु। और भाई क्या बात है, जुलाई का चौथा हफ्ता आ गया है और हमारे बनारस तो जैसे धुलकर और भी निखर गया है। घाटों पर वो भोर की आरती, कचौड़ी जलेबी की खुशबू और गलियों में गूंजता हर हर महादेव, इस एहसास का तो कोई मुकाबला ही नहीं है, है ना? अच्छा, आपने कभी सोचा है बनारस कि आपका जीवन आज जिस जगह पर है वो वहां कैसे पहुंचा? क्या ये सब आपके फैसलों का रिजल्ट है या फिर कोई ऐसी सुपर नेचुरल पावर जो पहले से ही रास्ते तय कर चुकी थी, या शायद कुछ ऐसे संयोग थे जिन पर आपका कोई जोर नहीं था? किसी से अचानक हुई मुलाकात, एक नौकरी का अवसर, एक छूटी हुई ट्रेन, किसी शहर में ट्रांसफर, किसी रिश्ते का बनना या टूट जाना। जीवन में पीछे मुड़कर देखने पर अक्सर लगता है कि हमारी कहानी तीन शक्तियों के बीच लिखी गई है, संयोग, भाग्य और चुनाव। लेकिन इनमें से सबसे प्रभावशाली कौन है? संयोग की बात करें तो वो किसी के वश में नहीं होता। भाग्य वो तो कहानी का पहला अध्याय है, जो चुना है आपने वही मार्ग मंजिल तक ले जाएगा, और फिर तीनों का गठबंधन। और देखिए, मनुष्य को नियंत्रण का भ्रम पसंद है। हमें लगता है कि अगर हम पर्याप्त मेहनत करेंगे तो हर परिणाम हमारे अनुसार होगा, लेकिन जीवन बार बार सिखाता है कि ऐसा नहीं है। कई बार सही निर्णय भी अपेक्षित परिणाम नहीं देते। कई बार बिना योजना के मिला अवसर जीवन का सबसे बड़ा गिफ्ट बन जाता है। ये समझ परिपक्वता लाती है कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन जो हमारे कंट्रोल में है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह हमारी है। तो आखिर जीवन को रियलिटी में दिशा देता कौन है? शायद इसका जवाब किसी एक पक्ष में नहीं। संयोग अवसरों के दरवाजे खोलता है, भाग्य शुरुआती परिस्थितियां निर्धारित करता है, लेकिन उन दरवाजों से गुजरना है या नहीं, उन परिस्थितियों को स्वीकार करना है या बदलना, ये हमारे चुनाव तय करते हैं। संयोग रास्ता दिखा सकता है, भाग्य पृष्ठ

0: भूमि तय कर सकता है, लेकिन आखिरकार जीवन की दिशा अक्सर उन चुनावों से बनती है जिन्हें हम बार बार दिन प्रतिदिन साधारण क्षणों में चुनते हैं, क्योंकि नियति हमें परिस्थितियां देती हैं, पर उनसे अर्थ निकालना हमारा काम है ना?
1: हाँ जी, ट्यून किया है आपने आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र। तारीख है आज 22 जुलाई 2026 और दिन है आज बुधवार का। तो आइए फटाफट से सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या कुछ हो रहा है इस वक्त अपने शहर में आज खास। आपको बता दें कि नगर निगम और स्मार्ट सिटी के सहयोग से श्री काशी विश्वनाथ मंदिर जाने वाले भक्तों के लिए गोल्फ कार्ट सेवा शुरू की गई है। इसका नाम नंदी रथ है। अभी बेनियाबाग, मैदागिन, गुदौलिया से मंदिर के गेट नंबर 4 तक 25 नंदी रथ चल रहे हैं। आने वाले दिनों में संख्या बढ़ाई जाएगी। इसमें यातायात विभाग का सहयोग लिया जाएगा। स्मार्ट सिटी की देखरेख में चल रहे नंदी रथ को आने वाले दिनों में सुनारपुरा, रथयात्रा, कैंट, बीएचयू, छावनी क्षेत्रों में संचालित किया जाएगा। चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। मैदागिन और गुदौलिया से गेट नंबर 4 का किराया 10 रूपए है। जो लोग मैदागिन से गेट नंबर 4 होकर गुदौलिया जाएंगे उनका किराया 20 रूपए है। बेनियाबाग से मंदिर जाने वालों को 20 रूपए है। इसके अलावा 5 साल तक के बच्चे, दिव्यांग और 70 साल के वरिष्ठ नागरिकों का किराया निःशुल्क है। अभी सुबह 5 बजे से रात के 9 बजे तक नंदी रथ चलाए जा रहे हैं। ई रिक्शा और अन्य वाहनों से मंदिर जाने वालों को पीडीआर, गुदौलिया चौराहे और मैदागिन पर रोक दिया जाता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि पशुपालन विभाग की ओर से आज बुधवार से जिले के पशुओं को रोग से बचाने के लिए टीकाकरण शुरू हो जाएगा। जिला पशु चिकित्सा अधिकारी एके सिंह के अनुसार 5 सितंबर तक 2.35 लाख पशुओं को खुरपका, मुंहपका का टीका लगाया जाएगा। ब्लॉक वार टीमें बना दी गई हैं। अभियान कुल 45 दिनों तक चलेगा। हर गांव में गोवंशी गाय, बछड़ा, बैल और महेशवंशी भैंस, पटवा, पटिया, भैंसा पशुओं का टीका लगेगा। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि काशी में कल मंगलवार को 17 किलोमीटर बारिश हुई, जबकि जिले में येलो अलर्ट यानी कि भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई थी। ये येलो अलर्ट के मानक से 3 गुना कम था, क्योंकि 12 घंटे में 50 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी। मौसम विज्ञान विभाग की ओर से हर दिन मानसून में सक्रियता को देख चेतावनी जारी की जा रही है, लेकिन काशी में उम्मीद और कोटे दोनों की आधी ही बारिश हो पाई है। यूपी आंचलिक मौसम विज्ञान विभाग की ओर से बुधवार यानी कि आज के बाद किसी तरह का अलर्ट नहीं जारी किया गया है। काशी में अब 25 जुलाई तक कोई अलर्ट नहीं है। सोमवार के बाद मंगलवार की रात 2:30 बजे तक जिले में बिजली चमकने के साथ जोरदार बारिश हुई, इससे सड़कों पर जलभराव हो गया। कल मंगलवार को दिन में बारिश भले ही कम हुई हो, लेकिन पूरे दिन जिले में भारी बारिश के अलर्ट का पता घने बादलों से पता चला। इससे तापमान 30 डिग्री के ही अंदर रहा। अधिकतम तापमान सामान्य से 3.5 डिग्री कम यानी कि 29.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.6 डिग्री नीचे 25.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बारिश के बाद दोपहर में कुछ देर की निकली तीखी धूप ने उमस तो बढ़ा दी, इसी के चलते तापमान 30 डिग्री के करीब पहुंच गया। हालांकि कुछ देर बाद 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा बहने लगी, जिससे तापमान फिर से 30 डिग्री से नीचे आ गया। यूपी आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल कुमार सिंह के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र कमजोर पड़ गया है। मॉनसूनी द्रोणी मध्य भारत की ओर से खिसक रहा है। 23 से 25 जुलाई के दौरान प्रदेश के लिए कोई मौसमी चेतावनी जारी नहीं की गई है। एक और खास बात आपको बता दें कि गंगा किनारे 25 वार्डों की समस्याएं 4 घंटे में समाप्त करने की सुविधा नगर निगम ने कल मंगलवार को शुरू की। पहले दिन व्हाट्सएप चैटबॉट नंबर से कुल 17 शिकायतें मिली। त्वरित कार्य प्रणाली और मॉनिटरिंग सिस्टम के आधार पर अधिकारियों ने तय समय सीमा यानी महज 4 घंटे में 100% निस्तारण कर दिया। मेयर अशोक कुमार तिवारी के निर्देश पर सुविधा शुरू की गई। शिकायत दर्ज होने के 4 घंटे के भीतर समाधान सुनिश्चित करने वाला प्रदेश का पहला नगर निगम वाराणसी बन गया है। शहरवासियों की से इसकी सराहना की जा रही है। अभियान के तहत सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक की विंडो के दौरान नागरिकों ने अपनी समस्याएं दर्ज कराई। अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्रा के अनुसार पहले दिन स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी सर्वाधिक 6 शिकायतें मिली, 5 सामान्य

0: दुकान सफाई, कूड़ा उठाने और एक डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन से संबंधित थी।
1: इसके साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि 95 बटालियन सीआरपीएफ और सृजन सामाजिक विकास न्यास के संयुक्त तत्वाधान में कोईराजपुर स्थित एक निजी विद्यालय में पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण रैली, वृहद वृक्षारोपण और गोपूजन का कार्य संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित 95 बटालियन सीआरपीएफ के कमांडेंट राजेश्वर बालापुरकर ने फलदार और छायादार पौधों को रोपण करते हुए कहा कि पर्यावरण का संरक्षण आज के समय में सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इस अवसर पर गणमान्य लोगों के साथ ही सीआरपीएफ के जवान भी उपस्थित रहे और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए संकल्प दिलाया गया। तो जी, ये रहा अपने शहर का हाल समाचार। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द हिस्ट्री एंड स्पेशल इवेंट्स ऑफ टुडे, दैट इज 22nd ऑफ जुलाई। आपको बता दें कि आज 22 जुलाई का दिन भारत के लिए सबसे ऐतिहासिक दिनों में से एक है। जी हाँ, साल 1947 में आज ही के दिन संविधान सभा ने तिरंगे को स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया था, इसीलिए हर साल आज के दिन राष्ट्रीय झंडा दिवस के रूप में याद किया जाता है। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि साल 1933 में अमेरिकी पायलट विली पोस्ट ने अकेले विमान से दुनिया का चक्कर लगाने का रिकॉर्ड बनाया था। और 2009 में आज के दिन 29वीं सदी का सबसे लंबा पूर्ण सूर्य ग्रहण देखा गया था, जो एशिया के कई हिस्सों में दिखाई दिया था। इसके साथ ही आपको बता दें कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने अपना दूसरा चंद्र मिशन चंद्रयान 2 सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया था आज के दिन साल 2019 में। अब बर्थडेज की बात कर ली जाए तो आज है महान पार्श्व गायक मुकेश की जयंती। जी हाँ, आज के दिन उनका जन्म साल 1923 में दिल्ली में हुआ था। उन्हें हिंदी सिनेमा के सबसे भावुक और दर्द भरे गीत गाने वाले गायकों में गिना जाता रहा है। और इसके साथ ही साथ आज है प्रसिद्ध भारतीय गायक अरमान मलिक का भी जन्मदिन। आज के दिन साल 1995 में उनका जन्म मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ। अब स्पेशल इवेंट्स की बात कर ली जाए तो जैसा कि आपको बताया मैंने कि आज है नेशनल फ्लैग अडॉप्शन डे, क्योंकि आज ही के दिन साल 1947 में संविधान सभा ने तिरंगे को स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया था। और इसके साथ ही साथ आज एक और स्पेशल इवेंट है, आज है नेशनल मैंगो डे। जी हाँ, भारत में आम को सिर्फ फल नहीं बल्कि फलों का राजा कहा जाता है। गर्मियों का मौसम आते ही बाजारों में तरह तरह की आम की वैरायटीज हमें देखने को मिलने लगती हैं। स्वाद, खुशबू और विविधता के कारण आम दुनिया भर में पसंद किया जाता है। यही वजह है कि इस खास फल के सम्मान में हर साल राष्ट्रीय आम दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज स्पेशल इवेंट्स एंड हिस्ट्री। And now, Banaras, let's move on to your favorite segment. बात जरूरत की। देखिए, देश में इन दिनों LPG यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की थोड़ी क्राइसिस है। साइबर ठग इसी का फायदा उठाकर LPG उपभोक्ताओं को निशाना बना रहे हैं। भारत सरकार ने इस फ्रॉड को लेकर लोगों को आगाह किया है। स्कैमर्स पहले फेक मैसेज भेजते हैं जिसमें लिखा होता है आपकी LPG सिलेंडर सब्सिडी बंद कर दी जाएगी, KYC अपडेट करने के लिए यहां पर क्लिक करें। वो फर्जी लिंक के जरिए आपका OTP, बैंक डिटेल्स और UPI अप्रूवल हासिल कर बैंक अकाउंट खाली कर सकते हैं। इस स्कैम के बारे में जानना और सजग रहना बहुत जरूरी है, इसलिए आज इस सेगमेंट में हम जानेंगे LPG सब्सिडी स्कैम क्या है, साथ ही जानेंगे कि स्कैमर लोगों को कैसे फंसाते हैं और इस तरह के साइबर फ्रॉड से कैसे बचें। देखिए, LPG सब्सिडी स्कैम जो है वो एक साइबर ठगी है जिसमें स्कैमर्स गैस सब्सिडी, KYC अपडेट या गैस कनेक्शन बंद होने का डर दिखाकर लोगों को फंसाते हैं। साइबर ठग SMS, व्हाट्सएप मैसेज, ईमेल या फोन कॉल के जरिए उपभोक्ताओं से संपर्क करते हैं। ठग दावा करते हैं कि ग्राहक की KYC अधूरी है, इसलिए उसकी LPG सब्सिडी बंद होने वाली है या उसका गैस कनेक्शन बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद वो एक फर्जी लिंक भेजते हैं और उस पर क्लिक करके KYC अपडेट या सब्सिडी वेरिफिकेशन करते हैं।

को कहते हैं। जब उपभोक्ता लिंक पर क्लिक करता है तो उससे आधार नंबर, बैंक डिटेल्स, डेबिट क्रेडिट कार्ड की जानकारी और ओटीपी मांगते हैं। जैसे ही व्यक्ति अपनी डिटेल्स शेयर करता है, ठग उसके बैंक से पैसे उड़ा ले जाते हैं। स्कैमर्स ऐसे मैसेज भेजते हैं जिसमें डर और जल्दबाजी का माहौल बनाया जाता है, जैसे कि आपकी एलपीजी सब्सिडी रोक दी गई है, एलपीजी केवाईसी अधूरी है, तुरंत अपडेट करें, आपका गैस कनेक्शन बंद होने वाला है, सब्सिडी जारी रखने के लिए यहां क्लिक करें। साइबर ठग एलपीजी सब्सिडी ब्लॉक होने या केवाईसी अपडेट करने का झांसा देकर लोगों से कई तरह की सेंसिटिव फाइनेंशियल डिटेल्स मांगते हैं, जैसे कि आधार नंबर, बैंक डिटेल्स, डेबिट क्रेडिट कार्ड नंबर, नेट बैंकिंग लॉगिन डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी और यूपीआई पिन। इन डिटेल्स का इस्तेमाल करके साइबर फ्रॉड्स बैंक खाते से पैसे उड़ा सकते हैं, यूपीआई के जरिए अनऑथराइज्ड पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, आइडेंटिटी का दुरुपयोग कर सकते हैं और फर्जी लोन भी ले सकते हैं। फर्जी केवाईसी में एसएमएस, व्हाट्सएप, मेल पर लिंक आना, जल्दबाजी करना, डराना, तुरंत कार्रवाई का दबाव बनाना, ओटीपी, यूपीआई पिन, पासवर्ड मांगना, बैंकिंग पर्सनल डिटेल्स मांगना और संदिग्ध वेबसाइट, डोमेन और यूआरएल का यूज होना। इसके साथ ही असली जो केवाईसी प्रोसेस होता है उसमें ऑफिशियल वेबसाइट, ऐप या एजेंसी से आप केवाईसी प्रोसेस करने का आपके पास मैसेज आता है, जबकि असली केवाईसी अपडेट में ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप या एजेंसी से जाकर आप कर सकते हैं। इसे स्पष्ट औपचारिक भाषा होती है, उसकी उचित समय सीमा होती है, साफ निर्देश होते हैं, सेंसिटिव डिटेल्स की डिमांड नहीं होती, जरूरी केवाईसी डॉक्यूमेंट्स की ही मांग होती है और आधिकारिक वेबसाइट और ऐप पर ही इस पे केवाईसी अपडेट आप कर सकते हैं। एक सवाल लोगों के मन में आता है कि एलपीजी कंपनियां फोन, एसएमएस या व्हाट्सएप पर ओटीपी मांगती हैं? तो जी नहीं, एलपीजी कंपनियां और गैस एजेंसीज कभी भी फोन, एसएमएस, व्हाट्सएप पर ओटीपी या पासवर्ड जैसी सेंसिटिव जानकारी नहीं मांगती। ऐसी डिमांड हो तो सतर्क रहें, ये साइबर फ्रॉड का संकेत है। अगर एलपीजी सब्सिडी, केवाईसी अपडेट या गैस कनेक्शन बंद होने से जुड़ा कोई मैसेज या कॉल आए तो उस पर तुरंत भरोसा ना करें। मैसेज या कॉल को वेरीफाई करने के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए, जैसे कि अपनी गैस एजेंसी से सीधे संपर्क करके जानकारी की पुष्टि करें, एलपीजी कंपनी के आधिकारिक कस्टमर केयर नंबर पर संपर्क करें, कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट या ऐप पर जाकर स्टेटस चेक करें, मैसेज भेजने वाले नंबर और लिंक में दिए यूआरएल को ध्यान से जांचें। अगर ओटीपी, यूपीआई पिन, सीवीवी या बैंक डिटेल्स मांगी जा रही हैं तो वो पक्का फर्जी है। याद रखिए, किसी भी केवाईसी या सब्सिडी अपडेट की जानकारी केवल आधिकारिक सोर्स से ही आप लें। एलपीजी सब्सिडी स्टेटस संबंधित गैस कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट, ऐप या गैस एजेंसी के माध्यम से इसको चेक करें। आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और कंज्यूमर नंबर की मदद से सब्सिडी की जानकारी देख सकते हैं। अपने बैंक खाते की एंट्री देखकर भी सब्सिडी जमा होने की पुष्टि कर सकते हैं। किसी थर्ड पार्टी लिंक या अनजान वेबसाइट पर अपनी जानकारी दर्ज करने से बचें। साइबर ठगी होने पर तुरंत नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें। शिकायत करते समय सभी सबूत अपने पास रखें। बात जरूरत की। सो आई होप आज गुड मॉर्निंग बनारस का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा, एंड इफ यस देन डू शेयर योर वैल्यूएबल व्यूज ऑन pkldairvaranasi@gmail.com। मेरा नाम है सना सलीम और आप मुझे सुन रहे थे आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से। एंड हियर आई एम साइनिंग ऑफ। टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ्स। खुश रहिए, प्यार बांटिए और कोशिश कीजिए कि आपकी वजह से किसी का दिल ना दुखे। विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी डे। बाय बाय।

0: गुड मॉर्निंग बनारस।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:17:45 हुए हैं। प्रादेशिक समाचारों के लिए कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।
2: किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं। मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी। मन का

0: धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
1: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
0: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
1: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं। सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
0: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
1: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 18 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। 26,315 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा 333 किलोमीटर लंबा विंध्य एक्सप्रेसवे। 50,000 मेधावी स्नातक छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देगी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रावस्ती में 396 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 83 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। बहराइच को दी 352 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात। नीट पेपर लीक और संबंधित मुद्दों पर संसद में चर्चा को तैयार है केंद्र सरकार। विपक्ष के विरोध के बाद संसद दिन भर के लिए स्थगित। और राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई अन्य जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। लगातार हो रही बारिश से राज्य में कई नदियों का जल स्तर बढ़ा। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। एक रिपोर्ट।
1: कैबिनेट बैठक में महिला सशक्तिकरण और उच्च शिक्षा में छात्राओं को प्रोत्साहन देने के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को मंजूरी प्रदान की गई। इसके तहत लगभग 50,000 छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी। इसके अंतर्गत राज्य निजी और संबद्ध विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों की शैक्षणिक सत्र 2025-26 में उत्तीर्ण छात्राओं में से टॉप 5% छात्राओं को लाभ मिलेगा। कैबिनेट ने वाराणसी में 500 क्षमता वाले महिला छात्रावास के निर्माण के लिए भूमि हस्तांतरण किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि राज्य विधानमंडल का मॉनसून सत्र 3 अगस्त से प्रारंभ होगा और 6 अगस्त तक चलेगा। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: कैबिनेट की बैठक के बाद फैसलों की जानकारी देते हुए वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि विंध्य एक्सप्रेस वे को लेकर भी कैबिनेट की स्वीकृति मिली है। ये 333 किलोमीटर लंबा होगा जो कि प्रयागराज से शुरू होकर भदोही से मिर्जापुर होते हुए सोनभद्र तक जाएगा। इस पर 26,315 करोड़ रुपए की लागत आएगी। वहीं रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत मेधावी स्नातक छात्राओं को मुफ्त स्कूटी दिए जाने के बारे में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि इस योजना का लाभ उन्हें मिलेगा जिनके परिवार की आय सीमा 12 लाख रुपए वार्षिक से कम होगी।
2: इसको एक पैकेज बनाया गया है जिसमें पंजीकरण शुल्क सरकार वहन करेगी, व्यापक वाहन बीमा योजना वो सरकार वहन करेगी, एक हेलमेट ISI मार्का ये उनको दिया जाएगा बच्चियों को।
0: उच्च शिक्षा मंत्री ने बताया कि योजना की लाभार्थी छात्राओं को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा प्रदेश कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बस बेड़े में 250 नई

0: इलेक्ट्रिक बसों की खरीद से जुड़े प्रस्ताव, अग्निशमन और आपात सेवा को अधिक प्रभावी बनाने के लिए 25 करोड़ 78 लाख रुपए के प्रस्ताव और यूपी आउटसोर्स सेवा निगम को 20 करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त ऋण जैसे प्रस्तावों को भी मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल श्रावस्ती में 396 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 83 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के प्रयासों का नतीजा है कि आकांक्षी जिलों में शामिल श्रावस्ती ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है।
1: जब प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर 100 ऐसे जनपदों की सूची निकाली जो सबसे पिछड़े हैं पूरे देश के अंदर, उसमें से श्रावस्ती भी एक था। पिछले 9 वर्ष में श्रावस्ती ने एक नई ऊंचाई अर्जित की।
0: मुख्यमंत्री ने कल ही बहराइच में महसी और नानपारा विधानसभा क्षेत्रों के लिए 352 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 70 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार के आने से विकास कार्यों और प्रगति के जरिए पिछले 9 सालों में प्रदेश को नई पहचान मिली है।
2: जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आई, यूपी में डबल इंजन की सरकार आई, आज बहनों और भाइयों आप देखते होंगे परिवर्तन, हर क्षेत्र में परिवर्तन। अब उपद्रव नहीं होता है, अब तो उत्सव प्रदेश के रूप में यूपी ने एक नई पहचान बनाई।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं।
3: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
0: इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद कल दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। कल संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन NDA संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल ही में हुए नीट पेपर लीक मामले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 13 आरोपी अभी जेल में हैं।
4: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिलकर के करें।
0: अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की आज अहम बैठक होगी। एक रिपोर्ट।
5: भगवान श्री रामलला मंदिर के चढ़ावा विवाद के बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक के दौरान ट्रस्ट महासचिव के पद और न्यासियों के 3 खाली पदों पर विचार विमर्श करेगा और राम मंदिर के पहले CEO के चयन की प्रक्रिया को भी अंतिम रूप दिया जा सकता है। बैठक के मद्देनजर SPCT चक्रपाणी त्रिपाठी और ADM City योगानंद पांडे ने बैठक स्थल के सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
0: केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने भारत की पहली डेंगू वैक्सीन क्यूडेंगा के विपणन की मंजूरी दे दी।
6: डेंगू वैक्सीन क्यूडेंगा के विपणन की मंजूरी देने का उद्देश्य देश में डेंगू की रोकथाम के प्रयासों को मजबूत करना है। यह भारत में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वीकृत पहली डेंगू वैक्सीन है। इसे 4 से 60 वर्ष की आयु के लोगों में डेंगू की रोकथाम के

0: लिए मंजूरी दी गई है। इस वैक्सीन को पहले ही 42 देशों में नियामक स्वीकृति मिल चुकी है। इनमें यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड जैसे देश शामिल हैं। समाचार कक्ष से वेद प्रकाश पाठक।
1: राजधानी लखनऊ सहित कई प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। लगातार हो रही बारिश से राज्य में कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। लखीमपुर खीरी के पलियाकला में शारदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि बाराबंकी में घाघरा खतरे के निशान के करीब है। उत्तराखंड में पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के कारण पीलीभीत में भी शारदा नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। वहीं वाराणसी में गंगा के किनारे घाटों पर सतर्कता बढ़ा दी गई है और प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 18 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। 26,315 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा 333 किलोमीटर लंबा विंध्य एक्सप्रेसवे। 50,000 मेधावी स्नातक छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देगी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रावस्ती में 396 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 83 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। बहराइच को दी 352 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात। नीट पेपर लीक और संबंधित मुद्दों पर संसद में चर्चा को तैयार है केंद्र सरकार। विपक्ष के विरोध के बाद संसद दिन भर के लिए स्थगित। और राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई अन्य जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। लगातार हो रही बारिश से राज्य में कई नदियों का जलस्तर बढ़ा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, श्वास लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं,

0: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का मॉर्निंग
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आज सुनिए कलाकार विद्या काटगड़े का गायन, राग है मियां की तोड़ी।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आज आपने सुना कलाकार विद्या काटगड़े का गायन, राग था मियाँ की तोड़ी। तबले पर थे पंडित जे मैसी और सारंगी पर संगति की थी बच्चा लाल मिश्रा ने। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अब से थोड़ी देर में हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तर मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में बड़े विस्तार का आह्वान किया। दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह। भारत आज चंडीगढ़ में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता करेगा। भारतीय नौसेना आज पनडुब्बी रोधी स्वदेशी युद्धपोत INS मालवण का कर्नाटक के कारवर में जलावतरण करेगी। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने की योजना मंजूर की। भारत ने जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई। और चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज पीवी सिंधु का सामना उन्नति होटा से होगा। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। स्कोपिये में भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार फोरम में राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों के बीच इस दशक के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो सकेगा।
6: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत का औषधि उद्योग नॉर्थ मैसेडोनिया में दवाओं और चिकित्सक उपकरणों के संयुक्त उत्पादन में निवेश कर सकता है। उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण, कोल्ड चेन, नवीकरणीय ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और स्टार्टअप क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आग्रह किया। राष्ट्रपति ने नॉर्थ मैसेडोनिया को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा रोधी अवसंरचना और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन जैसी पहल से जुड़ने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने अगले वर्ष भारत में आयोजित होने वाले वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स में भाग लेने को भी आमंत्रित किया। नॉर्थ मैसेडोनिया से शुभश्री की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पूजा।
5: भारत की मेजबानी में ब्रिक्स देशों की स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक आज चंडीगढ़ में शुरू हो रही है। तीन दिन की इस बैठक में मुख्य रूप से स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल स्वास्थ्य, महामारी से निपटने की तैयारी और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक सबकी पहुंच पर विचार विमर्श होगा।
7: यह बैठक स्वास्थ्य संबंधी प्रमुख वैश्विक प्राथमिकताओं पर सामूहिक कार्रवाई के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मंत्री स्तरीय बैठक में पारंपरिक और पूरक चिकित्सा, स्वस्थ जीवन शैली, मानसिक आरोग्य तथा सुदृढ़ स्वास्थ्य प्रणाली जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी विचार

0: विमर्श किया जाएगा। आधिकारिक कार्यक्रम की शुरुआत आज वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक से होगी। इसके बाद कल केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारतीय नौसेना आज कर्नाटक के कारवार में माहे श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS मालवण को बेड़े में शामिल करेगी। ये भारत के स्वदेशी युद्धपोत निर्माण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह मुख्य अतिथि होंगे।
2: कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में निर्मित INS मलवान आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के अंतर्गत तैयार किया गया है। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और तकनीक का उपयोग किया गया है। इसमें RBO 6000 रॉकेट और DRDO द्वारा विकसित टॉर्पेडोज की शक्ति है। जर्मनी और भारत द्वारा तैयार किए गए सोनार का उपयोग भी किया गया है। माहे श्रेणी के इस युद्धपोत तटीय और उथले समुद्र क्षेत्र में प्रभावी परिचालन के लिए बनाया गया है। इससे नौसेना की समुद्री सुरक्षा और पनडुब्बी रोधी क्षमता और मजबूत होगी। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: भारतीय वायुसेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
4: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने का फैसला किया है। उच्च शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी को बढ़ाने और पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर को कम करने के लिए ये कदम उठाया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को लागू करने के लिए दिशा निर्देशों को मंजूरी दी गई।
2: योजना के तहत सरकार न केवल स्कूटर बल्कि उसका बीमा, पंजीकरण, हेलमेट, आवश्यक सहायक उपकरण और 4 लीटर पेट्रोल भी मुहैया कराएगी। दिव्यांग छात्राओं, शहीदों की बेटियों और गरीब परिवारों की बेटियों के लिए आय सीमा की शर्त में छूट भी दी जाएगी। राज्य सरकार का कहना है कि ये योजना उच्च शिक्षा में बेटियों की भागीदारी बढ़ाएगी और खासतौर पर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों की छात्राओं के लिए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों तक पहुँचना आसान बनाएगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता UCC विधेयक पारित कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सदन में विपक्ष के हंगामे और विरोध के बीच ये विधेयक पारित हुआ।
3: UCC के प्रमुख प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में एक से अधिक विवाह मान्य नहीं होगा। तलाक की प्रक्रिया कानूनी होगी और महिला पुरुष को समान उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा। लिव इन रिलेशनशिप में 1 महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा और विवाह का रजिस्ट्रेशन ग्रामीण स्तर तक जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे अलग रखा गया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष पर मर्यादा का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। श्री नवीन ने कहा कि सरकार सदन में नीट सहित सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है।
4: और मैं कहूंगा कांग्रेस और विपक्ष के साथियों से, हम संसद के पटल पर हर प्रकार के संवाद के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन आपकी जो मर्यादाएं तोड़ने की परंपरा बनती जा रही है, जो अराजकतावती सोच आपके अंदर विकसित हो रहा है, निश्चित रूप से इससे देश कहीं न कहीं दुखी है और देश अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है।
1: भारत ने विश्व व्यापार में अपनी

0: बढ़ती भूमिका पर बल देते हुए जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित पारदर्शी और भेदभाव रहित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने वैश्विक व्यापार प्रणाली में भारत की भूमिका तथा व्यापार संधि, उदार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और विकासशील देशों के बीच सहयोग से व्यापारिक संबंध मजबूत करने के प्रयासों पर बल दिया। वाणिज्य विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत समावेशी वैश्विक विकास में भरोसेमंद और विश्वसनीय साझेदार है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु का मुकाबला भारत की ही उन्नति हुड्डा से होगा। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन भी आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। पुरुष सिंगल्स के ही शुरुआती दौर में आज आयुष शेट्टी का सामना अलवी फरहान से होगा। पुरुष डबल्स में एमआर अर्जुन और हरिहरन अंश करुणन, मिक्स्ड डबल्स में रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे तथा तनिषा क्रेस्टो और ध्रुव कपिला भी चुनौती पेश करेंगे। इसके अलावा हॉकी इंडिया ने हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा की है। विश्व कप 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स में आयोजित किया जाएगा। भारतीय टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार की जयंती पर उनका स्मरण किया है। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि समाज के प्रति उनकी सेवा और महाराष्ट्र के विकास में उनका योगदान सदैव याद रखा जाएगा। फ्रांस की संसद ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का ऐतिहासिक विधेयक पारित कर दिया है। संसद के दोनों सदनों में सांसदों ने इस विधेयक के समर्थन में वोट दिया। इसके तहत स्कूल में विद्यार्थियों के मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इस फैसले से फ्रांस सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बन जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगस्त 2028 से जेनेरिक दवाओं के आयात पर भारी शुल्क लगाने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य अमेरिका में इन दवाओं का उत्पादन बढ़ाना है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि 1 अगस्त से अमेरिका में आयात होने वाली सभी जेनेरिक दवाओं पर 2 साल तक कोई शुल्क नहीं लगेगा। मौसम विभाग ने आज गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अगले 2-3 दिनों के दौरान पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश और पंजाब में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नास।
2: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर नीट पेपर लीक मामले को लेकर विपक्ष के धरने, छात्रों के विरोध प्रदर्शन और पेपर लीक पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान संबंधी समाचार सबसे ऊपर छाए हुए हैं। नवभारत टाइम्स का शीर्ष समाचार है, जंतर मंतर पर लौटी भीड़, पीएम के घर के बाहर से विपक्ष के नेता हटाए। पत्र ने प्रधानमंत्री मोदी के कथन को भी सुर्खियों में जगह दी है, पेपर लीक के दोषियों को नहीं बख्शा। दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रधानमंत्री मोदी ने नीट पेपर लीक को बताया घोर पाप। राजस्थान पत्रिका, लोकसत्य, दैनिक ट्रिब्यून और अमर उजाला ने धरना दे रहे विपक्षी नेताओं की तस्वीरें भी प्रमुखता से छापी हैं। जनसत्ता और दैनिक भास्कर ने सिक्किम में एक निर्माणाधीन सुरंग ढहने से हुई मजदूरों की मौत के समाचार को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। पत्रों ने केंद्र और राज्य सरकार की ओर से मजदूरों के आश्रितों को अनुग्रह राशि की घोषणा का उल्लेख करते हुए सुरंग के प्रवेश द्वार और राहत अभियान का चित्र प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने पॉजिटिव न्यूज स्तंभ के अंतर्गत राजस्थान के आंधी गांव का उल्लेख किया है, जिसे बायोटेक वैज्ञानिक डॉक्टर सुदीप्ति अरोड़ा ने 100% कचरा रहित और आत्मनिर्भर बना दिया है। पंजाब केसरी ने कमर्शियल जहाज पर हुए रूसी हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत के बाद रूसी राजनयिक को तलब किए जाने का समाचार सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने इसी खबर पर आधारित संपादकीय को शीर्षक दिया है, सुरक्षा की फिक्र। पत्र का कहना है कि भारत से हर साल बड़ी संख्या में लोग रोजगार के लिए विदेश जाते हैं और वहां से विदेशी मुद्रा यहां भेजते हैं, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूती मिलती है। मगर सवाल ये है कि विदेश में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है।
0: और लीजिए अंत में सुनिए मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तर मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में बड़े विस्तार का आह्वान किया। दोनों देशों के व्यवसायियों

0: Raddi Murmu calls for significant expansion of economic engagement between India and North Macedonia, urges businesses from both countries to move beyond trade and build long-term partnerships. India to hold a three-day meeting of BRICS health ministers in Chandigarh beginning today. Indian Navy to commission indigenous anti-submarine warfare shallow watercraft INS Malwan at Karwar in Karnataka today. Uttar Pradesh cabinet approves scheme to provide free scooty to meritorious female students of the state. India reaffirms its commitment to rule-based multilateral trade system at WTO Trade Policy Review in Geneva, and PV Sindhu to take on compatriot Unnati Huda in China Open Badminton Tournament today. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भारत और शिमाली मकदूनिया के दरमियान इक्तसादी राब्तों में नुमाया तौसी की जरूरत उजागर की है और दोनों मुल्कों के कारोबारी इदारों पर जोर दिया है कि वो तिजारत से आगे बढ़कर तवील मुद्दती साझेदारी कायम करें। ब्रिक्स मुल्कों के वज़राए सेहत की तीन रोजा मीटिंग आज चंडीगढ़ में शुरू हो रही है। भारतीय बहरिया आज कर्नाटक में कारवार के मकाम पर मुल्क में ही बनाए गए आपदोस शिकन जंगी बहरी जहाज INS मालवान को अपने बेड़े में शामिल करेगी। उत्तर प्रदेश काबीना ने रियासत में अच्छी तालीमी कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाली लड़कियों को मुफ्त स्कूटी फराहम करने की स्कीम को मंजूरी दे दी है। भारत ने जिनेवा में WTO के तिजारती पॉलिसी जायजे में जाब्तों पर मबनी कसीर रुखी तिजारती निजाम के तहत अपने अहद का इयादा किया है और आज चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में PV सिंधु का मुकाबला अपनी हमवतन खिलाड़ी उन्नति हुडा से होगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भारत और शिमाली मकदूनिया के दरमियान इक्तसादी ताल्लुकात को वसत देने के लिए कहा है। उन्होंने दोनों मुल्कों के ताजिरों से कहा है कि वो तिजारत के अलावा भी सरगर्मियां जारी रखें और सरमायाकारी टेक्नोलॉजी नीज इख्तिरा पर मबनी तवील मुद्दती शराकत दारी कायम करें। इस गोपजे के मकाम पर भारत शिमाली मकदूनिया तिजारती फोरम से खिताब करते हुए सदर मुर्मू ने कहा कि उनके दौरे से जो किसी भारतीय सदर का शिमाली मकदूनिया का पहला दौरा है इन ताल्लुकात को मुस्तकम करने के भारत के मजबूत इरादे की अक्कासी होती है। सदर मुर्मू ने शिमाली मकदूनिया को डिजिटल सरकारी बुनियादी ढांचे में भी भारत के साथ शराकत दारी कायम करने के लिए मदऊ किया जिससे माली शमूलियत को फरोग देने में भारत के UPI प्लेटफॉर्म की कामयाबी का अंदाजा होता है।
2: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने IT, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।
1: शिमाली मकदूनिया के सदर जमहूरिया के दौरे की खबरें देने वाली हमारी नमानिगार की एक रिपोर्ट।
3: सदर मुर्मू ने कहा कि भारत की दवासाजी की सनद शिमाली मकदूनिया में सरमायाकारी के लिए तैयार है। ये सरमायाकारी वसीतर बलकान और यूरोपीय मार्केट्स के लिए दवाएं और तिब्बी आलात मिलकर तैयार करने के लिए की जाएगी। उन्होंने खुराक की डिब्बाबंदी, गोल्डन चेन लॉजिस्टिक, बार बार इस्तेमाल होने वाली तवानाई, मस्नूई जहानत, साइबर सिक्योरिटी और स्टार्टअप इको निज़ाम के शोबों में शराकत दारी की भी हौसला अफजाई की। सदर जमहूरिया ने शिमाली मकदूनिया को दावत दी कि वो बैन अल-अक़वामी समशी इत्तेहाद, कुदरती आफात से मुताबिकत रखने वाले बुनियादी ढांचे और आलमी बायो ईंधन इत्तेहाद जैसे मुश्तरक इकदाम में शिरकत करें। उन्होंने आलमी ऑडियल विजल और तफरीही समिट वेव्स में शिरकत की भी दावत दी जो भारत में अगले साल मुनक्किद होगी। शिमाली मकदूनिया से सुबह श्री की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
1: ब्रिक्स मुल्कों के वज़राए सेहत की तीन रोजा मीटिंग आज चंडीगढ़ में शुरू हो रही है। इसका मकसद सभी के लिए सेहत की सहूलियात, डिजिटल हेल्थ, वबाई बीमारियों से निपटने की तैयारी और मयारी हिफ्ज़ान सेहत तक मुसावियाना रसाई दस्तयाब कराना है। इस मीटिंग में ब्रिक्स मेंबर मुल्कों के वज़राए

0: सेहत के साथ साथ महकमे सेहत के आला अहदेदार शिरकत करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: ब्रिक्स वज़राए सेहत की 16वीं मीटिंग मजबूती इख्तरा बाहमी तआवुन और पायदारी के लिए तामीज थीम के जरिए अहम आलमी सेहत तरजीहात के सिलसिले में मुश्तरका इकदाम को आगे बढ़ाने के तई भारत के अज़्म की अक्कासी करती है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सेहत की मरकजी सेक्रेटरी पूनिया सलीला श्रीवास्तव ने बताया कि ये वजारती मीटिंग हेल्थ सिक्योरिटी, वबाई बीमारियों से निमटने की तैयारी, डिजिटल हेल्थ, इख्तरा, सस्ती दवाओं की फराहमी और तिब्बी निज़ाम जैसे शोबों में बाहमी तआवुन को मजबूत बनाने पर मरकूज होगी। आज आला अहदेदारों की मीटिंग के साथ ही बाज़ाब्ता प्रोग्राम का आगाज होगा, जिसके बाद कल सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर JP नड्डा की सदारत में ब्रिक्स वज़राए सेहत की 16वीं मीटिंग मुनक़िद होगी। इस मीटिंग में वज़रा अवामी सेहत से मुतालिक अहम आलमी और इलाकाई तरजीहात पर तबादले ख्याल करेंगे। दिल्ली से सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: भारतीय बहरिया INS मालवान को अपने कामकाज में शामिल करेगी। ये माहे तर्ज के आबदोज शिकन जंगी जहाज की दूसरी शक्ल है जो गहरे पानी में अपनी कारकर्दगी अंजाम देता है। ये तकरीब आज कर्नाटक के कारवार इलाके में मुनक़िद होगी। INS मालवान को कामकाज में शामिल किया जाना बहरी जहाजों को भारत में ही तैयार किए जाने वाले प्रोग्राम के तहत एक अहम कदम है। इस तकरीब की सदारत फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल AP सिंह करेंगे, जिसमें बहरिया के दीगर सरकर्दा अफसरान भी शिरकत करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने आला तालीम में खवातीन की शिरकत की हौसला अफजाई और खवातीन के तालीमी सिलसिले को मुनक़ता करने के वाकयात में कमी लाने के लिए एक बड़ी पहल के तौर पर रियासत की होनहार तालिबात को मुफ्त स्कूटी फराहम करने का फैसला किया है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ की सदारत में काबीना मीटिंग में रानी लक्ष्मी स्कूटी योजना पर अमल दरामद से मुतालिक रहनुमा खतूत की मंजूरी दी गई। तफसील हमारे नामानिगार से।
2: रियासत के आला तालीम के वजीर योगेंद्र उपाध्याय ने बताया है कि ग्रेजुएट लड़कियों में से शुरू में सरकर्दा 5% तालिबात की फहरिस्त तैयार की जाएगी। इसके बाद इनमें से तालिबात को उनकी काबिलियत की बुनियाद पर मुंतखब किया जाएगा। इस सरकारी स्कीम के तहत तालिबात को न सिर्फ स्कूटी फराहम की जाएगी बल्कि उन्हें बीमा, रजिस्ट्रेशन, हेलमेट, लाजमी मुतल्लिका सामान और 4 लीटर पेट्रोल भी फराहम किया जाएगा। माजूर तालिबात शहीद फौजियों और बेघर अफराद की बेटियों के लिए आमदनी की हद की शराइत में रियायत दी जाएगी। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान।
0: भारत ने उसूलों पर मबनी शफाफ और किसी तरह की तफरीक से पाक कसीर मुल्की तजारती निजाम के तई अपने अज़्म को दोहराया है। भारत ने अपनी इस राय का इजहार आलमी तजारती तंजीम WTO में तजारती पॉलिसी के अपने 8वें जायजे के दौरान किया, जिससे आलमी तजारत में मुल्क के बढ़ते हुए रोल का अंदाजा होता है। तजारत के सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने आलमी तजारती निजाम के साथ भारत की सरगर्मियों और तजारती माहदों का एक वसी तर नेटवर्क कायम करके तजारती ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने की कोशिशों पर जोर दिया। उन्होंने नर्म रवि पर मबनी गैर मुल्की रास सरमायाकारी के निजाम और तरक्की पजीर मुल्कों के माबेन तआवुन की लगातार हिमायत पर भी जोर दिया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में तजारत के महकमे ने कहा कि भारत सबकी शमूलियत वाली आलमी तरक्की को आगे बढ़ाने में एक काबिल एतबार और काबिल इन्हिसार शराकतदार है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नीट इम्तिहान का पर्चा लीक होने के हालिया केस में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और मुल्क के नौजवानों के मफादात का तहफ्फुज़ करने का अहद किया हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार इस तरह के वाकयात की रोकथाम के लिए कई इकदाम कर रही है। जनाब मोदी ने कल पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में कौमी जमहूरी इत्तेहाद NDA की पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग से खिताब करते हुए ये बात कही, जिसे अब मंगल मिलन भी कहा जाता है। इधर सरकार ने कहा है कि वो नीट इम्तिहान का पर्चा लीक होने के केस और दीगर मुतालिका मामलात पर पार्लियामेंट में बहस कराने के लिए तैयार है। कल शाम नई दिल्ली में नामानिगारों से बात करते हुए मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में अपोजिशन के रहनुमा राहुल गांधी पर इल्जाम लगाया कि वो सरकार की यकीन दहानी के बावजूद नीट से वाबस्ता मामलात पर बहस कराने के अपने पहले के मुतालबे से पीछे हट गए हैं।
3: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार

0: हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
1: इससे पहले दिन में कांग्रेस सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के लीडरों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने पार्टी के दीगर अरकान के साथ नीट मामले पर बहस का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। बाद में दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के सरकर्दा लीडरों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा, नीज समाजवादी पार्टी के सरबरा अखिलेश यादव समेत अपोजिशन के सभी लीडरों को रिहा कर दिया, जिन्हें लोक कल्याण मार्ग के नजदीक एहतजाज करने पर हिरासत में लिया गया था। इधर दिल्ली पुलिस ने एक मुबैना वाकये में मौत होने के बारे में सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली अफवाहों को मुस्तरद कर दिया है। एक बयान में पुलिस ने कहा है कि किसी की भी मौत नहीं हुई है। पुलिस ने लोगों पर जोर दिया है कि वो गैर मुसद्दका जानकारी पर न तो भरोसा करें और न ही इसे शेयर करें। दिल्ली पुलिस ने आवाम को सलाह दी है कि वो दुरुस्त और मुसद्दका जानकारी के लिए सिर्फ सरकारी वसीलों पर भरोसा करें। मरकजी वजीर सेहत जेपी नड्डा कल नई दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल गए और नीट यूजी इम्तिहान का पर्चा मुबैन तौर पर लीक होने के मामले पर कौमी राजधानी में एहतजाज के दौरान जख्मी होने वालों की सूरत हाल का जायजा लिया। वजीर मौसूफ ने अस्पताल में डॉक्टरों के साथ मीटिंग भी की। जनाब नड्डा लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज अस्पताल भी गए और वहां दाखिल सभी जख्मी मुजाहिरीन से मुलाकात की। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस और लोकसभा में अपोजिशन की लीडर राहुल गांधी पर इल्जाम लगाया है कि वो पार्लियामेंट के मानसून इजलास के दौरान रखना पैदा करने के लिए तलबा को सियासी आलायकार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब प्रधान ने कहा कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को नजरअंदाज करते हुए जनाब राहुल गांधी और कांग्रेस के दीगर रहनुमाओं ने वजीर आजम की रिहायशगाह के बाहर एहतजाज किया, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। जनाब धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार ने नीट मुआहदे पर जामे बहस कराने के लिए अपनी आमादगी से मुत्तला कर दिया था, इसके बावजूद कांग्रेस ने जमहूरी बहस मुबाहसे के बजाय सियासी तमाशा करने का रास्ता इख्तियार किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस का मकसद तलबा के लिए कोई हल तलाश करना नहीं बल्कि सियासी सुर्खियों में आने के लिए रखना डालना था। दिल्ली हाईकोर्ट ने सरगर्म कारकुन सोनम वांगचुंग को कौमी राजधानी के सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में मुंतकिल किए जाने का हुक्म दिया है। अदालत ने वांगचुक की अहलिया गीतांजलि अंगमो की दाखिल करदा दरखास्त की समाअत करते हुए यह हुक्म जारी किया है। मरकजी सरकार की तरफ से पेश होते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सोनम वांगचुक को मेदांता अस्पताल मुंतकिल करने पर सरकार को कोई एतराज नहीं है। फ्रांस की पार्लियामेंट ने एक खसूसी बिल को मंजूरी दी है जिसके तहत 15 साल तक की उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करने से बाज रखा गया है। फ्रांस की पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के कानून साज अरकान ने कल इस बिल के हक में वोट दिया। चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के जुमरे में पीवी सिंधु का मुकाबला अपनी हमवतन खिलाड़ी उन्नति हुडा से होगा, जबकि आयुष शेट्टी का सामना अलवी फरहान से होगा। एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन की मर्दों की डबल्स जोड़ी रोहन कपूर और रुत्विका शिवानी गद्दे, नीज तानिशा क्रिस्टो और ध्रुव कपिला की मिक्स डबल्स जोड़ी आज अपने अपने मैच खेलेंगी। इधर एचएस प्रणॉय पहले राउंड में ही मलेशिया के लियोन जुंग हाउ से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। खवातीन के सिंगल्स में देविका सिहाग थाईलैंड की खिलाड़ी बुसानन ओंगबाम रोंगफन से हार गई है। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
2: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात की शेष सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। नीट पेपर लीक मामले के कसूरवारों को बख्शा नहीं जाएगा, वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने अपने सफ़े अव्वल पर नुमाया किया है। रोजनामा प्रताप ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के तीन मुल्कों के सरकारी दौरे से मुतालिक खबर को अपने पहले सफ़े पर अहमियत के साथ शाये किया है। अखबार ने सदर जमहूरिया के इस बयान को नुमाया किया है कि इक्तसादी तआवुन भारत और शिमाली मकदूनिया के दो तरफा ताल्लुकात की इंतहाई अहम बुनियाद है। वजारत खारजा ने भारत में रूस के सिफारत खाने के नाजिमुल उमूर को तलब करके यूक्रेन में तिजारती जहाज पर हमले में चार भारतीय मल्लाहों की मौत पर एहतजाज दर्ज कराया। इस खबर को प्रताप समेत कई अखबारात ने अपने पहले सफ़े पर पेश किया है। इसके अलावा आज के अखबारात की चंद अहम बैन अलावामी खबरों की सुर्खियां इस तरह हैं। हूसियों के बहरी नाकाबंदी किए जाने पर सख्त जवाब दिया जाएगा, सऊदी अरब का इंतबाह।
1: और आखिर में खास खास खबरों का खुलासा एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भारत और शिमाली मकदूनिया के दरमियान

0: Madhurima, the sound of melody. Madhurima.
1: स्वागत है सभी श्रोताओं का आपके पसंदीदा कार्यक्रम सदाबहार फिल्मी गीतों के मधुरिमा में। आइए कार्यक्रम को शुरू करते हैं और आज का पहला गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म अंधाधुन से। इस गाने को अपनी आवाज़ दी है अमित त्रिवेदी ने, गीत के बोल हैं जयदीप साहनी के और संगीत है अमित त्रिवेदी का। फिल्म अंधाधुन।

आपने सुना फिल्म अंधाधुन से ये गीत। आइए सुनते हैं फिल्म आजा नचले से, सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ में। इस गीत को संगीत दिया है सलीम सुलेमान ने और गीत के बोल हैं जयदीप साहनी के। फिल्म है आजा नचले।

आजा नचले फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म ऑल इज वेल से। मिथुन और तुलसी कुमार की आवाज़ है, संगीत है मजरूह सुल्तानपुरी का और गीत के बोल हैं आनंद मिलिंद के। फिल्म ऑल इज वेल।

0: फिल्म ऑल इज वेल से आप सुन रहे थे ये गाना। आइए अब वक्त हो चला है एक छोटे से संदेश का।
1: वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
2: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
3: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
2: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: आइए अब सुनते हैं फिल्म आशिकी 2 से अंकित तिवारी की आवाज़ है, संगीत है अंकुर तिवारी का और गीत के बोल हैं संदीप नाथ के। फिल्म आशिकी 2।

अंकित तिवारी की आवाज़ में है फिल्म आशिकी 2 से आपने सुना ये गीत। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है और आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम मधुरिमा। अब आपको सुनवाते हैं अरिजीत सिंह की आवाज़ में फिल्म एयर लिफ्ट से ये गाना, जिसे संगीत दिया है अंकित तिवारी ने।

अरिजीत सिंह की आवाज़ में एयरलिफ्ट फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे कार्यक्रम मधुरिमा में। इसी के साथ हमारा कार्यक्रम मधुरिमा समाप्त होता है।

आप सुन रहे थे सदाबहार फिल्मी गानों का कार्यक्रम मधुरिमा। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम जिले की हलचल, जो रिले होगा हमारे लखनऊ केंद्र से।

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आइए सुनते हैं जिले की हलचल।
1: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है। जिले की हलचल आज सुनिए वाराणसी और मऊ जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं वाराणसी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मनीष सिंह का।
2: वाराणसी में ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार एवं ग्राम्य विकास विभाग उत्तर प्रदेश के संयुक्त तत्वाधान में रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत प्रथम पंच सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। सम्मेलन में उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड और उत्तराखंड के लगभग 500 ग्राम पंचायत प्रधानों ने भाग लेकर ग्रामीण विकास सुशासन और सशक्त पंचायतों के निर्माण पर व्यापक विचार विमर्श किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब गांव आत्मनिर्भर और सशक्त बनेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की प्राथमिकता गांवों तक विकास की हर योजना का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने ग्राम प्रधानों से जन भागीदारी बढ़ाने तथा सरकारी योजनाओं को पूर्ण पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने का आह्वान किया। विशिष्ट अतिथि भारत सरकार के ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने कहा कि विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 का उद्देश्य ग्राम पंचायतों को अधिक सक्षम जवाबदेह और विकासोन्मुखी बनाना है। सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के 350 बिहार के 75 झारखंड के 50 तथा उत्तराखंड के 25 ग्राम प्रधानों ने भाग लिया। प्रतिभागियों को विकसित ग्राम पंचायतों की अवधारणा ग्राम स्वराज सुशासन पारदर्शिता जवाबदेही और जन सहभागिता आधारित विकास मॉडल की विस्तार से जानकारी दी गई। इस अवसर पर ग्राम प्रधानों ने प्रधानमंत्री आवास योजना मनरेगा स्वयं सहायता समूह ग्रामीण सड़क स्वच्छ भारत मिशन तथा अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं की सराहना करते हुए कहा कि इन योजनाओं ने गांवों के विकास को नई दिशा और गति दी है। उन्होंने सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों की प्रशंसा करते हुए इन्हें गांव-गांव तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने का संकल्प भी दोहराया। सम्मेलन में पंचायतों की संस्थागत तैयारी विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और ग्राम स्तर पर पारदर्शी एवं उत्तरदायी शासन व्यवस्था को मजबूत बनाने पर भी विस्तार से चर्चा हुई। ग्राम प्रधान प्रियंका सिंह ने कहा सभी ग्राम प्रधान ग्रामीण विकास को जन भागीदारी से नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के संकल्प के साथ काम करेंगे। उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने श्री शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय चिकित्सालय कबीचौरा अस्पताल का निरीक्षण कर अस्पताल के व्यापक विस्तार एवं आधुनिकीकरण की घोषणा की। उन्होंने बताया कि लगभग 315 करोड़ रुपए की लागत से अस्पताल को 9 मंजिला अत्याधुनिक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में विकसित किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना के पूरा होने के बाद पूर्वांचल के लाखों मरीजों को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं एक ही परिसर में उपलब्ध होगी। नए अस्पताल में कार्डियोलॉजी न्यूरोसाइंस कैंसर उपचार आधुनिक ऑपरेशन थिएटर 50 से अधिक ICU बेड 100 से अधिक HDU बेड अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट तथा मातृ एवं शिशु चिकित्सा सहित कई सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं शुरू की जाएंगी। निरीक्षण के दौरान ब्रजेश पाठक ने वार्डों का जायजा लिया, मरीजों से मुलाकात कर उपचार की गुणवत्ता की जानकारी ली तथा चिकित्सकों और अधिकारियों को निर्देश दिए कि मरीजों के इलाज में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अस्पताल में स्वच्छता दवाओं की उपलब्धता और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं हर हाल में सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य प्रत्येक नागरिक को गुणवत्ता पूर्वक आधुनिक और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। कबीचौरा अस्पताल का यह सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्रोजेक्ट न केवल वाराणसी बल्कि पूरे पूर्वांचल के स्वास्थ्य ढांचे को नई मजबूती प्रदान करेगा। गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए मरीजों को अन्य शहरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। उन्होंने कहा
3: मंडली चिकित्सालय की जो सुविधाएं हैं वो भी रहेंगी और अतिरिक्त भी सुविधाएं ICU बेड की संख्या बढ़ाएंगे और बेहतर उच्चीकृत सेवाएं करेंगे। MRI CT डायलिसिस अन्य सुविधाओं को भी बेहतर से बेहतर कराएंगे। जो भी आवश्यकताएं हैं वाराणसी की मरीजों के हित में सब कुछ पूरी।
2: प्रदेश में 24 मार्च से 5 जुलाई 2026 तक संचालित 100 दिवसीय TB मुक्त भारत

0: अभियान में वाराणसी मंडल ने अग्रणी उपलब्धि हासिल करते हुए विभिन्न प्रमुख सूचकांकों पर 100% प्रदर्शन दर्ज किया है। अभियान के अंतर्गत गांव-गांव एवं शहर-शहर व्यापक स्तर पर टीबी की स्क्रीनिंग, जांच एवं उपचार की सेवाएं प्रदान की गईं। अभियान के दौरान हाई रिस्क गांवों का 100% आच्छादन सुनिश्चित किया गया। अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण डॉक्टर एनडी शर्मा ने बताया कि आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर विशेष स्वास्थ्य शिविर आयोजित कर संभावित टीबी मरीजों की पहचान की गई तथा चिन्हित मरीजों को समयबद्ध उपचार उपलब्ध कराया गया। अभियान में वाराणसी मंडल के चारों जनपद वाराणसी, चंदौली, जौनपुर एवं गाजीपुर ने सक्रिय सहभागिता निभाई।
1: वाराणसी जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं मऊ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है आजाद हुसैन नोमानी का।
2: मऊ में प्रदेश सरकार के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने बड़ी संख्या में उपस्थित शिक्षकों एवं शिक्षा कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षकों के सम्मान, सुरक्षा और कल्याण के लिए निरंतर संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना इसी दिशा में एक ऐतिहासिक और जन कल्याणकारी है, जो शिक्षकों तथा उनके परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करेगी। श्री शर्मा ने कहा कि शिक्षा समाज और राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। शिक्षक नई पीढ़ी का निर्माण करते हैं और उनके योगदान को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उनके स्वास्थ्य संरक्षण की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि
3: मऊ जिले के लगभग 9000 शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान की गई है और शिक्षक को ही नहीं बल्कि उसके परिवार जनों को भी ये सुविधा उपलब्ध कराई गई है और माध्यमिक शिक्षकों को, शिक्षा मित्रों को, रसोइयों को भी इसका लाभ मिलने वाला है।
2: मऊ जिले में बाढ़ एवं तट कटान से प्रभावित क्षेत्रों को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से जिला अधिकारी आनंद वर्धन ने सरयू नदी के दाएं तट पर स्थित ग्राम परसिया देवार एवं धर्मपुर विसुनपुर के मध्य प्रस्तावित तट कटान निरोधक परियोजना का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने परियोजना से जुड़े सभी तकनीकी एवं प्रशासनिक पहलुओं की विस्तार से समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने जिलाधिकारी को परियोजना का विस्तृत प्रस्तुतीकरण देते हुए बताया कि परियोजना की कुल स्वीकृत लागत 566.16 लाख रुपए है। जिलाधिकारी ने कहा कि बाढ़ एवं कटान प्रभावित क्षेत्रों की सुरक्षा जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि परियोजना के प्रत्येक चरण का क्रियान्वयन निर्धारित मानकों के अनुरूप गुणवत्ता एवं समयबद्धता के साथ सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि परियोजना का मुख्य उद्देश्य नदी की धारा को सुचारू रूप से प्रवाहित करते हुए तट को सुरक्षित बनाना, नदी के दाएं तट को अस्थायित्व प्रदान करना तथा आसपास के गांवों, कृषि भूमि एवं पक्के मकानों को कटान से बचाना है। मऊ के विकास भवन सभागार में मुख्य विकास अधिकारी विवेक कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में पोषण अभियान के अंतर्गत जिला पोषण समिति की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित कर जनपद में संचालित पोषण संबंधी कार्यक्रमों, संभव अभियान 6.0 तथा आंगनवाड़ी केंद्रों की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में जिला कार्यक्रम अधिकारी रंजीत कुमार ने संभव अभियान 6.0 के 5 प्रमुख घटकों, सामुदायिक जन जागरूकता एवं सहभागिता, कुपोषण की शीघ्र एवं समयबद्ध पहचान, आवश्यक सेवाओं से लाभार्थियों को जोड़ना, नियमित अनुवर्ती अनुश्रवण तथा आवश्यकता अनुसार संदर्भन की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संभव अभियान 6.0 की थीम गर्भावस्था से बाल्या अवस्था तक पोषण सुरक्षा है, जिसके अंतर्गत जीवन चक्र आधारित दृष्टिकोण अपनाते हुए गर्भवती एवं धात्री महिलाओं, नवजात शिशुओं तथा बच्चों के पोषण एवं स्वास्थ्य में सुधार के लिए समन्वित प्रयास किए जाएंगे। साथ ही गंभीर एवं मध्यम कुपोषण की रोकथाम और प्रभावी प्रबंधन पर विशेष बल दिया जाएगा। मुख्य विकास अधिकारी ने सभी बाल विकास परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया कि कुपोषित एवं अति कुपोषित बच्चों को सामान्य श्रेणी में लाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं तथा इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी चिन्हित बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर उनका ई कवच पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए। मऊ जिले में चलाए जा रहे विशेष संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर मुख्य विकास अधिकारी विवेक कुमार श्रीवास्तव ने अभियान को जन भागीदारी के माध्यम से सफल बनाने तथा प्रत्येक नागरिक तक स्वच्छता एवं रोगों से बचाव का संदेश पहुंचाने का आह्वान किया है। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि संचारी रोगों की

0: रोकथाम के लिए साफ सफाई, जल भराव की रोकथाम, हॉगिंग, एंटी लार्वा छिड़काव तथा व्यापक जन जागरूकता अत्यंत आवश्यक है। मऊ जिले में जल संरक्षण एवं स्वच्छता अभियान के अंतर्गत पुलिस कार्यालय में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक कमलेश बहादुर ने पुलिस विभाग के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जल संरक्षण, स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक रहने तथा इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सक्रिय योगदान देने की शपथ दिलाई।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। आज पहली सूचना हमें प्राप्त हुई है थाना राजगढ़ जिला मिर्जापुर से, जो कमलेश उर्फ बुद्धू पुत्र राजेंद्र निवासी ग्राम धनसिरिया राजगढ़ मिर्जापुर से है। ये दिनांक 31 मई 2026 से लापता हैं। इनकी आयु 27 वर्ष, कद 5 फीट 7 इंच, रंग गेहुआ और दाहिने हाथ पर ओम का निशान बताया गया है। आखिरी बार जब इन्हें देखा गया तो इन्होंने सफ़ेद शर्ट और काला लोवर पहन रखा था। साथ ही इनकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं बताई गई है। इनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त हो तो कृपया आप अपने नज़दीकी थाना या थाना राजगढ़ जिला मिर्जापुर को सूचित करें। इसी क्रम में थाना कोतवाली चुनार मिर्जापुर से प्राप्त सूचना के अनुसार साहिद अली पुत्र स्वर्गीय सिकंदर निवासी शिवपुर थाना चुनार जनपद मिर्जापुर से ये दिनांक 27/4/26 से लापता हैं। इनकी आयु 20 वर्ष, कद 5 फीट 6 इंच और चेहरा लंबा है। आखिरी बार जब इन्हें देखा गया तो इन्होंने गुलाबी टी शर्ट और काला लोवर पहन रखा था। थाना कोतवाली देहात जिला मिर्जापुर से प्राप्त सूचना नीतू बिंद पुत्री सोमारू जो मेवली कोतवाली देहात जिला मिर्जापुर की निवासी हैं, ये दिनांक 10 मई 2026 से लापता हैं। इनकी आयु 21 वर्ष, कद 5 फीट, रंग गेहुआ है। इनके बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त हो तो कृपया थाना कोतवाली देहात जिला मिर्जापुर या आप अपने नज़दीकी थाने से भी संपर्क कर सकते हैं। थाना ड्रम्डगंज जनपद मिर्जापुर से प्राप्त सूचना के अनुसार दिनेश पुत्र राम सकल निवासी गुलपुर नौगांव थाना ड्रम्डगंज जनपद मिर्जापुर की, जो दिनांक 16 अप्रैल 2026 से लापता हैं। इनकी आयु 37 वर्ष, कद 4 फीट 6 इंच, रंग सांवला है। आखिरी बार जब इन्हें देखा गया तो इन्होंने नीले रंग का टी शर्ट और लोवर पहन रखा था। इनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त हो तो कृपया अपने नज़दीकी थाने या थाना ड्रम्डगंज जिला मिर्जापुर को सूचित करें। थाना कोतवाली देहात जनपद मिर्जापुर से प्राप्त सूचना के अनुसार बुटानी पुत्र रामेश्वर मांझी जो खेतासराय मखदूमपुर थाना खेतासराय जिला गया बिहार के निवासी हैं, ये दिनांक 17 मई 2026 से सेमरा बेलौहा थाना कोतवाली देहात जिला मिर्जापुर से लापता हैं। इनकी आयु 6 वर्ष, कद 2 फीट 6 इंच और रंग सांवला बताया गया। इनके बारे में भी कोई सूचना प्राप्त हो तो आप अपने संबंधित नज़दीकी थाने या थाना कोतवाली देहात जनपद मिर्जापुर को सूचित कर सकते हैं। ये थी खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। मीडियम वेव 241.54 मीटर पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है।

0: मीडियम वेव 241.54 मीटर पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। अब से थोड़ी देर में सुनिए उर्दू कार्यक्रम जो रिले होगा हमारे लखनऊ केंद्र से।
1: बोल रहे हैं, पेश है उर्दू कार्यक्रम, पेशकश आकाशवाणी के गोरखपुर मरकज की है।
2: सामईन आदाब, उर्दू प्रोग्राम के साथ हाजिर है आपकी खिदमत में आपका मेजबान मोहम्मद फर्रुख जमाल। आज के प्रोग्राम का आगाज करेंगे डॉक्टर दरख्शां ताजवर के एक मकाले से, जिसका उन्वान है सन 1857 की जंगे आजादी में उर्दू प्रेस की खिदमत। और इसके बाद कलाम शायर के तहत आज हमने मदऊ किया है मोहतरमा नुसरत जहां को। लेकिन सामईन, आज नेशनल फ्लैग एडॉप्शन डे है, इस हवाले से समाज फरमाइए एक मुख्तसर तकरीर। कौमी इत्तेहाद और जमहूरी अकदार का मजहर तिरंगा। सामईन, आज 22 जुलाई है और आज का दिन मंसूब है हिंदुस्तान के कौमी परचम के हवाले से। पूरे मुल्क में 22 जुलाई को कौमी परचम के दिन के तौर पर मनाया जाता है। हर कौम का कौमी परचम उसकी आज़ादी, खुद मुख्तारी और वक़ार की अलामत होता है। 22 जुलाई सन 1947 को दस्तूर साज असेंबली ने बाज़ाब्ता तौर पर 3 रंगों वाले तिरंगे झंडे को कौमी परचम के तौर पर मंजूर किया था। हिंदुस्तान की आन बान और शान हमारा कौमी परचम, जिसे हम तिरंगा भी कहते हैं, जो 3 रंगों पर मुश्तमिल है। ऊपर जाफरानी रंग हिम्मत, कुर्बानी और ईसार की अलामत है। दरमियान का सफेद रंग अमन, सच्चाई और पाकीजगी की नुमाइंदगी करता है, जबकि सब्ज रंग खुशहाली, तरक्की और कुदरत से वाबस्तगी का पैगाम देता है। सफेद पट्टी के दरमियान नीले रंग का अशोक चक्र, जिसकी 24 तीलियां मुसलसल हरकत, इंसाफ और तरक्की की अलामत हैं। 22 जुलाई का दिन हमें उन अजीम रहनुमाओं और मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों को याद दिलाता है, जिनकी जद्दोजहद के नतीजे में हिंदुस्तान आज़ाद और खुद मुख्तार हुआ। भारत के कौमी परचम को पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया। गौरतलब है कि 22 जुलाई सन 1947 को जब दस्तूर साज असेंबली ने तिरंगे को भारत के कौमी परचम के तौर पर मंजूर किया, उसके बाद असल कौमी परचम यानी नेशनल फ्लैग को तैयार किया गया और उसे दस्तूर साज असेंबली के सदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पेश किया गया। इस कौमी परचम को रेशम पर सुरैया तैयब जी ने अपने हाथों से तैयार किया था। वो मशहूर सरकारी अफसर बदरुद्दीन फैज तैयब जी की अहलिया थी। सुरैया तैयब जी ने कौमी परचम की तैयारी में नहायत बारीक बीनी और फनकाराना महारत का मुजाहरा किया। उन्होंने अशोक चक्र की खूबसूरत नक्शाकशी की, जिसने तिरंगे की जाज़बियत को नई शान अता की। सुरैया तैयब जी ने भारतीय कौमी झंडे की तश्कील में अपने किरदार को कभी नुमाया नहीं किया। उन्होंने हिंदुस्तान के कौमी झंडे को तैयार करना मुल्क से वफादारी, मुल्क से मोहब्बत और अपना इखलाकी फर्ज समझा। आखिर में हम ये कह सकते हैं कि किसी भी आज़ाद मुल्क का कौमी परचम उस मुल्क की खुद मुख्तारी, इत्तेहाद और वक़ार की सबसे बड़ी अलामत होता है। तिरंगे का एहतराम हर हिंदुस्तानी बाशिंदे का इखलाकी और आईनी फर्ज है। हम सब बचपन से गाते चले आ रहे हैं, झंडा ऊंचा रहे हमारा, और हम ये दुआ भी करते हैं कि हमारे मुल्क की शान, हमारा तिरंगा अपनी आन बान और शान के साथ हमेशा यूं ही लहराता रहे। समय नेशनल फ्लैग एडॉप्शन डे के मौके पर अभी आप ये मुख्तसर

0: मोहतरमा अनुसर, जहां के इन अशार के साथ ही सामईन आज का उर्दू प्रोग्राम यहीं पर खत्म होता है, हमें इजाजत दीजिए। मुआविन तमाम मोहम्मद फर्रुख जमाल, पेशकश थी जनाब नूर मोहम्मद की। आज का उर्दू प्रोग्राम आपकी समातों के लिए आकाशवाणी गोरखपुर मरकज पर तैयार किया गया था।
1: आज का उर्दू कार्यक्रम नश्र किया जा रहा था आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से।
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। वक्त हो चला है एक छोटे से संदेश का।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए
2: 0542227658।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें
3: 0542227658।
4: प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत। इस कार्यक्रम में आज सुनिए महेंद्र सिंह यादव और साथी के गाए गीत। अब सुनते हैं महेंद्र सिंह यादव और साथी की आवाज में ये देवी गीत।

महेंद्र सिंह यादव और साथी की आवाज़ में आपने सुना ये देवी गीत। अब सुनते हैं महेंद्र सिंह यादव और साथी की ही आवाज़ में ये पूर्वी।

आप सुन रहे थे महेंद्र सिंह और साथी की आवाज़ में ये पूर्वी। इसी के साथ कार्यक्रम लोक संगीत समाप्त होता है। इस कार्यक्रम में आज आपने सुना महेंद्र सिंह यादव और साथी के गाए गीत। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलो हर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार। इस कार्यक्रम में आज हम शुरुआत कर रहे हैं फिल्म मेरा नाम जोकर के गीत से, जिसे आवाज़ दी है मुकेश ने। गीत के बोल हैं शैलेंद्र के और संगीत है शंकर जयकिशन का। फिल्म मेरा नाम जोकर।

0: फिल्म मेरा नाम जोकर से, ये गीत आप सुने। आइए अब सुनते हैं फिल्म आनंद से। इस गीत को संगीत दिया है शलील चौधरी ने और आवाज़ है मुकेश की। फिल्म आनंद।
1: मैंने

फिल्म आनंद का ये गाना आपने सुना। तो श्रोताओं, आपको बताते चलें कि फिल्म संगीत जगत के मशहूर सिंगर मुकेश आज ही के दिन 1923 में दिल्ली में जन्मे थे। तो आज कार्यक्रम झनकार में हम मना रहे हैं उनका जन्मदिन।

आइए इसी कड़ी में आपको सुनवाते हैं फिल्म धर्मात्मा से। आवाज़ है मुकेश और कंचन की, गीत के बोल हैं इंदिवर के और संगीत है कल्याण जी आनंद जी का। फिल्म धर्मात्मा।

फिल्म धर्मात्मा से ये गाना आपने सुना। आइए अब सुनते हैं मुकेश और लता की आवाज़ों में फिल्म सरस्वती चंद्र से, जिस गाने के बोल हैं इंदिवर के और संगीत है कल्याण जी आनंद जी का, फिल्म सरस्वती चंद्रा।

फिल्म सरस्वती चंद्र से आपने सुना ये गीत। आइए सुनते हैं फिल्म श्री 420 का ये गाना, जिसे आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने। गीत के बोल हैं शैलेंद्र के और संगीत है शंकर जयकिशन का। फिल्म श्री 420।

श्री 420 से ये गाना आप सुन रहे थे आपके पसंदीदा कार्यक्रम झनकार में। प्रसारण आकाशवाणी वाराणसी केंद्र से हो रहा है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं मुकेश और लता की आवाज़ों में फिल्म छैला का ये गीत, जिसे संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने और गीत के बोल हैं कमर जलालाबादी के। फिल्म छैला से

फिल्म छैला से आपने सुना ये गीत। अब आपको सुनवाते हैं फिल्म यहूदी का ये गाना, जिसके बोल हैं शैलेंद्र के, संगीत है शंकर जयकिशन का, और इस गाने को आवाज़ दी है मुकेश ने, फिल्म यहूदी से।

आप सुन रहे थे फिल्म यहूदी का ये गीत। अब सुनते हैं फिल्म पत्थर के सनम का ये गाना, जिसे संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीत के बोल हैं मजरूह सुल्तानपुरी के। इस गाने को अपनी आवाज़ दी है मुकेश ने। फिल्म है पत्थर के सनम।

फिल्म पत्थर के सनम का ये गाना आप सुन रहे थे आपके पसंदीदा कार्यक्रम झनकार में। आइए सुनते हैं फिल्म आस का पंछी से ये गीत, जिसे जिसके बोल हैं हसरत जयपुरी के और संगीत है शंकर जयकिशन का। इस गाने को अपनी आवाज़ दी है मुकेश और लता मंगेशकर ने। फिल्म है आस का पंछी।

फिल्म आस का पंछी से ये गीत आप सुन रहे थे। आइए सुनते हैं फिल्म गोरा और काला का ये गाना, जिसके बोल हैं आनंद बख्शी के, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गाने को अपनी आवाज़ दी है लता मंगेशकर और मुकेश ने। फिल्म है गोरा और काला।

फिल्म गोरा और काला का ये गाना आप सुन रहे थे मुकेश और लता की आवाज़ों में। अब आपको सुनवाते हैं फिल्म अनोखी रात का ये गीत, जिसके बोल हैं इंदिवर के और संगीत है राजेश रोशन का। फिल्म अनोखी रात।

फिल्म अनोखी रात का ये गाना आप सुन रहे थे एक आपके पसंदीदा कार्यक्रम झनकार में। आज के कार्यक्रम का ये आखिरी गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म धरती कहे पुकार के। इस गीत के बोल हैं मजरूह सुल्तानपुरी के और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत को अपनी आवाज़ दी है लता मंगेशकर और मुकेश ने। फिल्म है धरती कहे पुकार के।

प्रस्तुत है आपके ईमेल संदेशों पर आधारित कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। और आज कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपका रेडियो दोस्त अनुपम। आप सभी को हमारा नमस्कार।

दोस्तों आपको पता है इस कार्यक्रम में हम पहले से आए हुए मेल्स को शामिल करते हैं, लेकिन फिर भी जो आगे इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं उनके लिए हम बताना चाहेंगे। हमारी मेल आईडी नोट कीजिए, मेल आईडी है AIRVNSFGEXP@gmail.com। मेल आईडी एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारी मेल आईडी है AIRVNSFGEXP@gmail.com। तो जो श्रोता आज मेल भेजेंगे उसे अगले कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। अभी हम शामिल करेंगे पहले से आए हुए मेल्स में ही, और आपको बताना चाहेंगे कि अभी हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर 71,950 मेल दिख रहे हैं। आप सोचिए 71,950 की संख्या जो होती है एक बड़ी संख्या होती है, और उसमें से बहुत से रिपीट मेल होते हैं, और उसमें से हमें चुनना होता है कुछ खास संदेशों को। तो कार्यक्रम में पहला मेल हम शामिल कर रहे हैं झज्जर हरियाणा का। भेजने वाले श्रोता हैं बिट्टू भाटिया, रीता भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया। तहसील रोज गंज डुंडवारा से KH राही गुड़िया बेगम, वकील प्रेमी हम्मा जमील। पटियाली रोड गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से M खलील कुरैशी, नुसरत बेगम, बेबी अरीबा और हबीबा। दिल्ली शहर से वलीउल्लाह अंसारी, आमना अंसारी, नसरीन और दुखनी अंसारी। फूलपत्ती करजत से अहमद और देव, आप अपने उपनाम न लिखें। धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू। शिवाजी चौक कटनी से हमारे बहुत ही पुराने श्रोता हैं अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, दिलीप वर्मा, संजय सोनी, अरुण कनौजिया, पवन यादव, संजीव वर्मा, सुनील जैन, रजन रजक, लालू, सोना, मुना, हनी, यस और उनके मम्मी पापा। कस्बा बराड़ जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरु शबद सिंह राहुल। बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुन्निशा साविस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यस मंसूरी। गांव डाकघर निम्नाबाद जिला जीन हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जितेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर। जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी। ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना गोंडाने, प्रणय प्रसिद्धि और हीरामन शेंडे जी। आप सभी को हम सुनाने जा रहे हैं आप सभी की पसंद पर चित चोर फिल्म का गीत, जिसे लिखा और संगीत दिया है रविन्द्र जैन ने, आवाज यशुदास की।

जी हाँ दोस्तों, आप सोच रहे हैं कि आज कौन सी खुशी इनको मिल गई है। भाई खुशी ये मिली कि मौसम बदल गया। जी हाँ, मौसम अच्छा हुआ, सुहाना हुआ। तो जब मौसम बदलता है तो उसका असर तो आपके व्यक्तित्व पर पड़ता ही है ना। और खुशियाँ ढूंढनी चाहिए, खुशियाँ कहीं भी मिले उससे ले लेनी चाहिए। और खुश होने के लिए बहुत से बहाने होते हैं, तो उन बहानों का हमें ढूंढने की ज़रूरत है ना दोस्तों। तो अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं अगला मेल किसने भेजा है। ये पोटिया कला दुर्ग से हैं, संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू, सीमा साहू। वीरम ग्राम राजकोट से रुचि गुप्ता, ट्विंकल और उमा गुप्ता। दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से बसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी, अजय कुमार, रिम्मी, तनुश्री, नन्ही पोती अनविका, तनुश्री गुप्ता। पीहरा बाजार झुमरी तिलैया से अभय कुमार सनातनी, गुड्डू कुमार, शिवानी कुमारी, प्रियंका कुमारी साहू, मुन्नी देवी शाह, जयप्रकाश साव, बसंत लाल साव, रिया जिया, ट्रुसी, आयुषी और अनिरुद्ध बाबू। कुंभार गली कोलगांव से पांडु चंदन, उषा चंदन, प्रतीक्षा चंदन। ऑरेंज सिटी नागपुर से विठल जाधव, अनुसुईया जाधव, पवन राजे जाधव। गुरमीत सिंह मीता साउथ दिल्ली से संदेश भेज रहे हैं। नागचंद रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, खुश नसीब, अब्दुल हक टावर, जियाउल हक टावर। भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी। सोनवर्षा खानपुर चुनार मिर्जापुर से अनीश राजभर, मनीष राजभर, आशीष राजभर और आकर्ष राजभर।

बिहार स्टेट डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, छत्तीसगढ़ से प्रभा जयपुरिया और गौरिया जालंधर से अशोक जाटो का भी मेल मिला है। जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना, उमा राज, दिव्या भारती और बिहार से वसीम अकरम, बेबी जोई और गुड़िया खातून। मलियान सरधना मेरठ से अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवम और उनके ढेर सारे दोस्त। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी और अनुराग मोहन। ग्राम ब्योरा संबलपुर छत्तीसगढ़ से शिवदयाल वर्मा, नरोत्तम वर्मा, तुषार वर्मा, वंशिका वर्मा। ग्राम बागामुड़ा कोमा खान छत्तीसगढ़ से प्रज्ञानंद देवांगन, नंदिनी देवांगन, प्रकाश देवांगन और यहीं से गायत्री, यशवर्धन, यशस्वी देवांगन। पद्मा टाकिश नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह। कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी और बाय हिमाक्ष। कंवर कॉलोनी बड़वा जिला खरगोन मध्य प्रदेश से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा, पूजा परिहार। आप सभी को हम सुनवाने जा रहे हैं सफर फिल्म का गीत, मुकेश की आवाज में, शब्द रचना निवर की, संगीत कल्याण जी आनंद जी का। तो दोस्तों आज 22 जुलाई भी है और आज जन्मदिन है पार्श्व गायक मुकेश का। 22 जुलाई सन 1923 को इनका जन्म दिल्ली में हुआ था। वो मुकेश जी शुरू में अभिनेता बनना चाहते थे, लेकिन अपनी दर्द भरी आवाज़ और भावपूर्ण आवाज़ के लिए जाने जाने वाले मुकेश राज कपूर की आवाज़ के रूप में बेहद लोकप्रिय हुए। तो आज हम उनके जन्मदिन को मना रहे हैं और उन्हीं का गाया हुआ ये गीत सुनते हैं। तो शुरू में हमने बताया था ना, खुशी खुशी ये भी है कि आज मुकेश का जन्मदिन है।

बिल्कुल दोस्तों, जो आपको पसंद है हम वही बात कहने के लिए यहाँ आते हैं और वही बात हम करते भी हैं। आपकी पसंद हमें मिलती है फरमाइशों के द्वारा। वो फरमाइश कभी मेल के द्वारा होती है, कभी व्हाट्सएप के द्वारा होती है और कभी फ़ोन के माध्यम से भी मिलती है और पत्रों के द्वारा भी तो मिलती है ना। तो उन फरमाइशों को पूरा करने के लिए तो हम यहाँ आते हैं। और जब आपकी फरमाइशें आती हैं, आपकी जब पसंद का गीत हमको सुनाने के लिए आप बोलते हैं, तो लगता है कि नहीं, मुझे ये करना है। और इसी को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं अगली फरमाइश किसने भेजी है, यानी अगली पसंद किसकी है। यह है गमरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल, आर्य जायसवाल बबरी बाजार जिला चंदौली से विजय जायसवाल, सरोज जायसवाल रामनगर कदमा जमशेदपुर से, मुराहू जायसवाल देवंती जायसवाल चकिया बाजार जिला चंदौली से, सुंदर जायसवाल सुमन जायसवाल सुभाष जायसवाल शिवांश जायसवाल। ईमेल भेजा है ग्राम पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंदसोलिया, आदर्श सार्थक और अलौकिक चंदसोलिया। पटेल नगर मुगलसराय से शशि सिंह आस्था सिंह और आकाश सिंह का भी मेल हमें मिला है। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद। बोड़ागाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत, गुड्डी भगत। अपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघात परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज फरदीन, सुहान अरजान और अबान अब्बासी। इस मेल में मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि आपके कुछ नाम कम हुए हैं। पहले एक लंबी लिस्ट होती थी, लिस्ट आपने छोटा किया, इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब छोटी लिस्ट होती है ना तो लगता है कि और अधिक से अधिक श्रोता हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हो पाएंगे। अगला मेल हमें भेजा है जमानिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल। गमरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार जायसवाल, आर्य कुमार जायसवाल। जमानिया रेलवे स्टेशन से एसपी जायसवाल, डिंपल जायसवाल, आशुतोष जायसवाल, अभिनव जायसवाल। मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से दिलशाद हुसैन, फातमा सोगरा, वकार हैदर, कनी सकीना, हसीना दिलशाद और वसीम फातमा का भी मेल हमें मिला है। पोटियाकला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू, सीमा साहू। मुकाम पोस्ट फुल चिंचोली तालुका पंढरपुर से जाकिर मुलाणी, सुमैया मुलाणी, सुबान मुलाणी, समीर मुलाणी, सलमा मुलाणी, मुमताज मुलाणी, यहीं से दिलशाद मुलाणी, नसीद मुलाणी, बानू बी मुलाणी, बादशाह मुलाणी और अभी लगता है कुछ लोग बचे हुए, तो उन्होंने लिखा है पूरा मुलाणी परिवार।

छत्रपति शिवाजी नगर खंडवा से राजेश सेन, सुरेखा सेन, शुभम, अक्षय। लालगंज रायबरेली से के साहू, अमिता साहू, स्वस्तिका, ऋषु, इलार, वीनस। चितबड़ा गांव बलिया से जीसी गुप्ता, आराधना गुप्ता, नेहा, निधि, आयुषीर, अनुष्का, ओबरा, सोनभद्र से शुभम और आयुषी का भी मेल हमें प्राप्त हुआ। कस्बा बराड़ा, जिला अम्बाला, हरियाणा से रवि कुमार, रंजीत, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुरकिरत, गुरशबद। गोल सिटी बरका काना से अफजल ताज, शाहिन सुल्ताना, सोनू, तस्नीम, निप्पी साहनी और मोहम्मद अफजल मलिक। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव। हरियाणा से अंकित कांगड़ा, मोनी कांगड़ा, प्रिंस बोथ, सीताराम कांगड़ा और साहिल कांगड़ा। आप सभी सुनिए, चूंकि आज मुकेश का जन्मदिन है तो कुछ मुकेश के गाने भी होने चाहिए ना दोस्तों। तो हम आपको सुनाने जा रहे हैं संगम फिल्म का गीत मुकेश की आवाज में। इस गीत को लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत शंकर जयकिशन का।

ब्रेक के बाद आप सभी का फिर स्वागत है कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस में, और ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से अपने रेडियो दोस्त अनुपम के साथ। कार्यक्रम में अगला मेला में भेजा है अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी, बहादुरगंज गाजीपुर से आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन, अब्दुल्ला आजाद। मित्रनगर बीड शहर महाराष्ट्र से विकास बनसोड़े, रेखा बनसोड़े, अदिति बनसोड़े, वैभव शिंदे। हिल स्टेशन खंडाला से आकाश सरोदे, प्रिया सरोदे। डांडी लोहारा बालो छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी पूजा तामुरिया, राधिका और प्रभा देवी तामुरिया और मास्टर अल कबीर। पटियाली रोज गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से एम खालिल कुरैशी, नुसरत बेगम, बेबी अलीबार हबीबा। किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से जुबैर अली खान, सबिया अंजुमन खान। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, रामदेवरा से दिनेश चौहान, खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा। इंदिरा चौक दिल्ली से अजीम वकार, माहिरा अजीम और निशा अजीम, जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना, उमरखेड़ से श्वेता सोनी, प्रवीण सोनी और लाला सोनी। जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान और भाई राजकुमार बुड़ाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदनी, रोहित, ऋतु, मुकेश, जगताप। ग्राम नागर कोहरा जिला राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से बाबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा दुष्यंत, प्रांजल समीक्षा, बेबी आराध्या साहू। सुनिए अपनी पसंद पर श्री 420 फिल्म का गीत मुकेश और साथियों की आवाज में, गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन।

कर्क में अगला मेल भेजा है तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श बेगम राबिया शेख शेख रहीम मुन्ना ने। पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, सोनम वली, बेबी अनुश्री वली, आसमा वली और राज अंसारी। बड़ी गबी चौराहा वाराणसी से अरुण कुमार मालवी दर्द, श्री त्रिभुवननाथ मालवी, अनमोल मालवी श्लोक। रोहांसी छत्तीसगढ़ से ईमेल भेजा है मुकेश साहू, नंदनी साहू, मनीष साहू, मयंक साहू और जानकी साहू ने। लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, सुरीत रमेश साहू। डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदिबा और दानिश अंसारी। गोलाबाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद आर्य और परमानंद आर्य। सारिमपुर बक्सर से राज एस टी अंसारी और आसमा खातून अंसारी। पटेल नगर मुगलसराय से आप हैं सुनील कुमार सिंह। अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना ने लदौली जिला मुरादाबाद से हमें मेल प्रेषित किया है। गांव जेहरा हिसार हरियाणा से वीरेंद्र भ्याण, सुरेंद्र भ्याण, शमशेर भ्याण, मनोज भ्याण ने भी संदेश हमें भेजा है। राजधानी रायपुर से नीलू मेघ नीलम, डॉक्टर वंदना कुमार, बिट्टू कुमार, मित्रगण और इनके परिवार के लोग। मेल की संख्या तो बहुत है लेकिन रिपीट मेल बहुत है। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा। तो आप सभी को हम सुनाने जा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में मेरा गांव मेरा देश फिल्म का गीत। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। तो शुरू में मैंने गाना प्ले किया था, वो जो ट्रैक था आगे खुशियों की बात हो रही थी, तो खुशी का एक कारण तो आज था मुकेश का जन्मदिन। दूसरा कारण एक जानते हैं और क्या है, आज है राष्ट्रीय आम दिवस। जी हाँ, नेशनल मैंगो डे। तो कहते हैं ना, फलों का राजा कौन है, फलों का राजा तो आम ही है ना। तो आम के स्वाद, स्वास्थ्य लाभ और सांस्कृतिक महत्व को हम सम्मानित करने के लिए इस खास दिन को मनाते हैं। और आम का नाम आते ही वो खास तौर से हमारे मुँह में पानी आ जाता है। और आम का तो सीजन भी चल रहा है, कोई लंगड़ा खा रहा है तो कोई दशहरी भी खा रहा है, और चौसा भी किसी से कम नहीं है। तो आमों की तमाम वैरायटियां हमारे देश में हैं, और जानते हैं सबसे अधिक आम का उत्पादन हमारे देश में ही होता है। और तो आप आम खाइए, आम के आम दिवस पर आम खाइए और सुनिए ये गीत।

श्रोताओं, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगता है और क्या सुधार आप इसमें चाहते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर भेजा करिए। हमारे प्रतिक्रिया भेजने के लिए हमारा पता नोट कीजिए, pklt@varanasi.gmail.com। हम आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार करते हैं। मेल आईडी एक बार फिर से सुन लीजिए, प्रतिक्रिया भेजने के लिए pklt@varanasi.gmail.com। कार्यक्रम में अगला मेल हमें भेजा है पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता ने। नांगलोई दिल्ली से मदन चक्रवर्ती राजेंद्र चड्ढा। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो, पर्ल डिकैस्ट्रो और विलिस डिकैस्ट्रो का भी मेल हमें प्राप्त हुआ। खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्य मल्होत्रा, लाडू कोयल मल्होत्रा, पापाची नानकचंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयू सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू सिक्का। पंचकुला सेक्टर 9 से आशु चुग, अश्विनी चुग, गोविंद चुग, टोनी दीवान, लव दीवान, राधे भाविका ढींगरा। राशिपुर बहादुरपुर सिरकोनी जौनपुर उत्तर प्रदेश से रमाशंकर यादव, लालचंद यादव, उमेश पांडे, सुल्तानपुर सिरकोनी जौनपुर से आपने संदेश तो भेजा है, लेकिन आप जब आगे भी मेल करें तो मेल में एक तरफ नाम रहे और एक तरफ पता रहे। आपने मेल में नाम और पते का घालमेल किया है, उसमें से छाटना पड़ा है, तो ऐसा करेंगे तो दिक्कत होगी, आप ऐसा ना करें। गांव कलमंड खुर्द जिला झालावाड़ राजस्थान से अनूप सिंह नाथावत। आप सभी सुनना चाहते हैं मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में शोर फिल्म का ये गीत।

कार्यक्रम का आखिरी गीत सुनना चाहा है आप सभी श्रोताओं ने, श्री काशी विश्वनाथ धाम वाराणसी से आजन कुमार सिंह, वंदना सिंह, विनती सिंह, विनायक सिंह, मोहिनी सिंह, मोहित सिंह और प्यारी कोकुरानी। शफी मोहम्मद सोलंकी, शाहरुख खान, मांगे खान, शहीद खान, ईदो कुमारी, इसरोल बाड़मेर राजस्थान से, ग्राम कुंडावलतारा पोस्ट लार रोड स्टेशन जिला देवरिया उत्तर प्रदेश से, रतिना त्रिपाठी, राखी आर्या, एंद्री ओमनाथ सारंग, शिवांग रोली, अदिति माताजी, निर्मला त्रिपाठी, गढ़नुखा लालगंज रोहतास बिहार से राजकिशोर सिंह चौहान, बड़क सिंह चौहान, अशोक कुमार प्रजापति, आकाश प्रजापति, शिवप्रकाश प्रजापति, राहुल प्रजापति करौता वाराणसी से, इमरती यादव ग्राम बारा अट्ठी पोस्ट सकलिया चंदौली से, गौलक्षणी सासाराम से कुमारी गंगारती चौहान, राजेश कुमार अकेला, कुमारी गुड्डू चौहान, आर के सिंह चौहान, परवेज अहमद फागू सोनकर शुकुलपुरा वाराणसी से, रेखा पांडे, संतोष पांडे, प्रगति पांडे और शिवम पांडे चौखंडी हाथी बाजार वाराणसी से। तो कार्यक्रम के अंत में आप सभी को हम सुनवा रहे हैं मुकेश की आवाज में दीवाना फिल्म का ये गीत। आज मुकेश का जन्मदिन है तो ये गीत भी उन्हीं को समर्पित है।

इसी ख्वाहिश के साथ की होगी फिर मुलाकात। फरमाइश गीत एक्सप्रेस कार्यक्रम समाप्त करने की अपने रेडियो दोस्त अनुपम को दीजिए इजाजत। नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से प्रसारित हो रहा था। अब आइए सुनते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: शब्दांग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश। आप सबका स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।

0: और मैं हूं अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत और गुरशब्द सिंह राहुल जी ने। लिखते हैं,
1: झाड़ू जब तक एक सूत्र में बंधी होती है तब तक वह कचरा साफ करती है, लेकिन वही झाड़ू जब बिखर जाती है तो खुद कचरा हो जाती है। इसलिए हमेशा संगठित रहें और बिखर कर कचरा न बने।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद एकता और संगठित रहने का सुंदर विचार भेजने के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। श्रोताओं, हमें पहला संदेश मिला है कोका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी का। लिखते हैं,
1: डॉक्टर कामिल बुल के 24 तारीख को सुने, बेल्जियम में जन्मे कैसे भारत को अपना कर्मभूमि बना लिया। रामचरित

0: बेल्जियम में जन्मे कैसे भारत को अपना कर्मभूमि बना लिया, रामचरितमानस पर शोध किया और कामिल बुल्के से कामिल बुल्के बाबा बन गए। बहुत अच्छा लगा इतनी अच्छी जानकारी और प्रस्तुति के लिए। उमंग टीम को बहुत बहुत बधाई।
1: और अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा, राधिका, प्रभा देवी और मास्टर अल कबीर का।
0: भवानीगढ़ संगरूर पंजाब से परमिंदर सिंह रंधावा, लखनपाल रंधावा और सुरेंद्र कौर रंधावा जी का।
1: और गणेशवाड़ी कोल्हापुर महाराष्ट्र से संभाजी सुतार, चेतन सुतार और सारिका सुतार जी का।
0: पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, तनुजा देवांगन और ईशांत देवांगन।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। एक बार फिर से प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए के अंतर्गत आज की कड़ी। श्रोताओं इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं भारत के अनूठे मेलों की,
0: ऐसे मेलों की जो प्रयास है समुदायों को उनकी संस्कृति से जोड़ने का। इनके बारे में लोगों को अधिक पता नहीं है लेकिन वे अपने आप में सचमुच अद्भुत हैं, जीवंत हैं और प्रेरणा देने वाले भी। तो कल हमने चर्चा की थी असम राज्य के जॉनबील मेले की, जहां वस्तु विनिमय प्रणाली का आज भी प्रचलन है।
1: आज हम चलेंगे एक और सुंदर और मनोरम उत्तर पूर्वी भारत के पर्वतीय राज्य नागालैंड और जानेंगे एक और मेले के बारे में। इसे हॉर्नबिल मेले के नाम से जाना जाता है। तो विमलेश जी अब चर्चा को आगे बढ़ाइए।
0: जी अजीत जी, श्रोताओं हॉर्नबिल महोत्सव या मेला नागालैंड का सबसे प्रसिद्ध सांस्कृतिक मेला है। इसे त्योहारों का त्योहार यानी फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है। अजीत जी आप जानते हैं कि ये कब मनाया जाता है?
1: जी विमलेश जी, हॉर्नबिल मेला हर साल 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है।
0: जी
1: ये कोहिमा के पास किसामा हेरिटेज विलेज में आयोजित किया जाता है। लेकिन विमलेश जी एक स्वाभाविक प्रश्न मेरे मन में आता है और वो ये है कि इस उत्सव या मेले का नाम हॉर्नबिल क्यों पड़ा?
0: अजीत जी बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है आपने।
1: जी
0: इसका जवाब भी उतना ही सुंदर है। हॉर्नबिल एक पक्षी है जो अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। ये जबरदस्त उड़ान भर सकता है। इसके पंख इतने शक्तिशाली होते हैं कि जब ये उड़ता है तो उसके पंखों की फू फू जैसी आवाज दूर दूर तक सुनाई देती है।
1: जी विमलेश जी, पूर्वोत्तर भारत में विशेषकर नागालैंड में इस पक्षी को यानी हॉर्नबिल पक्षी को साहस, सम्मान और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है।
0: जी यही वजह है कि नगा परंपराओं में विशेषकर सर के आभूषणों में हॉर्नबिल पक्षी का प्रतिरूप अवश्य दिखाई देता है। आइए अब जानते हैं कि क्या होता है हॉर्नबिल मेले में।
1: श्रोताओं इस मेले में रंग बिरंगे पारंपरिक नृत्य देखने को मिलते हैं।
0: जी
1: जिनमें सबसे लोकप्रिय और आकर्षक है युद्ध नृत्य।
0: जी
1: युद्ध नृत्य में पुरुष योद्धा पारंपरिक हथियार लेकर नृत्य करते हैं। तेज ड्रम की ताल, वॉर क्राई और तालबद्ध पैरों की गति के साथ ये नृत्य होता है।
0: जी
1: विमलेश जी एक बहुत विशेष बात तो हम भूल ही गए थे, ये तो बता दें कि इस मेले के दौरान एक बड़ी खास प्रदर्शनी होती है जिसे मोरुंग कहते हैं।
0: जी
1: ये मोरुंग होता क्या है?
0: अजीत जी मोरुंग नागालैंड की जनजातियों का युवा आवास हुआ करता था। ये बांस और लकड़ी से बना हुआ बड़ा सामुदायिक भवन होता था।
1: जी प्रत्येक गांव में कम से कम एक मोरुंग अवश्य होता था। वहां जनजातीय इतिहास, युद्ध कौशल, वाद्य संगीत और लकड़ी के हस्त कौशल सिखाए जाते थे।
0: जी यहाँ हस्तशिल्प, हैंडलूम यानी हस्तकरघा, स्थानीय व्यंजन इत्यादि प्रचुरता से मिलते हैं।
1: श्रोताओं ये उत्सव नागालैंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रदर्शन है।
0: जी
1: यहाँ आकर लोग असली नागा जनजातीय जीवन, आतिथ्य और उनकी परंपराओं की ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। तो श्रोताओं ये थी जानकारी नागालैंड के बेहद खास मेले हॉर्नबिल उत्सव की।
0: जी
1: कभी नागालैंड जाएं तो इस मेले का आनंद जरूर लें।
0: जी
1: तो अब प्रस्तुत है आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है
0: मोरुंग किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: मोरुंग किसे कहते हैं? 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपने उत्तर व संदेश हमें भेज सकते हैं। और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो श्रोताओं हमारा पहला कार्यक्रम है सुंदरिया।
0: कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में एक प्यारी गाय सुंदरिया की कहानी बताई गई है और उसके माध्यम से बच्चों को संदेश दिया गया है कि पशुओं में भी भावनाएं और संवेदनाएं होती हैं।
2: एक समय की बात है, हरियाणा के एक गांव में एक किसान रहता था। नाम था हीरा सिंह। निर्धनता के कारण बड़ी मुश्किल से उसके परिवार का गुजारा चलता था। उसके पास एक गाय

0: नाम था सुंदरिया। उस गाय के कारण हीरा सिंह से गांव वालों को बड़ी ईर्ष्या होती थी। निर्धनता का ये हाल था कि हीरा सिंह सुंदरिया के लिए चारा भी नहीं जुटा पाता था। वो भी गाय को बहुत प्यार करता था। वो चाहता था कि किसी प्रकार गाय को अच्छा चारा मिल सके, लेकिन तंगी पीछा नहीं छोड़ती थी, इसलिए कई बार उसके मन में एक विचार आया।
1: अब तो सुंदरिया को पालना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। कहां से आएगा उसके लिए चारा? यहां तो परिवार के खाने के लाले पड़े हुए हैं। सोचता हूं उसे किसी धनी किसान को बेच दूं, कम से कम अच्छा चारा तो मिलेगा उसे।
0: लेकिन हीरा सिंह अपने बड़े बेटे जवाहर सिंह से डरता था, क्योंकि उसे सुंदरिया गाय से बहुत लगाव था। जवाहर सिंह सुंदरिया को प्यार से मौसी बुलाता था। समय बीतता गया और आखिर परिवार की दरिद्रता समाप्त करने के लिए हीरा सिंह नौकरी की तलाश में दिल्ली आ गया। वहाँ एक सेठ के यहाँ उसे चौकीदार की नौकरी मिल गई। एक दिन सेठ ने कहा,
2: हीरा सिंह, शहर में आजकल दूध की बड़ी किल्लत हो रही है।
1: जी मालिक, ये बात तो है।
2: पता नहीं जो दूध तुम दुकानों से लाते हो वो ठीक भी है या नहीं। बहुत मिलावट चल रही है। तुम तो हरियाणा के हो, सुना है वहां की गायें बड़ी अच्छी और दुधारू होती हैं। एक काम करो, तुम हमारे लिए किसी अच्छी गाय का प्रबंध कर दो।
1: जी मालिक, कोशिश करता हूँ। वैसे एक गाय है मेरी निगाह में।
2: अच्छा,
1: ऐसी कि साक्षात कामधेनु। दूध भी 15 शेर से ज्यादा ही उतरता है और उसके 200 रुपए तक लग चुके हैं।
2: भाई, इतनी अच्छी गाय है तो 10 रुपए अधिक हम दे देंगे। ये लो 100 रुपए, बाकी तुम्हारे आने पर मिल जाएंगे।
1: जी मालिक।
0: दरअसल हीरा सिंह के मन में उसकी प्यारी गाय सुंदरिया ही थी। सोचने लगा, यहाँ आएगी तो अच्छा चारा भी मिलेगा और मैं उसकी सेवा भी कर लूंगा। हीरा सिंह उसी दिन गांव चला गया। जैसे तैसे अपने बेटे जवाहर को समझाया और गाय लेकर दिल्ली आ गया। सेठ जी ने गाय को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। ऐसी स्वस्थ सुंदर गाय उन्होंने पहले न देखी थी। दूसरे दिन सेठ जी ने पास के एक ग्वाले को बुलाया और गाय उसके सुपुर्द कर दी। हीरा सिंह का दिल भरा जा रहा था। उसने सेठ जी से कहा,
1: सेठ जी, गाय की नौकरी पर मुझे ही लगा दीजिए, चाहे पगार कम ही दीजिए।
2: ये नहीं हो सकता हीरा सिंह। भाई, हमें तुम जैसा दूसरा ईमानदार और मेहनती चौकीदार कहाँ मिलेगा? तुम्हें तो यहीं ड्योढ़ी पर ही रहना होगा।
0: ग्वाले ने सुंदरिया को ले जाने के लिए पूरा जोर लगा दिया, लेकिन गाय टस से मस नहीं हुई। अपनी भोली आंखों से वो हीरा सिंह को ही देख रही थी, मानो कह रही थी, तुम्हें छोड़कर मैं कहाँ जाऊं। हीरा सिंह ने गाय को थपथपाया, पुचकारा और बोल उठा,
1: मेरी प्यारी सुंदरिया, अब चली जाओ ना, मैं यही तो हूं तुम्हारे पास। तुम चिंता ना करो, अरे मैं तुम्हें देखने आता रहूंगा, मेरी प्यारी सुंदरिया।
0: अनमने मन से सुंदरिया चल दी। लेकिन अगले ही दिन कुछ विचित्र हुआ। सेठ जी ने हीरा सिंह को बुलाया।
2: हीरा सिंह, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? आज गाय का 5 शेर दूध भी नहीं उतरा। तुम तो कहते थे कि 15 शेर से भी ज्यादा दूध मिलेगा।
1: सेठ जी, कल ही तो मैंने पूरा 15 शेर दूध दुहकर आपको दिया था, भला मैं झूठ क्यों बोलने लगा?
2: ये बात तो है, लगता है कुछ गड़बड़ है। चलो कल फिर

0: देखते हैं।
1: जी सेठ जी।
2: लेकिन दूसरे दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। सेठ जी को गुस्सा आ गया, बोले,
3: हीरा सिंह, तुमने सचमुच मुझे धोखा दिया है। गाय को ले जाओ और मेरे पैसे वापस करो।
1: लेकिन मालिक, पैसे तो मैं गांव भेज चुका हूँ और उसमें से काफी मकान की मरम्मत में खर्च हो गए। अब पैसे कहाँ से लौटाऊं?
3: तो ठीक है, पैसा मैं तुम्हारी पगार से काट लूंगा।
2: अब रोज रोज यही शिकायत आने लगी। कभी गाय दूध बहुत कम देती, कभी चारे को मुंह तक नहीं लगाती। हाँ, एक बात जरूर थी, जब हीरा सिंह उसे देखने जाता तो बहुत प्रसन्न हो जाती और चारा भी खा लेती। अपनी बड़ी बड़ी आंखों से हीरा सिंह को निहारती रहती, मानो कह रही हो, मुझे वहाँ क्यों भेज दिया। एक रात की बात है, हीरा सिंह अपने कमरे में सो रहा था कि तभी

0: 순날이야? 뿜? 메리 प्यारी 순날이야.
1: वो अपराधी भाव से उसे देख रही थी, मानो कह रही हो, क्षमा करना, मेरा वहां मन नहीं लगा, इसलिए रस्सी तोड़ कर आई हूँ। मुझे तो तुम्हारे संग ही रहना है। उस मूक गाय की आंखों में वेदना थी। हीरा सिंह भाव विभोर हो उठा। वो सुंदरिया के गले से लिपट कर देर तक सिसकता रहा।
0: अब तू कहीं नहीं जाएगी, हम कहाँ चलेंगे? मैं अपराधी हूं कि मैंने तुम्हें बेच दिया, लेकिन सुंदरिया, वो तो तुम्हारे भले के लिए ही तो था। लेकिन अब हम साथ रहेंगे। हाँ, मैं तुम्हें कभी अपने से अलग नहीं करूंगा। मैं सुबह ही सेठ जी से बात करूंगा।
2: आओ हीरा सिंह, कुछ बात बनी? गाय कैसी?
0: सेठ जी, मैं गाय को आज ही गांव ले जाऊंगा।
2: लेकिन उसके लिए जो पैसे तुमने लिए हैं, उनका क्या होगा?
0: सेठ जी, मैं उसे चुकाने के लिए मुफ्त में आपकी चाकरी करने के लिए तैयार हूं। रुपए जब चुकता हो जाएं, तो मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं भी छुट्टी कर लूंगा। सुंदरिया का दुख मुझसे नहीं देखा जाता सेठ जी।
1: इतना कहकर उसने गाय की डोर थाम ली और कहा,
0: सेठ जी, गाय को गांव छोड़कर मैं आपकी सेवा में फिर आ जाऊंगा और रुपए वसूल होने तक मैं आपके यहाँ काम करूंगा। नमस्ते।
1: हीरा सिंह ने गाय को पुचकारा, थपथपाया और चलने लगा। सेठ जी का मन भी भर आया था। कहने लगे,
2: हीरा सिंह, इस प्यारी गैया के प्रति तुम्हारा प्रेम देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अरे, तुमसे यहाँ मुफ्त में काम करवाकर क्या मुझे पाप नहीं लगेगा? मान लो कि मेरे रुपए भी वसूल हो गए। जाओ हीरा सिंह, जाओ।
0: जी सेठ जी।
2: खुशी से जाओ हीरा सिंह, और हाँ, सुंदरिया का खूब ख्याल रखना, और जब कभी भी समय मिले आपसे मिलने जरूर आना।
0: धन्यवाद सेठ जी।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम सुंदरिया। आशा है कि आपको जरूर ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है मेरा प्यारा दोस्त।
4: नमस्कार श्रोताओं, प्रेरक कहानियों की श्रृंखला में आपका स्वागत है।
5: ये कहानी है पूर्वोत्तर भारत के एक राज्य मेघालय की। लेकिन कहानी सुनने से पहले आइए लेते हैं मेघालय राज्य की थोड़ी जानकारी। मेघालय

0: अलय शब्द दो शब्दों के मेल या संधि से बना है, मेघ और आलय।
1: मेघ यानी बादल और आलय यानी घर, तो मेघालय का अर्थ हुआ बादलों का घर। साथियों, प्राकृतिक सुंदरता में मेघालय का कोई सानी नहीं है।
0: जी हाँ साथियों, यहाँ जब तब अनायास ही उमड़ते बादल, ऊंचे ऊंचे पर्वत, कल कल करती नदियाँ और हरे भरे जंगल पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। गारो, खासी और जयंतिया यहाँ की मुख्य जनजातियाँ हैं।
1: मेघालय की राजधानी है शिलोंग। ये कहानी शिलोंग की है।
0: यूजीन लगभग 15 वर्ष का एक किशोर है। आज शिलोंग शहर के पुराने बाजार में यूजीन चला जा रहा था। उसकी आंखें लगातार दुकानों के साइन बोर्ड्स पर ही टिक रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो वो कोई खास दुकान खोज रहा हो।
2: यहीं कहीं तो थी वो दुकान। कहाँ है वो? अब ये तो रही वो फूल वालों की दुकान। उसके बाद हाँ, वो रही।
0: उसे वो दुकान मिल गई थी। साइन बोर्ड पर एक पिल्ले की सुंदर सी तस्वीर थी और उसके नीचे लिखा था, पपीज फॉर सेल।
1: यूजीन को कुत्तों से बहुत लगाव था। उसकी बहुत इच्छा थी कि वो भी एक प्यारा सा कुत्ता पाले जो उसका दोस्त बन सके और उसके साथ खेल सके।
0: बात वास्तव में ये थी कि स्कूल में सहपाठी यूजीन के साथ रहने और खेलने से थोड़ा कतराते थे।
1: कुछ सोचकर वो दुकान में दाखिल हुआ।
2: हाँ, यहाँ से अंदर चलता हूँ। अरे वाह, कितनी सुंदर दुकान है और प्यारे प्यारे पपीस भी हैं। आजा आजा।
0: उसने कई बार अपने घर में कहा था कि वो एक प्यारा सा पिल्ला पालना चाहता है, लेकिन उसकी सुनी नहीं गई थी। किसी पशु को पालना काफी जिम्मेदारी का काम होता है। एक पिल्ले को पालने के लिए यूजीन के माता पिता तैयार नहीं थे।
1: लेकिन अब यूजीन बड़ा हो गया है। अब वो खुद पिल्ले का ध्यान रख सकता है। इसीलिए आखिरकार वो मान ही गए। और आज
0: यूजीन पिल्ला खरीद सकता है अपनी पसंद का। यूजीन सीधा काउंटर पर दुकानदार के पास चला गया और बोला,
2: नमस्ते मैडम।
3: नमस्ते बेटा।
2: मेरा नाम यूजीन है। मैं एक पिल्ला खरीदना चाहता हूँ। क्या आप मुझे उसका दाम बताएंगी?
3: देखो बेटा यूजीन, हमारे पास तो ढेर सारे पपीज हैं, सभी नस्ल के।
2: ओह।
3: लेकिन बेटा ये बताओ, क्या तुम सच में खरीदना चाहते हो?
2: जी बिल्कुल, पर आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं?
3: बेटा बात ये है कि तुम्हारे साथ कोई बड़ा तो है नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम बस देखो और चले जाओ?
2: नहीं,
3: क्योंकि यहाँ बहुत से ऐसे बच्चे आते हैं, देखने की जिद करते हैं, सारे बिल्ले देखते हैं और अंत में लिए बिना ही चले जाते हैं। इससे हमारा समय बर्बाद होता है ना, तो।
2: नहीं, ऐसा नहीं है। मैं उन बच्चों की तरह नहीं हूँ। मैं सच में खरीदूंगा। आप उनके दाम बताइए तो सही।
3: यूजीन देखो बेटा, सबसे कम दाम के हमारे पास लगभग 2000 रुपए के पिल्ले हैं, फिर 3000 और ऐसे ही। मेरा मतलब नस्ल के हिसाब से और भी महंगे हैं।
2: अच्छा,
3: क्या तुम इतना पैसा दे पाओगे?
2: ओहो, अभी इस समय तो मेरे पास 1500 रुपए ही हैं। अब ये तो

0: आपको अभी तुरंत दे सकता हूँ, बाकी पैसे आपको कल दे सकता हूँ। मैं पापा से बात कर चुका हूँ, वो मुझे मेरी पसंद का पिल्ला लेने के लिए कह रहे थे, आप मुझसे कल तक ले लीजिए।
1: बेटा ऐसे तो बात नहीं बनेगी ना, समझो मेरी बात। वो क्या है कि अगर अभी तुम्हें पपी चाहिए तो तुम्हें पूरा पैसा भी अभी ही चुकाना होगा, समझे ना?
0: ठीक है मैडम, पर आप मुझे पपी दिखाइए तो सही, मैं आपको इसका मूल्य चुका दूंगा आज ही शाम तक। अब आया हूं तो पसंद करके ही जाऊंगा, अभी 1500 दूंगा और जब बाकी पैसे लाऊंगा तब मैं आपसे पिल्ला ले लूंगा।
1: ठीक है। शेल्बिलिन, शेल्बिलिन, अरे कहाँ हो भाई?
2: हाँ जी बताइए।
1: देखो सारे पपीज ले आओ, ग्राहक कब से खड़े हैं, ध्यान रखा करो।
2: हाँ हाँ अभी लाते हैं, बस एक मिनट।
3: थोड़ी ही देर में सामने एक छोटा सा दरवाजा खुला और 5-6 प्यारे प्यारे पिल्ले कू कू करते हुए सामने आए। वो ऐसे लग रहे थे मानो ऊन के गोले हों। सब के सब बहुत ही प्यारे लग रहे थे।
4: यूजीन ने देखा कि उनमें एक पिल्ला था जो उछल कूद नहीं मचा रहा था। उसके सामने के दोनों पांव तो काम कर रहे थे लेकिन पीछे के दोनों पांव घिसट रहे थे। वो धीरे धीरे घिसटता हुआ सबसे पीछे पीछे आ रहा था।
1: अरे शेल्बिलिन, तुमसे कितनी बार कहा है इसे मत लाया करो, तुम्हें ये छोटी सी बात समझ नहीं आती क्या? तुम फिर से इस पिल्ले को ले आए, हटाओ इसे।
2: ये तो बहुत शैतान है, पीछे पीछे आ ही जाता है, अभी ले जाता हूँ इसे, चलो शाबाश वापस चलो।
0: एक मिनट, अब इसे क्या हुआ, ये ऐसे क्यों चल रहा है? आजा आजा इधर आ।
1: ये जन्म से ऐसा ही पैदा हुआ है, सही होता तो इसकी बहुत कीमत होती, अब तो बोझ ही है हमारे लिए।
0: मैं इसे खरीदना चाहता हूँ, कितनी कीमत होगी इसकी?
1: हैं? अब अच्छा समझ गई बेटा, समझ गई, मुझसे मजाक कर रहे हो ना? अरे ये देखो, ये वाला कितना सुंदर है, महंगा तो है लेकिन दूर दूर से लोग आते हैं इस वाले पिल्ले को खरीदने के लिए।
0: नहीं ये नहीं चाहिए मुझे, वो वाला कितने का है?
1: अरे बेटा कैसी बातें करते हो, ये बेकार है। अरे बिन पैर का पिल्ला, बहुत से लोग आते हैं इस दुकान में, हम तो इसे छुपाई देते हैं।
0: क्या?
1: वैसे भी ये भला किस काम का, कौन खरीदेगा इसे?
0: मैडम मैं खरीदूंगा इसे, मैं ऐसे ही खरीदूंगा।
1: मगर क्यों? तुम्हें पता है ये तुम्हारे साथ खेल नहीं पाएगा, तुम आखिर इसे क्यों खरीदना चाहते हो?
0: मुझे यही चाहिए।
1: देखो बेटा मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम अभी जोश जोश में ऐसा कह रहे हो, शायद इसकी हालत पर तुम्हें दया आ रही होगी, है ना?
0: नहीं।
1: लेकिन सोचो कुछ ही दिनों में अगर ये बीमार हो गया तो तुम इसे सड़कों पर या कहीं और छोड़ दोगे। और देखो अगर ऐसा हुआ तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा।
0: जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा इसके साथ, मैं इसके साथ कुछ नहीं होने दूंगा, ये अपने इन्हीं कमजोर पैरों पर चलेगा, चलेगा ना मेरे साथ, बनेगा ना मेरा दोस्त। अल्ले
1: अच्छा ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो फिर इसे यूं ही ले जाओ।
0: यूं ही?
1: हाँ, अब इसकी भला क्या कीमत?
0: क्या मतलब? अगर इसकी टांगे खराब हैं, तो क्या इसकी कोई कीमत नहीं है?
1: अच्छा अच्छा समझी, स्वाभिमानी हो, मुफ्त में कुछ नहीं लोगे, अच्छी बात है। तो ऐसा करो इसके तुम बस 50 रुपए दे दो, खुश?
0: 50 रुपए क्यों? ये तो इसका अपमान हुआ ना, इस नस्ल के दूसरे पिल्लों की जितनी कीमत है

0: वो ही इसकी भी है। मैं आपको इसके पूरे पैसे दूंगा।
1: पर बेटा ये तो
0: बताइए ना, इसकी नस्ल की कितनी कीमत है?
1: बहुत महंगी है, अब 2000 रुपए। मेरा मतलब है कि
0: तो यही इसकी कीमत भी है। अब ये रहे 1500 रुपए,
1: अब
0: और अब ये मेरा हुआ, मेरा दोस्त है ना, है ना मेरा दोस्त, तू यूजीन का दोस्त, तुम्हें शाम तक ले जाऊंगा दोस्त।
1: देखो बेटा, मैं तुम्हारी भावनाओं और जानवरों के लिए तुम्हारे इस प्यार का बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन बेटा क्या मैं जान सकती हूँ कि आखिर तुमने इस पपी में ऐसा क्या देखा कि तुमने इसको ही चुना, वो भी इतनी कीमत देकर? आखिर क्यों बेटा?
0: आप पूछते हैं क्यों? ये देखिए मैडम, ये देखिए।
2: यूजीन नीचे झुका और उसने धीरे धीरे अपनी पैंट ऊपर उठाई। दुकानदार ने देखा यूजीन का बायां पांव घुटने से कटा हुआ था, नीचे का आधा पैर कृत्रिम था, वहां धातु का पांव लगा हुआ था जिसके सहारे वो थोड़ा मुश्किल से लेकिन बिना सहारे के चल सकता था।
1: अरे बेटा ये तुम्हारा?
0: जी मैडम, आधा पैर नहीं है मेरा। अब बताएं मेरी क्या कीमत है आप जैसे लोगों के बीच? मैं भी इस पपी की तरह कूद नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, तो हो गया ना मैं भी बेकार बोझ।
1: अरे अरे नहीं नहीं बेटा, कैसी बातें करते हो, वो तो मैं बस
0: मैं भी मौका मिलते ही सबसे खुलना मिलना चाहता हूँ, लेकिन शायद मेरी ये कटी टांग ने मुझे सबके बराबर नहीं होने दिया, और 5 साल की उम्र से जानता हूँ मेरे साथ कोई नहीं खेलता, ये सब मैं जानता हूँ, ये सब मुझे पता है
1: बेटा।
0: इसलिए मुझे लगता है कि ये पपी मुझे मेरी कटी टांग से नहीं पहचानेगा, मुझे मेरी दोस्ती और मेरे प्यार से पहचानेगा। मैं नहीं चाहता ये अभी से मेरी तरह आजादी को, प्यार को तरसे। आज से, अभी से ये मेरा हुआ। आजा मेरा दोस्त, आजा।
1: यूजीन बेटा, इस पपी को तुमसे बेहतर भला कौन समझेगा, और शायद ये किसी और के साथ उतना प्यार भी ना पा सके जो इसका अधिकार है। इसे तुम्हें सौंपकर मैं भी निश्चिंत रहूंगी। ये लो, ये अब तुम्हारा हुआ, लो।
0: आजा।
3: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम मेरा प्यारा दोस्त, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अजीत को
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार,
5: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
6: आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से प्रसारित हो रहा था।
7: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
8: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
7: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
8: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
7: बुकिंग है तो संपर्क करें
9: 0542227658,
10: 0542227658।
6: आए सुनते हैं सुगम संगीत, और आज के कलाकार हैं महुआ बनर्जी। इनके सुर में पहले सुनिए मीराबाई की ये रचना।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज की कलाकार थी महुआ बनर्जी। मीडियम वेव 241.54 मीटर पर हम आकाशवाणी वाराणसी से बोल रहे हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए नीरज मिश्रा का सितार पर बजाया राग पटदीप। आपके साथ तबले पर संगति की है श्याम कुमार मिश्र ने।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में भी आप सुन रहे थे नीरज मिश्रा का सितार पर बजाया राग पटदीप। आपके साथ तबले पर संगति की थी श्याम कुमार मिश्र ने। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से प्रसारित हो रहा था।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा, पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिड़ला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध का मुद्दा उठाया। श्री बिड़ला ने विपक्ष से सदन के संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा। इस कारण लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में भी यही स्थिति देखने को मिली। कार्यवाही शुरू होते ही सभापति सीपी राधाकृष्णन ने हाइड्रोजन से चलने वाली देश की पहली रेलगाड़ी के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और वैज्ञानिकों, इंजीनियरों तथा तकनीशियनों को बधाई दी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उपलब्धि, पर्यावरण अनुकूल परिवहन और मानवता के हित में वैकल्पिक ऊर्जा के उपयोग की दिशा में भारत की प्रगति को और मजबूत करेगी। इसके बाद सभापति ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना मुद्दा उठाने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का मुद्दा उठा

आया, लेकिन विपक्ष और सत्ता पक्ष के हंगामे के कारण सदन को स्थगित कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा कल प्रधानमंत्री आवास के गेट के बाहर बिना अनुमति धरने पर बैठने की कड़ी निंदा की है। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास की गरिमा को जानते हुए भी श्री गांधी ने

0: जानते हुए भी श्री गांधी ने गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया। भाजपा सांसद ने सुरक्षा प्रोटोकॉल के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा सर्वोपरि है। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से 16 मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। भारतीय नौसेना ने आज कर्नाटक के कारवार में आईएनएस कादम्बा नौसेना बेस पर माही श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस मालवन को बेड़े में शामिल कर लिया। आईएनएस मालवन 8 पनडुब्बी रोधी युद्धपोतों में से दूसरा युद्धपोत है। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और तकनीक का उपयोग किया गया है। इस समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर एयर चीफ मार्शल ने आत्मनिर्भरता की दिशा में नौसेना के प्रयासों की सराहना की।
1: आत्मनिर्भर भारत जो हमने एक सपना देखा है, हम उसके बहुत करीब आई जा रहे हैं। बहुत जल्दी इंडियन नेवी ने ये सपना अपना लिया था, हम लोगों ने देर करी है बल्कि, बिकॉज वेरियस सेक्टर्स टेक डिफरेंट टाइम्स टू ग्रो एंड आई थिंक इन एज फार एज नेवल शिप बिल्डिंग इज कंसर्न, इंडिया हैज ऑलवेज हैड एन एज एंड वी हैव कैरीड आवर लेगेसी फॉरवर्ड एंड इन मेकिंग शिप्स। सो वेरी गुड प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन आत्मनिर्भरता एज फार एज शिप बिल्डिंग इज कंसर्न।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज फिलीपींस के मनीला में आयोजित क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। एक संयुक्त वक्तव्य में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। साथ ही आसियान की एकता और केंद्रीय भूमिका के लिए अपने अटूट समर्थन की पुष्टि की। बैठक के दौरान उन्होंने हिंद प्रशांत पर आसियान के दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए क्षेत्रीय चुनौतियों और अवसरों पर ध्यान केंद्रित किया। समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों तथा आपात कार्रवाई जैसे विषयों पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर में कटरा और त्रिकुटा पहाड़ियों में खराब मौसम के कारण आज लगातार चौथे दिन भी श्री माता वैष्णो देवी यात्रा स्थगित रही। तीर्थयात्रियों को यात्रा फिर शुरू होने के संबंध में आधिकारिक माध्यमों से जानकारी लेने की सलाह दी गई है। चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के आयुष शेट्टी ने आज पुरुष सिंगल्स में इंडोनेशिया के अलवी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। लीजिए सुनिए कुछ खोए व्यक्ति के संबंध में सूचना। पुलिस अधीक्षक जनपद चंदौली से प्राप्त सूचना के अनुसार सौरभ कुमार उर्फ बंटी पुत्र मनोज कुमार निवासी चतुर्भुजपुर थाना सकलडीहा जनपद चंदौली कहीं लापता हो गए हैं। सौरभ कुमार उर्फ बंटी के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार है। उम्र 28 वर्ष, लंबाई 5 फीट 3 इंच, रंग सांवला, इकहरा बदन, चेहरा गोल है। इनके बाल काले हैं। ये जब लापता हुए थे टी शर्ट और जीन्स पहने हुए थे। सौरभ कुमार उर्फ बंटी के बारे में कोई भी जानकारी मिलने पर अपने निकट के थाने या पुलिस अधीक्षक जनपद चंदौली को सूचित करें। यहीं से एक और भी सूचना प्राप्त हुई है। रेखा कुमारी, पिता का नाम रामवंत खरवार, ये ग्राम जमुनीपुर थाना चंदौली जनपद चंदौली की रहने वाली हैं, कहीं लापता हो गई हैं। रेखा कुमारी की उम्र है 35 वर्ष, लंबाई 5 फीट 4 इंच, रंग गेहुआ, चेहरा लंबा है, इकहरा बदन। ये जब लापता हुई थी उस समय गुलाबी रंग की साड़ी पहने हुई थी। रेखा कुमारी के बारे में कोई भी जानकारी मिले तो अपने समीप के थाने या पुलिस अधीक्षक जनपद चंदौली को सूचित करें। एक और भी सूचना यहीं से प्राप्त हुई है। आंचल सिंह उर्फ रिमझिम, इनके पिता का नाम मुन्ना सिंह, ये ग्राम सिरोहूपुर तेंदुई थाना सकलडिया जनपद चंदौली की रहने वाली हैं, कहीं लापता हो गई हैं। आंचल सिंह उर्फ रिमझिम की उम्र है 18 वर्ष, लंबाई 5 फीट 3 इंच, रंग गोरा, चेहरा गोल है,

ये जब लापता हुई थी उसमें सूट और सलवार पहने हुए थीं। आंचल सिंह उर्फ रिमझिम के बारे में कोई भी जानकारी मिले तो अपने समीप के थाने या पुलिस अधीक्षक जनपद चंदौली को सूचित करें। आप सुन रहे थे खोए हुए व्यक्ति के संबंध में सूचना। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। कार्यक्रम विवरण में सुनिए शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। संसद में प्रश्नकाल के रिकॉर्डिंग का प्रसारण होगा रात्रि 10 बजे और संसद समीक्षा आप सुनेंगे रात 8 बजे। ये दोनों कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। गैर फिल्मी गीतों और गजलों का प्रोग्राम अंजुमन आप सुन सकते हैं रात 9:30 पर। शाम 6:30 पर कृषि कार्यक्रम में कृषि कार्य में उपयोगी आधुनिक कृषि यंत्र विषय पर इंजीनियर विनोद कुमार सिंह से बातचीत होगी। इसी कार्यक्रम में महेंद्र सिंह यादव और साथी का लोकगीत भी आप सुनेंगे। इनका गाया लोकगीत आप दिन में 1:45 पर भी सुन सकते हैं। युवाणी कार्यक्रम में शाम 5:15 पर युवा साथी सुनेंगे आज की बात मार्गदर्शन में युवाओं में तनाव प्रबंधन विषय पर प्रोफेसर संदीप कुमार से बातचीत। साथ में यूथ डायरी इतिहास में आज का दिन रोजगार सूचना और फिल्म संगीत आप सुनेंगे। गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में दिन 1:15 पर महिलाएं सुनेंगी चर्चा गीत संगीत के अलावा उपभोक्ता अधिकार जागरूक बने सुरक्षित रहें विषय पर एडवोकेट अर्चना जायसवाल से सुरेखा सिंह की बातचीत। शाम 7:00 अंग्रेजी कार्यक्रम में आप सुनेंगे वार्ता द तिरंगा ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर एवरी इंडियन। वार्ताकार होंगी डॉक्टर दिव्या सिंह। फिल्म संगीत आप सुनेंगे शाम 5:00। दिन में 2:30 पर कॉम्पियर प्रोग्राम होगा कुछ बातें कुछ गीत। शाम 7:31 पर रसरंग में और रात 8:15 पर रस माधुरी कार्यक्रम में। कार्यक्रम विवरण में भी आप सुन रहे थे शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। मीडियम वेव 241.54 यानी 1242 किलोहर्ट्स। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR DTH DRM 1233 किलोहर्ट्स। वेव्स OTT पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। दिन के 1:10 पर आप सुनेंगे इलाकाई खबरें जिसे लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की सदारत में कल रियासती काबीना की मीटिंग में 18 तजावीज़ को मंजूरी दी गई। काबीना की मीटिंग के बाद फैसलों का इंकशाफ करते हुए वज़ीर ख़जाना और पार्लिमानी अमूर के वज़ीर सुरेश खन्ना ने कहा कि काबीना ने विंध्या एक्सप्रेसवे को मंजूरी दे दी है। ये 333 किलोमीटर लंबा होगा, जो प्रयागराज से शुरू होकर भदोई से मिर्ज़ापुर के रास्ते सोनभद्र जाएगा। इस पर 26,315 करोड़ रुपये लागत आएगी। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी स्कीम के तहत ग्रेजुएट तालिबात को मुफ्त स्कूटर फराहम किए जाने के बारे में रियासत के आला तालीम के वजीर योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि इस स्कीम से इन लोगों को फायदा पहुंचेगा जिनकी खानदानी आमदनी की हद सालाना 12 लाख रुपए से कम है। आला तालीम के वजीर ने कहा कि इस स्कीम से मुस्तफीद होने वाली तालिबात के लिए ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना लाजमी होगा। ये कदम आला तालीम में लड़कियों की शराकत दारी बढ़ाने और ड्रॉप आउट की शरह को कम करने के लिए उठाया गया है। हमारे नामा निगार की एक रिपोर्ट।
1: योजना के तहत सरकार न केवल स्कूटर बल्कि उसका बीमा, पंजीकरण, हेलमेट, आवश्यक सहायक उपकरण और 4 लीटर पेट्रोल भी मुहैया कराएगी। दिव्यांग छात्राओं, शहीदों की बेटियों और गरीब परिवारों की बेटियों के लिए आय सीमा की शर्त में छूट भी दी जाएगी। राज्य सरकार का कहना है कि ये योजना उच्च शिक्षा में बेटियों की भागीदारी बढ़ाएगी और खासतौर पर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों की छात्राओं के लिए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों तक पहुँचना आसान बनाएगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: इसके अलावा रियासती काबीना ने उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन के बस बेड़े के लिए 250 नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीदारी जैसी तजावीज को मंजूरी दे दी। आगे

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता

0: माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए
2: 0542227658।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें
3: 0542227658।

0: सखियों के साथ
1: सखियों की बात
2: सखियों के जज्बात
3: गृहलक्ष्मी।
4: कार्यक्रम सुनने वाली सभी श्रोता सखियों को सुरेखा का प्यार भरा नमस्कार और अंजना तुम्हें भी हमारा नमस्कार।
5: नमस्कार सुरेखा जी और प्यारी सखियों को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। सुरेखा जी विश्वास की डोर और समझ का धागा हर रिश्ते को मजबूत बनाता है ना। जहाँ हो आदर और विचारों की गहराई वहीं सच्चा प्रेम मुकम्मल हो जाता है।
4: क्या बात है, आज तो बड़ा तुम्हारा मूड शायराना सा हो रहा है, कुछ खास?
5: हाँ खास है, क्योंकि आज हम लोग रिश्तों में प्रेम जो होता है बुनियाद होती है जो प्रेम और आपसी समझ, इस पे हम लोग बात करने वाले हैं सखियों से।
4: तो रिश्ते तो ऐसे ही होते हैं ना, बहुत ही खूबसूरत होते हैं। और अगर रिश्तों की बात की जाती है ना, तो रिश्ता चाहे घर का हो या बाहर का हो, आपके कार्यस्थल का हो या फिर कहीं और का हो, लेकिन रिश्ते बहुत खूबसूरत होने चाहिए।
5: बिल्कुल, हर रिश्ते की अपनी एक मर्यादा भी होती है सुरेखा जी, और अपनी मर्यादाओं को समझते हुए आप अपने रिश्तों में कितने ईमानदार हैं ये मायने भी रखता है, और ये आप पर ही निर्भर करता है कि आप कितनी पारदर्शिता किस रिश्ते में बनाए रखती हैं या फिर बनाए रखना चाहती हैं।
4: ये बहुत ही आवश्यक है सखियों कि हम अपने रिश्तों में बहुत पारदर्शी बने, क्योंकि अगर हम घर की बात करें ना, तो अब घर में बहुत सारे रिश्ते होते हैं, भाई बहन का भी है, पति पत्नी का भी है, सास ससुर का भी है। सास बहू का रिश्ता जो है ना, वो खास तौर से आप देखिए, कई बार बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती हैं जिसकी वजह से आदमी में थोड़ा सा मनमुटाव हो जाता है। तो जब तक आप पारदर्शी नहीं रहेंगे, हो सकता है कि कभी आपको अपने बड़ों की बात अच्छी ना लगे, घर में अगर आपके इन लॉज हैं तो उनकी बात अच्छी ना लगे, तो भी उसे इग्नोर करना चाहिए।
5: जी बिल्कुल, कभी कभी ना समझी भी हो जाती है रिश्तों में ना, ऐसा ज्यादातर तब होता है जब लोग एक दूसरे से स्पष्ट रूप से बात नहीं करते हैं और अपने मन में एक दूसरे के प्रति मलाल रखते हैं ना। तो ऐसा करना तो गलत है, कोई आपके प्रति गलत विचार बना के रखे, इससे पहले कि बात करके मामला शॉर्ट आउट कर लेना चाहिए ताकि बात ना बढ़े और रिश्तों में दरार ना आए, है ना।
4: और इसके साथ ही साथ ये बहुत ही आवश्यक है कि एक दूसरे से बातचीत करते रहे। और कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि हम भी कुछ ऊंचा बोल देते हैं और तुरंत रिएक्शन ये भी नहीं होना चाहिए। अगर कोई बोल रहा है तो आपको जाहिर सी बात है कि हर बात तो पसंद नहीं आनी है, और कई बार ऐसा भी होता होगा ना कि मन करता होगा कि किसी ने कहा भाई तुरंत एक कप चाय बना लो, तो लगेगा कि अभी इच्छा नहीं हो रही है। लेकिन तुरंत काउंटर करने के बजाय अगर आप 10 मिनट का समय या 5 मिनट का समय ले लें, तो मुझे लगता है कि बात नहीं बढ़ती है किसी भी रिश्ते में।
5: जी बिल्कुल, हम एक ही छत के नीचे रहते हुए भी हर इंसान को अपने विचारों और इच्छाओं के लिए थोड़े व्यक्तिगत स्पेस की जरूरत होती है ना। एक दूसरे के विचारों और निर्णयों का सम्मान भी करना चाहिए, क्योंकि ये उतना ही जरूरी है जितना कि वो रिश्ता आपके लिए जरूरी है।
4: और कई बार ऐसा भी है कि रिश्ता तो बहुत ही मजबूत होना चाहिए, और रिश्तों को मजबूती देने के लिए कुछ छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। जैसे अगर किसी से कोई गलती हो जाए तो उसे माफ़ कर देना चाहिए, उसे मन में गांठ बना के नहीं रखना चाहिए कि अच्छा इनसे गलती हुई है तो इसका भी बदला मुझे लेना है और मुझे कुछ ना कुछ उसके बदले में करना है।
5: बिल्कुल,
4: तो आपका माफ कर दीजिए।
5: हाँ, बिल्कुल
4: आपका इसी में है।
5: बिल्कुल, आपका कहने का मतलब है कि रिश्तों में

0: समझदारी होनी चाहिए ना,
1: समझदारी होनी चाहिए
0: जी, बिल्कुल। समझदारी वो ढाल होती है रिश्तों को बेवजह के मतभेदों और उलझनों से बचाती है ना। तो सर क्यों, हर व्यक्ति की सोच, उम्र और काम करने का तरीका अलग अलग होता है ना। जो जैसा है उसको बिना बदले हम वैसे ही स्वीकार लेते हैं, तो हमारी समझदारी वहीं दिखती है। अगर समझदारी रिश्तों को संभालती है तो प्रेम उस रिश्तों में जान फूंकता है ना।
1: और फिर रिश्ता चाहे जो भी हो, है ना, वो कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर ध्यान दिया जाए, जैसे बातचीत की जाए, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दिया जाए, इज्जत दी जाए और भरोसा किया जाए, तो चाहे कोई भी रिश्ता हो, आपके काम का भी रिश्ता होगा, ऑफिस में भी होगा, पति पत्नी का भी रिश्ता होगा, भाई बहन का भी, तो कुछ चीज़ें हैं जैसे बातचीत से, इज्जत से और भरोसे से, इन जिसे कहते हैं ना, ये तीनों कॉम्बो है
0: जी,
1: तो इसे अगर आप मिला दीजिए तो यकीन मानिए बहनों कि आपका रिश्ता बहुत ही मजबूत रहेगा, है ना। और इसी के साथ रिश्ते की बात तो है ही, तो रिश्ता तो मजबूत रहेगा ही, और अगर कुछ गीत संगीत का आनंद लिया जाए तो भी अच्छा लगता है।
0: बिल्कुल, तो सखियों को एक गीत सुनवा देते हैं।

0: अंजना भाई, तुम शॉपिंग बहुत करती हो।
1: हाँ भाई, शॉपिंग तो करना हर महिलाओं को पसंद है और हमारी सखियों को भी पसंद होगा, है ना।
0: हाँ,
1: और
0: लेकिन कई बार
1: हाँ
0: ऐसा भी होता है सखियों कि जब हम कोई ऐसी चीज की खरीदारी कर लेते हैं जो जिसका बजट ज्यादा हो, महंगी चीज हो, और कई बार ऐसा भी होता है कि उसकी गारंटी वारंटी पे हम ध्यान नहीं देते, या ऐसा लगता है कि बस खरीद लिया और बाद में लगता है कि ये तो हम फंस गए खरीद के। यानी जो आपका वेंडर है, जो बेचने वाला है, अगर उसमें वो किसी तरह से परेशान कर रहा है कि नहीं आपने कब खरीदा कब नहीं खरीदा, ये बिल दीजिए वाउचर दीजिए, तो उस समय ये लगता है कि ये तो मुझसे गलती हो गई, चूक हो गई। यानी जो वो उपभोक्ता है ना, उपभोक्ता जब भी जो सामान खरीदता है, खरीदते समय उसे बहुत सारी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, और बहनों रखना भी चाहिए, क्योंकि हम पैसे से सामान खरीदते हैं ना।
1: जी
0: तो अगर हम कहीं फंस जाएं तो हमें क्या करना चाहिए? तो आपको क्या करना है और अंजना तुम्हें क्या करना है, इसी विषय पे आज मैं एक बातचीत सुनवाने जा रही हूं अपनी सखियों को।
1: बातचीत का विषय है उपभोक्ता अधिकार, जागरूक रहें, सुरक्षित बने। अधिवक्ता अर्चना जायसवाल से बात कर रही हैं सुरेखा सिंह।
2: श्रोताओं नमस्कार। आज की भागती दौड़ती जिंदगी में हर रोज हमें किसी न किसी चीज की आवश्यकता होती है, और शायद ही कोई ऐसा दिन होता है जब हम कुछ ना खरीदते हों। जब खरीदने की बात होती है ना, जब हर कुछ अच्छा होता है तो तब तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन साल भर में अगर 2 बार या 3 बार भी परेशानी का सामना करना पड़े तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि सामान खरीदते समय हम इस बात का ध्यान ही नहीं रखते कि उसकी गारंटी वारंटी क्या है, और भी उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, बस बाजार गए और जल्दीबाजी में सामान खरीद लाया। लेकिन अगर हम परेशान हो तो उसे कैसे निजात पाया जा सकता है? हमारे भारत के कानून में बहुत सी ऐसी सुविधाएं दी गई हैं उपभोक्ताओं को, जिसकी जानकारी हर उपभोक्ता को होनी ही चाहिए। तो आज उपभोक्ता अधिकारों की हम बात करेंगे कि उपभोक्ता को कितना जागरूक रहना चाहिए, यानी कि उपभोक्ता जागरूक रहें और सुरक्षित भी रहें। इन्हीं सब विषयों पर जानकारी लेने के लिए हमने आज अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है एडवोकेट अर्चना जायसवाल जी को, जो कि सिविल कोर्ट वाराणसी में अधिवक्ता हैं। अर्चना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: अर्चना जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि उपभोक्ता के अधिकार क्या क्या होते हैं। सामान तो हम सब खरीद लेते हैं, लेकिन हमें अपने अधिकारों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो उपभोक्ता के अधिकार आखिर क्या क्या होते हैं?
3: उपभोक्ता के कई अधिकार होते हैं, जैसे सुरक्षा का अधिकार है, उन्हें जानकारी पाने का अधिकार है, चयन करने का अधिकार है। किसी भी चीज को हम जो है लेते समय जानकारी भी ले सकते हैं, उसका किस तरह से चयन करें ये भी उन्हें अधिकार है, और सुने जाने का भी अधिकार है कि हम शिकायतों को जब हमें कहीं देना हो तो हम उसे कैसे हमारी सुनवाई होगी। ये भी अगर हमारे उपभोक्ता के साथ कोई बीमारी होती है तो उसको सुनने के लिए, वो सुनाने के लिए वो हमारे यहाँ एक उपभोक्ता आयोग बनाया गया है जिसमें वो जा सकते हैं। ये भी अधिकार उपभोक्ता को दिया गया है। क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार कि अगर हमारा कोई भी सामान, कोई भी चीज अगर डैमेज हुआ तो उसे क्षतिपूर्ति हम कैसे पा सकते हैं, ये भी अधिकार उपभोक्ता को दिया गया है। शिक्षा पाने का भी अधिकार उपभोक्ता को दिया गया है कि वो अपने अधिकार और कर्तव्यों के बारे में वो कैसे जानकारी ले सकते हैं, ये भी उनको अधिकार दिया गया है।
2: अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि हम बाजार में जाते हैं, सामान खरीदते हैं, तो उस पे जो मूल्य छपा है उस पर विशेष ध्यान नहीं दे पाते हैं, और जल्दीबाजी में कुछ भी सामान खरीद के ले आते हैं, दुकानदार ने जितना मांगा उतना देकर चले आए। तो क्या कभी भी कोई भी दुकानदार जो है वो एमआरपी से ज्यादा शुल्क ले सकता है?
3: नहीं, एमआरपी से ज्यादा शुल्क नहीं ले सकता है, किंतु यदि उसने ले लिया है तो हम उसके लिए शिकायत कर सकते हैं और इसके लिए हम उपभोक्ता आयोग में जा सकते हैं।
2: अच्छा, अगर किसी ने ऐसा किया है तो ये एक अपराध की श्रेणी में माना
3: जी
2: जाएगा।
3: जी जी
2: और कई बार ऐसा भी होता है कि बिना बिल लिए चले आए तो सामान तो हमने बहुत सारे खरीद रखे हैं लेकिन बिल नहीं है, या बिल मिसिंग है, गायब हो गया है, तो उस दिशा में क्या होगा? क्या कभी अगर सामान बदलने की बारी आई तो क्या सामान बदल जाएगा, या फिर कैसे उसका कोई समाधान हो पाएगा?
3: अमूमन अगर दुकानदार बिल नहीं देता है तो दुकानदार तो पहले तो सामान

0: बदलता नहीं है या उसके बारे में वो आनाकानी करता है, तो हम अगर हमने यूपीआई से किया है बिल, आजकल जैसा अमूमन चल रहा है कि यूपीआई से बिल हम पेमेंट करते हैं और एसएमएस किया है, कोई भी इस तरह से हमारे मोबाइल में इस तरह से अगर कोई भी ऐप के द्वारा अगर हमारी कोई भी है तो हम उसके द्वारा भी हम उसके ऊपर क्लेम कर सकते हैं और उस सामान को हम बदल सकते हैं।
1: हाँ, आजकल तो ज्यादातर लोग ऑनलाइन का
0: ऑनलाइन
1: लेते हैं, ऑनलाइन पेमेंट है या ऑनलाइन शॉपिंग भी कर लेते हैं
0: जी,
1: लेकिन फिर भी बिल मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा सबूत होता है।
0: जी जी,
1: वारंटी और अगर आपको कुछ भी उसकी सुविधा प्राप्त करनी है तो वो लेना ही पड़ेगा।
0: हाँ, वारंटी कार्ड अगर है तो भी हो सकता है। बिल कहते हैं ना एविडेंस होता है, वो सच होता है, उसके बगैर हम कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। हमारा मान लीजिए बहुत नुकसान हो गया है, फिर भी हम कैसे होकर, हमारे पास वही एविडेंस है, बिल के द्वारा ही हम कोई भी उनके खिलाफ अगर किसी कोई कार्रवाई करना चाहते हैं तो वो एविडेंस के रूप में हम उसे यूज कर सकते हैं। इसलिए अमूमन उपभोक्ता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें कोई भी सामान लेते समय दुकानदार से बिल अवश्य लेना चाहिए।
1: अच्छा, एक चीज और ये बताएं कि सामान खरीदते समय हमें किन किन मानकों का ध्यान रखना चाहिए?
0: सामान खरीदते समय हमें मानकों का ध्यान इसलिए रखना चाहिए कि उससे हमें उसकी गुणवत्ता की जानकारी होती है, जैसे है ISI मार्क है, एक मार्क है, हाल मार्क है, फिजल मार्क है, ये सब सारे मार्क होते हैं, उसके द्वारा हम उसके सामान की जानकारी भी ले सकते हैं और उसके द्वारा हम जो है कि ये भी देख सकते हैं कि हमें जो प्रोडक्ट लिया हुआ है क्या वो जो है कि शुद्धता कितनी है वो।
1: तो यानी कि बहनों, सामान खरीदते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जो उस पर मार्क लगे हुए होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुद्धता की अगर जानकारी,
0: उसकी जानकारी मानकों के द्वारा ही हमें पता चलती है
1: जी। और अगर, वैसे तो मैं अपनी बहनों से यही कहना चाहूंगी कि अगर आप शॉपिंग कर रही हैं, सामान खरीद रही हैं, तो इस बात का पूरा ध्यान रखें कि आपको कभी वापस करने की जरूरत ना पड़े या किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, यानी कि पूरा देख कर सोच समझ कर शॉपिंग करें। लेकिन फिर भी अगर कोई समस्या यदि आ जाती है तो फिर क्या करना चाहिए, उसकी शिकायत हम कहाँ कर सकते हैं?
0: उसकी शिकायत करने के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पे हम शिकायत कर सकते हैं और इसका एक टोल फ्री नंबर भी है 1915 पे कॉल कर सकते हैं। इसका ई दाखिल भी एक पोर्टल भी है, उस पे भी हम जा सकते हैं। हर जिले में, हर क्षेत्र में अपना एक जिला उपभोक्ता विवाद का प्रतिषेधन में एक बना हुआ है,
1: डिस्ट्रिक्ट फोरम
0: जी, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिडेशनल कमीशन, जहाँ पे हम शिकायत कर सकते हैं
1: जी। तो यहाँ पर शिकायत करने से शिकायत का समाधान
0: जी
1: प्राप्त
0: हो
1: सकता है,
0: समाधान मिलेगा और रिलीफ भी मिलेगा उन्हें।
1: तो ये सब बातें तो कोर्ट कचहरी की हो गई, लेकिन जैसा कि हम सभी, ज्यादातर लोग ये जानते हैं कि अगर एक बार कोर्ट में चले जाएं तो समय बहुत लगता है, लेकिन अगर हम उपभोक्ता अधिकारों की बात करें, अगर हम कोर्ट जाते हैं अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, तो उसमें अमूमन समय कितना लग जाता है?
0: इसमें हमारा कोर्ट में कितना टाइम लग सकता है? अमूमन वैसे 3 से 5 महीने, 6 महीने, इससे ज्यादा नहीं लगता।
1: समस्या का समाधान
0: आपको वहां से हो जाएगा।
1: तो ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता है इस मामले में। पता चला कि सामान खरीदा है और अभी वारंटी का टाइम है और बहुत समय अगर कोर्ट में निकल गया तो थोड़ा इरिटेशन भी होता है इससे। अच्छा, अब मैं एक चीज आपसे और जानना चाहूंगी कि सामान हमने लिया है, कई बार ऐसा भी होता है कि जितने का हमने सामान नहीं खरीदा उससे ज्यादा तो कोर्ट में पैसे देने पड़ जाएंगे, तो लगभग फी का वो जो निर्धारण होता है वो कैसे होता है कोर्ट में और किस प्रकार होता है?
0: नहीं, अमूमन क्या है, फीस इसमें यहाँ ज्यादा नहीं है। 5 लाख तक सामान पर कोई भी फीस आपको नहीं देना है, लेकिन अगर 5 लाख से 20 लाख तक की अगर सामान की वैल्यू जो है उस पे आपका 200 रूपये ही फीस लगेगा।
1: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हमारी जो उपभोक्ता है वो काफी डर जाते हैं कि कौन कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाएगा।
0: अक्सर ऐसा होता है कि लोग कोर्ट कचहरी के नाम से डर जाते हैं, लेकिन हम कहना कहना चाहेंगे कि उपभोक्ता को, जो कंज्यूमर है हमारे, वो इन बातों से ना डरे। अगर उनके साथ कोई भी इस तरह की घटना घटती है, उनके साथ दुकानदार, व्यापारी।

0: कोई भी अगर बेईमानी करता है तो वो बेधड़क कंज्यूमर फोरम में जरूर अपनी शिकायत लेके आए और उनका वहां शिकायत का समाधान भी होगा और उनको रिलीफ भी मिलेगा वहां।
1: अच्छा, आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है, कुछ भी खरीदारी करनी है, शॉपिंग करनी है तो हम फटाफट अपना मोबाइल निकालते हैं और ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं। तो अगर हमने कहीं से खाद्य पदार्थ मंगाया है, खाने पीने के लिए कोई फूड ऑर्डर किया है, उसकी गुणवत्ता सही नहीं है या वो खराब सामान आ जाता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए उपभोक्ता को?
0: हमारा सामान खराब निकल जाता है तो हमें तुरंत दुकानदार को जो है इसके लिए कंप्लेन करना चाहिए और अमूमन दुकानदार इस तरह के फूड को तुरंत रिप्लेस कर देते हैं, मान लेते हैं। फिर भी यदि वो नहीं करते हैं तो फिर भी हम कंज्यूमर फोरम में ही जाने के लिए,
1: यानी जिस भी प्लेटफॉर्म से ऑर्डर किया है उस प्लेटफॉर्म पे जाके आप शिकायत अपनी दर्ज करा सकते हैं, वहां से आपको तुरंत जो है वो रिलीफ मिल सकता है। अर्चना जी, कई बार ऐसा होता है कि जब हम कुछ भी खरीदारी करने जाते हैं तो यदि हम किसी दुकान पर जा रहे हैं तब तो ठीक है, सामान अगर डुप्लीकेट आ गया या ठीक नहीं आया तब तो वापस किया जा सकता है, और अगर जान पहचान का दुकानदार है तो हो ही जाता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और सामान मंगाया कुछ और आता कुछ और है, जब उस बॉक्स को हम खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो लगता है कि जो हमने ऑर्डर किया था ये तो वो सामान है ही नहीं, यानी डुप्लीकेट सामान आ गया या फेक सामान आ गया। तो उस दिशा में उपभोक्ता को क्या करना चाहिए?
0: उपभोक्ता को हमेशा ऑनलाइन खरीदारी करते समय हमेशा विश्वसनीय ऐप के द्वारा ही करना चाहिए, और यदि अगर फेक सामान आ जाता है तो अगर हम विश्वसनीय वेबसाइट से अगर हमने शॉपिंग किया है तो वो वेबसाइट पे वो तुरंत वो रिप्लेस कर देते हैं। फिर भी यदि वो नहीं करते हैं तो उसके लिए भी हम कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं।
1: हाँ, मतलब यानी कि अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो काफी जो उसके टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको बहुत अच्छे से देख लेना चाहिए।
0: जी,
1: और मैंने
0: जी,
1: ये भी देखा है ना कि कई बार ऐसा होता है कि जब हम शॉपिंग करने चलते हैं, खासतौर से ऑनलाइन शॉपिंग में, तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे एड चलते रहते हैं कि केवल 2 घंटे के लिए ऑफर है या 3 घंटे के लिए ऑफर है, तो ऐसे एड तो मुझे लगता है कि काफी फेक ही होते हैं।
0: इसीलिए झूठी अफवाहों में आकर के शॉपिंग नहीं करना चाहिए। इस तरह से बहुत ज्यादा जो विज्ञापन आते हैं वो गलत आते हैं, उसमें जाकर के अगर हम शॉपिंग करते हैं तो तभी हम कभी कहीं ना कहीं हमारे साथ चीटिंग हो जाती है। इसीलिए हमेशा उपभोक्ता को जागरूक रहना चाहिए, पूरी जानकारी लेने उसे जो ब्रांडेड ऐप है, जो ऐसे पोर्टल है, उसी से सामान मंगाना चाहिए।
1: हाँ, यानी कि उसकी रिटर्न पॉलिसी क्या है, कैसी है, कितने दिन में है, और जो पैसा गया वो वापस आएगा कि नहीं सामान जाने के बाद। कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, तो उन सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को अच्छे से देख करके तभी ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहिए। और अब एक चीज मैं आपसे और ये जानना चाहूंगी कि सामान तो हम सभी खरीदते हैं और काफी हद तक हम महिलाओं की अगर बात करें तो जागरूक तो होती हैं, लेकिन फिर भी जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या ऐसे उपाय करें कि और भी जो भी हमारे उपभोक्ता हैं वो काफी जागरूक रहें सामान खरीदते समय?
0: हालांकि हमारी सरकार बहुत सारी ऐसे एड और विज्ञापन देती रहती है कि हमें जागरूक करने, फिर भी हमें कोशिश करना चाहिए कि हम खुद जागरूक रहेंगे तभी अपने को सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि अगर जागरूक किया हमें सारी जानकारी को सोच समझ कर हमें शॉपिंग करना चाहिए, और ये क्या नाम है, बिल को संभाल कर रखना चाहिए, गुणवत्ता की जांच करके ही हमें शॉपिंग करना चाहिए, और कोई भी अगर सामान की डेट, एक्सपायरी और बिल को हमें हमेशा ले लेना चाहिए, उसको सुरक्षित रखना चाहिए, और सामान कब बना हुआ है, कब मैन्युफैक्चर हुआ है और कब वो एक्सपायर हो रहा है, इन चीजों को देख करके ही हमें शॉपिंग करना चाहिए। अगर हम जागरूक रहेंगे तब हम अपनी आर्थिक नुकसानी से बच सकते हैं।
1: चलते चलते हम अपनी श्रोताओं के लिए, जो कि एक उपभोक्ता भी है, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी?
0: चलते चलते हम अपने उपभोक्ताओं से ये कहना चाहेंगे कि वो अपने सामान को लेते समय वो जागरूक रहें और अपने अधिकारों को समझें और ये ना सोचें आज के समय में कि हमने हमें टूटा फूटा सामान मिल गया है तो हम ऐसे ही ना रहने दें, अपने अधिकारों का वो प्रयोग करें। वो कहते हैं कि

0: उपभोक्ता जो है मार्केट का राजा होता है और उनको हमेशा अपनी जानकारी रखनी चाहिए। जब वो इन सब चीजों के प्रति सजग रहेंगे, जागरूक रहेंगे, तो वो अपने आर्थिक नुकसानी से बच सकते हैं और उन्हें किसी तरह से कहीं भी किसी भी फोरम या कहीं किसी में नहीं जाना होगा।
1: आप हमारे स्टूडियो में आई, आपने बहुत सी जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद
2: सखियों। अभी आप सुन रही थी बातचीत। बातचीत का विषय था उपभोक्ता अधिकार, जागरूक रहें, सुरक्षित बने। अधिवक्ता अर्चना जायसवाल से बात कर रही थी सुरेखा सिंह।
1: अंजना, देखो बात जब अपने अधिकारों की हो तो हमारी सरकार जो है ना, वो बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाती हैं, ख़ास तौर से हमारे देश में जो अल्पसंख्यक भाई बहन हमारे साथ रह रहे हैं उनके लिए, उनके उनको और आगे बढ़ाने के लिए, उनको प्रोन्नत करने के लिए कुछ योजनाएं चलाती हैं। तो उनमें से एक योजना है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, जो अल्पसंख्यकों के लिए दी जाती है। तो
2: इस कार्यक्रम का मुख्य मकसद ये है कि सरकारी योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यकों समुदाय तक बराबर पहुंच सके। इसमें ग्रामीण आवास योजना को विशेष स्थान दिया गया है ताकि गरीब परिवारों को पक्का मकान मिल सके और अल्पसंख्यक समुदाय के लिए 15% हिस्सा निर्धारित है। ये 15% लक्ष्य उन जिलों में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों के लिए है जिनके पास अपना पक्का मकान नहीं है या जो टूटे फूटे कच्चे घरों में रह रहे हैं, उन्हें पक्का घर मिल सके उपलब्ध कराना सरकार का ये मकसद है।
1: ये तो बात है कि सरकार बहुत सारी योजनाएं चलाती रहती है हमारे लिए, हमारे देश के नागरिकों के लिए, लेकिन इसके साथ साथ हमें भी तो कुछ करना चाहिए ना। जैसे अगर हम हमारे पास जो भी इनकम आ रही है उसे छोटा छोटा थोड़ी थोड़ी अगर बचत कर लें तो कितना अच्छा रहेगा।
2: बिल्कुल, बचत करना तो बहुत ज़रूरी है सखियों, क्योंकि हमेशा छोटी छोटी जो बचत होती है वो एकदम से हम हजारों लाखों रुपए नहीं बचा सकते, लेकिन बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये तो कहावत सुना होगा आपने, है ना।
1: बिल्कुल, तो सखियों आप जो भी आमदनी आपके पास होती है उसका थोड़ा हिस्सा ज़रूर बचा के रखें, क्योंकि ये हमारे आड़े समय में काम आती है। तो घड़ी की सुई हमेशा कर रही है, हमें चलना चाहिए। तो हम अपनी सखी सुरेखा
2: और अंजना को
1: दीजिए इजाज़त।
2: नमस्कार।
3: सखियों के साथ,
4: सखियों के बाद,
3: सखियों के जज्बात,
4: गृह लक्ष्मी।
5: अभी महिलाएं सुननी थी अपना कार्यक्रम गृह लक्ष्मी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से प्रसारित हो रहा था। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर। अब आइए सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम, और आज इस कार्यक्रम में कलाकार हैं महेंद्र सिंह यादव और उनके साथी। इनके सुनने पहले सुनिए ये कहरवा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में किसी भी नियम के तहत चर्चा के लिए तैयार। सरकार ने कहा, युवाओं के भविष्य की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। युद्धपोत आईएनएस मालवन भारतीय नौसेना में शामिल। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले दो दिनों के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। और चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अलवी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार मॉनसून सत्र के पहले दिन से ही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस चर्चा के लिए नियमों का निर्धारण किया जाना चाहिए। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा प्रश्न पत्र पर गहन चर्चा चाहती है। उन्होंने कहा कि बहस जितनी भी लंबी चले उतनी लंबी होनी चाहिए और यथाशीघ्र शुरू होनी चाहिए। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार ने विपक्षी दलों को इस मुद्दे पर खुली चर्चा के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन उन्होंने इस तरह की बाधाएं खड़ी की जिससे प्रतीत होता है कि वे संवाद में शामिल नहीं होना चाहते।
1: देखिए, जो ऑपोजिशन पार्टी बोलना चाहते हैं तो बोलना ही है चर्चा के दौरान, हम मना नहीं कर सकते। लेकिन चर्चा को रोकने के लिए आप अगर कंडीशन डालेंगे तो इसका मतलब आप चर्चा नहीं चाहते हैं। हमने जब खुले दिल से ऑफर किए सरकार की ओर से कि हम चर्चा चाहते हैं, तो उसको व्यवधान डालने के लिए कोई कंडीशन ऐसा डालेंगे ताकि चर्चा ही ना हो, ये तो ठीक बात नहीं है।
0: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास के पास विरोध प्रदर्शन करना विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को दर्शाता है।
2: संवैधानिक पद से

0: करके संविधान की गरिमा को तार तार किया। उनका ये आचरण बहुत ही खतरनाक मंशा से वो भारत में दूसरे देशों का नकल करके यहाँ उपद्रव कराना चाहते हैं।
1: भाजपा सांसद डॉक्टर सतीश पूनिया ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन करके कांग्रेस पार्टी पर अराजकता फैलाने का आरोप लगाया। इस बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि विद्यार्थियों का संघर्ष वास्तविक है और वे बदलाव की मांग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आज कहा कि केंद्र सरकार विद्यार्थियों के साथ है और देश के युवाओं के भविष्य की रक्षा करना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने युवा नेतृत्व वाले विकास के मंत्र को विकसित भारत को मजबूत करने की नींव बनाया है।
2: आप सब जानते हैं कि नीट जैसा एग्जाम जिसमें 20 से 22 लाख कैंडिडेट्स अपियर होते हैं उसकी तैयारी में 6 महीने लगते हैं, लेकिन मात्र 37 डेज में नीट का री एग्जामिनेशन किया गया और रिजल्ट भी मात्र 25 दिन में आप सभी के सामने ला खड़ा कर दिया गया। जो री एग्जामिनेशन हुई उसमें टेक्नोलॉजी को लेवरेज करा गया ताकि कहीं पर भी अगर किसी भी प्रकार का लूप होल हो उसको कर्ब किया जाए, उसको प्लग इन किया जाए।
1: सुश्री स्वराज ने बताया कि सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पेपर लीक के 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया और अब वे सभी जेल में हैं। उन्होंने कहा कि आरोपियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा कल प्रधानमंत्री आवास के गेट के बाहर बिना अनुमति धरने पर बैठने की कड़ी निंदा की है। नई दिल्ली में भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास की गरिमा को जानते हुए भी श्री गांधी ने गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया। भाजपा सांसद ने सुरक्षा प्रोटोकॉल के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा सर्वोपरि है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले और विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए और राज्यसभा दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग करने का आग्रह किया। इससे पहले जब लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू करने के लिए एकत्रित हुई तो अध्यक्ष ओम बिड़ला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध का मुद्दा उठाया। श्री बिड़ला ने विपक्ष से सदन के संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा। इस कारण लोकसभा को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का मामला उठाया। अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सरकार इस मामले पर चर्चा के लिए तैयार है और चर्चा के समय को लेकर सभी को एकमत होना चाहिए। हंगामा जारी रहने पर श्री बिरला ने सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। राज्यसभा में भी यही स्थिति देखने को मिली। दोपहर 12 बजे पहले सदन के बाद जब सदन दोबारा शुरू हुआ तो विपक्ष ने नीट मामले पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। उपसभापति हरिवंश ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रश्नकाल संसदीय कार्यवाही का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये सदस्यों का अधिकार है।
3: आजादी के 50 साल बाद सदन में यह संकल्प लिया था कि किसी भी हालत में क्वेश्चन आवर और जीरो आवर चलाएंगे। ये मेंबर्स के आवर है। आपके प्रश्नों को ये उत्तर तैयार करने में कितना श्रम जाता है और जनता का धन जाता है, आप इसकी कल्पना करिए। आपको प्रश्न पूछने का अवसर मिलता है, प्लीज अपनी सीट पर बैठिए और क्वेश्चन आवर चलने दीजिए।
1: बार बार अपील करने के बावजूद विपक्षी सदस्यों ने उपसभापति की सलाह पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण सदन को दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से 16 मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान

0: मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय नौसेना ने आज कर्नाटक के कारवार INS कदंबा नौसेना बेस पर माही श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS मालवन को बेड़े में शामिल कर लिया। INS मालवन 8 पनडुब्बी रोधी युद्धपोतों में से दूसरा युद्धपोत है। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और तकनीक का उपयोग किया गया है। इस समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर एयर चीफ मार्शल ने आत्मनिर्भरता की दिशा में नौसेना के प्रयासों की सराहना की।
1: आत्मनिर्भर भारत जो हमने एक सपना देखा है, हम उसके बहुत करीब आई जा रहे हैं। बहुत जल्दी इंडियन नेवी ने ये सपना अपना लिया था, हम लोगों ने देर करी है बल्कि, बिकॉज वेरियस सेक्टर्स टेक डिफरेंट टाइम्स टू ग्रो एंड आई थिंक इन एज फार एज नेवल शिप बिल्डिंग इज कंसर्न, इंडिया हैज ऑलवेज हैड एन एज एंड वी हैड कैरीड आवर लेगेसी फॉरवर्ड एंड इन मेकिंग शिप्स। सो वेरी गुड प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन आत्मनिर्भरता एज फार एज शिप बिल्डिंग इज कंसर्न।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि IASV त्रिवेणी पर सवार होकर पहली बार सभी सेनाओं की महिला सदस्य समुद्री अभियान समुद्र प्रदक्षिणा ने न केवल पृथ्वी का चक्कर लगाया बल्कि इस असाधारण उपलब्धि से करोड़ों भारतीयों को गौरवान्वित भी किया। उन्होंने IASV त्रिवेणी को आत्मनिर्भर भारत और भारत के नवाचार क्षमताओं और आत्मविश्वास का जीवंत उदाहरण बताया। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज फिलीपींस के मनीला में आयोजित क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। एक संयुक्त वक्तव्य में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई, साथ ही आसियान की एकता और केंद्रीय भूमिका के लिए अपने अटूट समर्थन की पुष्टि की।
2: In this era of volatility and disruption,
3: उथल पुथल के इस दौर में आपूर्ति श्रृंखला पर सबसे अधिक दबाव दिख रहा है। ऊर्जा, भोजन और स्वास्थ्य सुरक्षा को अब हल्के में नहीं लिया जा सकता। इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करना बहुत जरूरी है। वर्ष 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष के तौर पर मनाया जाएगा। साथ ही भारत और आसियान दोनों ही अपने भविष्य को लेकर उम्मीद से भरे हैं, इसलिए चुनौतियों का सामना करते हुए भी हमें मौकों पर पूरी तरह ध्यान देना चाहिए।
0: बैठक के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बैठक में भारतीय अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा है कि ईरान को हुर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण की अनुमति देना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और नौवहन की स्वतंत्रता के लिए एक बेहद खतरनाक कदम होगा। डॉक्टर जयशंकर ने आज फिलीपींस के मनीला में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठकों के दौरान फिलीपींस, रूस और सिंगापुर के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने गुजरात, महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में कल तक मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2-3 दिनों तक तेज बारिश होगी। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। 16 जिलों में पानी भरा हुआ है। राज्य में बाढ़ में 21 और लोगों की मौत हो गई है, जिससे मृतकों की कुल संख्या 31 हो गई है।
4: आधिकारिक रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य में 872 गांव अभी भी जलमग्न हैं और 5,64,000 से भी अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। 24,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि पानी में डूबी।

0: हुई है। कामरूप और कामरूप महानगर जिलों में भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, जहां 4000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। राज्य सरकार ने 71 राहत शिविर और 202 राहत वितरण केंद्र स्थापित किए हैं। इन शिविरों में 12000 से अधिक लोगों को आश्रय दिया गया है, जबकि 1,00,000 से अधिक प्रभावित लोगों को राहत सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। NDRF, SDRF, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज तथा स्थानीय प्रशासन की टीमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और राहत कार्य में लगातार जुटी हुई है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: जम्मू कश्मीर में कटरा और त्रिकुटा पहाड़ियों में खराब मौसम के कारण आज लगातार चौथे दिन भी श्री माता वैष्णो देवी यात्रा स्थगित रही। चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के आयुष शेट्टी ने आज पुरुष सिंगल्स में इंडोनेशिया के अलवी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन भी आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 1% की गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 753 अंक गिरकर 76,717 पर और निफ्टी 202 अंक की गिरावट के साथ 23,986 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में किसी भी नियम के तहत चर्चा के लिए तैयार। सरकार ने कहा, युवाओं के भविष्य की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। युद्धपोत INS मालवन भारतीय नौसेना में शामिल। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्रों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिनों के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 241.5 6 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी वाराणसी से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कॉम्पेयर्ड प्रोग्राम, कुछ बातें कुछ गीत।

दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय ध्वज आयताकार आकार का है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई 3:2 निर्धारित की गई है। इसमें ऊपर से नीचे क्रमशः केसरिया, सफेद और हरे रंग की 3 समान पट्टियां होती हैं। सफेद पट्टी के मध्य में गहरे नीले रंग का अशोक चक्र बनाया गया है, जिसमें 24 तीलियां होती हैं। केसरिया रंग साहस, त्याग और राष्ट्र के प्रति समर्पण का प्रतीक माना जाता है। सफेद रंग सत्य, शांति और पारदर्शी

स्थिरता का संदेश देता है, जबकि हरा रंग समृद्धि, विकास, कृषि और प्रकृति से जुड़ाव का प्रतिनिधित्व करता है। बीच में स्थित अशोक चक्र निरंतर गति, प्रगति और न्यायपूर्ण जीवन का प्रतीक है। यह चक्र सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ के धर्म चक्र से प्रेरित है।

भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की मूल अवधारणा का श्रेय स्वतंत्रता सेनानी और ध्वज विशेषज्ञ पिंगली वेंकैया को दिया जाता है। उन्होंने विभिन्न स्वरूपों पर लंबे समय तक अध्ययन किया और महात्मा गांधी सहित कई राष्ट्रीय नेताओं के सुझाव के आधार पर ध्वज का प्रारूप तैयार किया। समय के साथ इसमें कुछ बदलाव किए गए। स्वतंत्रता से पहले ध्वज में चरखा अंकित होता था, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज अपनाते समय उसकी जगह अशोक चक्र को शामिल किया गया, ताकि ये पूरे राष्ट्र की समान पहचान और निरंतर प्रगति का प्रतीक बन सके।

तिरंगा भारत की विविधता में एकता की भावना को मजबूत करता है। देश में अलग अलग भाषाएं, संस्कृतियां, धर्म और परंपराएं होने के बावजूद राष्ट्रीय ध्वज सभी भारतीयों को एक सूत्र में बांधता है। राष्ट्रीय पर्वों, सरकारी समारोहों, अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं, वैज्ञानिक उपलब्धियों, सैन्य पराक्रम और वैश्विक मंचों पर तिरंगा भारत की पहचान के रूप में सम्मान पूर्वक लहराता है। किसी भी भारतीय खिलाड़ी, सैनिक, वैज्ञानिक या नागरिक की उपलब्धि के साथ तिरंगे का सम्मान पूरे देश के गौरव का प्रतीक बन जाता है। हाल के वर्षों में राष्ट्रीय ध्वज के प्रति नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया। इस पहल के माध्यम से देश भर के करोड़ों लोगों ने अपने घरों, संस्थानों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराकर राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति का संदेश दिया। इस अभियान ने विशेष रूप से युवाओं और नई पीढ़ी के बीच राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास, महत्व और सम्मान के प्रति जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डिजिटल माध्यमों पर भी लोगों ने तिरंगे के साथ अपनी भागीदारी दर्ज कराई और राष्ट्रीय गौरव का उत्सव भी मनाया। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान बनाए रखने के लिए भारत में फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 लागू है। इसके तहत राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन, फहराने, उपयोग और संरक्षण से जुड़े नियम निर्धारित किए गए हैं। समय समय पर इनमें संशोधन भी किए गए हैं ताकि नागरिक सम्मान पूर्वक तिरंगे का उपयोग कर सकें। फ्लैग कोड के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज को सदैव सम्मानजनक स्थिति में रखा जाना चाहिए। ध्वज को जमीन पर नहीं गिराना चाहिए, उसे किसी प्रकार की सजावट या व्यावसायिक उपयोग के लिए अनुचित तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए और क्षतिग्रस्त या फटे हुए ध्वज का प्रदर्शन नहीं किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस केवल इतिहास को याद करने का अवसर नहीं है, बल्कि ये नई पीढ़ी को देश के स्वतंत्रता संग्राम, संविधान और राष्ट्रीय मूल्यों से जोड़ने का भी महत्वपूर्ण अवसर है। स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी संस्थानों और विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा इस अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम

गोष्ठियां, निबंध प्रतियोगिताएं और ध्वज रोहण जैसे आयोजन किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को यह भी बताया जाता है कि तिरंगा केवल एक ध्वज नहीं है, बल्कि देश की आजादी, लोकतंत्र, संविधान और राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक भी है। राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस यानी कि नेशनल फ्लैग अडॉप्शन डे हमें उस ऐतिहासिक क्षण की याद दिलाता है जब स्वतंत्र भारत ने अपनी राष्ट्रीय पहचान को औपचारिक रूप से स्वीकार किया था। पिछले लगभग 8 दशकों से तिरंगा देश की संप्रभुता, लोकतांत्रिक परंपराओं, राष्ट्रीय एकता और विकास यात्रा का साक्षी बना हुआ है। जब भी तिरंगा ऊंचाई पर लहराता है, वो प्रत्येक भारतीय को अपने कर्तव्यों, अधिकारों और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारियों का स्मरण कराता है। यही कारण है कि राष्ट्रीय ध्वज आज भी भारत के गौरव, सम्मान और आत्मविश्वास का सबसे बड़ा प्रतीक बना हुआ है। राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस यानी कि नेशनल फ्लैग अडॉप्शन डे की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।

राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस। अगर आपको आज का ये कार्यक्रम पसंद आया तो अपनी प्रतिक्रियाएं हमसे जरूर लिख भेजिएगा हमारी ईमेल आईडी पर pkldaarvaranasi@gmail.com। अब इजाजत दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिएगा।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कॉम्पेयर्ड प्रोग्राम कुछ बातें कुछ गीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से प्रसारित हो रहा था।

मीडियम वेव 241.5 शर्मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR DTH DRM 1233 किलोहर्ट्स, वेव्स OTT पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। दिन के 3 बजे हैं, संपन्न हो रही आज की हमारी पहली सभा। शाम 5 बजे दूसरी सभा आरंभ होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 243.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्स, डीटीएच डीआरएम 1233 किलो हर्ट्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। इस स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बज रहे हैं। आरंभ होती है आज की सांध्यकालीन सभा।

सभा के आरंभ में प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। सोनू निगम और श्रद्धा पंडित की आवाज में सुनिए संघर्ष फिल्म का ये गीत। इस गीत को लिखा समीर ने और धुन तैयार किया जतिन ललित ने।

सोनू निगम और श्रद्धा पंडित की युगल आवाजों में भी आप सुन रहे थे संघर्ष फिल्म का ये प्यारा सा गीत। और अब आइए सुनते हैं साया फिल्म का गीत। मिलीजुली आवाजें हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की। इस गीत को लिखा आनंद बख्शी ने और धुन तैयार किया अनु मलिक ने।

अलका याग्निक और उदित नारायण की युगल आवाजों में भी आप सुन रहे थे साया फिल्म का गीत। और अब सुनिए सिर्फ तुम इस फिल्म का गीत। मिली जुली आवाजें हैं अलका याग्निक और कुमार सानू की। इस गीत को लिखा समीर ने और धुन तैयार किया नदीम श्रवण ने।

0: ढलती शाम की अपनी एक कहानी होती है, थोड़ी सी खामोशी थोड़ी रवानी होती है। जब अपने हो साथ और बातों में अपनापन हो तो हर शाम सचमुच सुहानी होती है।
1: वाह, क्या खूबसूरत बात कही तुमने। सच कहूँ तो शाम अपने साथ ना सुकून भी लाती है और नई बातें सीखने का मौका भी। और तभी तो इस खुशनुमा सी शाम में हम अपने खुश मिजाज दोस्तों को पूरे दिलो जान से स्वागत करने के लिए आ जाते हैं हम सबके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में।
0: जिसे लेकर हाजिर हैं आज की ये दो अतरंगी साथी, यानी मैं हूँ दोस्त आपकी निशा और मेरे साथ हैं
1: आपकी छूम अंतर वाली साथी यानी तैयबा मारूफ। तो कीजिए कबूल हमें और साथ ही स्वीकारिए हमारा सादर सप्रेम नमस्कार।
0: तो क्या हाल है तैयबा? और वैसे तुम रैंचो की तरह गायब कहाँ हो गई थी?
1: गायब वो तो होना पड़ता है कभी कभी, क्योंकि दूसरों के साथ साथ खुद का ख्याल रखना भी तो जरूरी है ना।
0: ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही है।
1: वैसे ये मिस्टर इंडिया वाला सवाल तो तुम मुझसे कर रही हो, मुझे लगता मुझे तुमसे करना चाहिए, क्योंकि नाम तुम्हारा निशा है। गायब तो तुम वैसे भी हो जाओगी अंधेरे में।
0: अब नाम निशा हो या तयबा या कुछ हो, कुछ और भी हो, लेकिन गायब तो हम सबने एक दिन होना ही है। बस कोशिश ये रहे कि हमारे ना होने पर भी हमें याद किया जाए।
1: और ये जिक्र तभी हो सकता है जब हमारे कर्म उस काबिल हों, क्योंकि वो कहते हैं ना, वी मेक अ लिविंग बाय व्हाट वी गेट बट वी मेक अ लाइफ बाय व्हाट वी गिव।
0: तो बस इसी गिव एंड टेक का सिलसिला शुरू करते हैं और अपने प्रोग्राम में भी। और सबसे पहले परोसते हैं एक चाशनी में डूबा डूबा सा ये गीत।

0: दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हमारी संस्कृति, प्रकृति और जिम्मेदारियों तीनों से जुड़ा हुआ है। तो सोचिए भला, हमारा आज का एक ऐसा कौन सा विषय हो सकता है जो एक साथ तीन तीन सुपर पावर लिए हुए है।
1: तो मेरे दोस्तों, वो विषय है मेला शरीक भगवती कश्मीर, पर्यटन और सतत विकास।
0: कश्मीर यानी कि बर्फ से ढकी पहाड़, हरी भरी वादियां, झीलों की खूबसूरती और रंग बिरंगी संस्कृति।
1: और इन्हीं सांस्कृतिक परंपराओं में शामिल है मेला शरीक भगवती, जो श्रद्धा और लोक परंपरा का महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। इस मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक शामिल होते हैं।
0: बिल्कुल। और मेरे दोस्तों, ऐसे मेले ना महज एक धार्मिक आयोजन नहीं होते, बल्कि ये लोगों को अपनी संस्कृति से जोड़ते हैं। यहाँ के स्थानीय कलाकार जो होते हैं, वो अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, जिससे कश्मीरी हस्तशिल्प लोगों को दूसरों तक पहुँचाते हैं, उन तक इनकी पहुँच जाती है, और ऐसे में स्थानीय व्यापार को भी बढ़ावा मिलने लगता है। यानी एक मेले से संस्कृति और रोजगार दोनों को मजबूती मिलती है।
1: लेकिन तयबा, जब किसी जगह पर पर्यटकों की संख्या बढ़ती है तो उसके साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है।
0: बिल्कुल आती है, क्योंकि अगर हम प्रकृति का आनंद लेते हैं तो प्रकृति का सम्मान भी तो हमें ही करना चाहिए ना। अब इसके लिए हम कर क्या सकते हैं? दोस्तों, अगर ऐसा सवाल आपके जहन में भी आ रहा है ना, तो बताती चलती हूँ कि हम आखिर ऐसे कौन से कारनामे, ऐसी कौन सी भागीदारी कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है कि प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करें या कम ही

0: क्या कहूँ, मैं तो कहूँगी ना के बराबर करें, और जो भी कूड़ा करकट जैसी चीज़ें हैं उसको इधर उधर न फेंकें। पानी और प्राकृतिक जो संसाधन है उनका बहुत सोच समझ कर उपयोग करें, और स्थानीय रीति रिवाजों का पूरे दिल के साथ सम्मान करें।
1: और इसी सोच को कहते हैं सतत विकास, यानी ऐसा विकास जिससे आज भी लाभ मिले और आने वाली पीढ़ियां भी प्रकृति की इसी सुंदरता का आनंद उठा सके।
0: और पता है दोस्तों, जिम्मेदार पर्यटन का ना एक बड़ा फायदा भी होता है। जब हम स्थानीय दुकानों से सामान खरीदते हैं, स्थानीय भोजन का स्वाद लेते हैं या फिर स्थानीय गाइड की मदद लेते हैं, तो इससे वहाँ के लोगों की आय बढ़ती है और उनका जीवन बेहतर होता है, यानी उनकी फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल जो स्टेटस होती है वो बढ़िया हो जाती है।
1: आज सोशल मीडिया के दौर में हर कोई नई नई जगहों की तस्वीरें साझा करता है, शेयर करता है, लेकिन अगर हर तस्वीर के साथ हम स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दें तो उसका असर और भी सकारात्मक हो सकता है ना?
0: बिल्कुल, यानी पर्यटन जो है ना सिर्फ घूमने का नाम नहीं है दोस्तों, बल्कि उस जगह की संस्कृति, प्रकृति और लोगों के प्रति सम्मान का भी नाम है। अगर हम एक जिम्मेदार पर्यटक बने तो देश की खूबसूरती भी बनी रहेगी और विकास भी होता रहेगा।
1: तो फिर आइए मेला शरीक भगवती जैसे सांस्कृतिक आयोजनों से प्रेरणा लेते हुए हम सभी एक संकल्प लें कि जहाँ भी जाएंगे वहाँ की स्वच्छता बनाए रखेंगे, वहाँ पर सफाई बनाए रखेंगे, पर्यावरण का संरक्षण करेंगे और स्थानीय संस्कृति का सम्मान भी करेंगे।
0: क्योंकि मेरे दोस्तों, हमें ये कभी भूलना नहीं चाहिए कि ये धरती, ये जमीन, ये जो भूमि है, ये हमें विरासत में तो नहीं मिली है ना, इसे हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना है। अब इसको तो हम सुरक्षित रखेंगे ही, हमने ये वादा कर लिया, और हमारे दोस्त भी इसका वादा जरूर करेंगे, निशा है कि नहीं?
1: बिल्कुल।
0: और क्यों ना अभी गीत भी हम गुनगुनाते चले अपने दोस्तों के साथ।
1: हाँ हाँ बिल्कुल।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
4: सुनो ना।
5: हाँ?
4: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
5: तो रोका किसने है? हाँ?
4: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
5: मुझसे।
4: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
5: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
4: पर उससे मेरा क्या फायदा?
5: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
4: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
5: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो,
6: 0542227658।
4: ओ
3: 0542227658।
4: लो अभी फोन लगाता हूँ।
3: 0542227658।
7: दोस्तों आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव, चिंता, अनियमित दिनचर्या ये ना एक आम सी बात हो गई है, और ऐसे में हमें एक्सरसाइज, मेडिटेशन और जो योग है ये हमें मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने का हमारे लिए एक तरह से कह सकते हैं साधन बनते हैं।
8: साथ ही नियमित योगाभ्यास से शरीर लचीला बनता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और व्यक्ति स्वयं को अधिक ऊर्जावान महसूस करता है, एनर्जेटिक महसूस करता है।
7: बिल्कुल। तो दोस्तों इसी के साथ क्यों ना हम ये संकल्प लें कि इसे महज ना हमें एक टर्म की तरह सीमित न रखना चाहिए कि हम बस इसे एक तरह का टर्म मान लें कि हाँ बस ये चीज है और इसको सुन लिया और काम हो गया, बल्कि इसे हमें अपनी दैनिक जीवनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए।
8: हाँ बिल्कुल।

0: एक स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ समाज और स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर सकता है।
1: इसीलिए दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज जो युवा हमारे पढ़ाई, करियर और सोशल मीडिया के दबाव में इसके बीच में कई तरह के तनाव का सामना कर रहे हैं कि नहीं निशा? और
0: बिल्कुल।
1: ऐसे में उन्हें मानसिक संतुलन और एक तरह से कह सकते हैं एकाग्रता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
0: सही कहा था अबा, कई छात्र परीक्षा के समय तनाव महसूस करते हैं, मतलब डिप्रेशन में कई होते हैं। ऐसे में प्राणायाम, मेडिटेशन और ध्यान जैसी योग क्रियाएं मन को शांत करने में मदद करती हैं।
1: इसके अलावा लंबे समय तक मोबाइल और लैपटॉप के उपयोग से होने वाली शारीरिक समस्याओं में भी हमारी एक्सरसाइज, हमारे मेडिटेशन बहुत ज़्यादा लाभदायक साबित होते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। योग, मेडिटेशन, एक्सरसाइज हमें ये सिखाते हैं कि स्वस्थ शरीर और शांत मन सफलता की सबसे मजबूत नींव है।
1: और इसी सफलता को और मजबूती देने के लिए एक छोटा सा प्रयास हमारी युवाड़ी भी तो करती है कि नहीं? तभी तो हम अपने दोस्तों के लिए हर बुधवार को मार्गदर्शन सेगमेंट लेके आते हैं कि हमारे जो युवा दोस्त हैं वो इनसे कुछ सीखें और सीख सकें, और साथ ही हम भी कुछ सीख सकें। तो इसी कड़ी में आज का जो हमारा विषय है मार्गदर्शन का, वो है युवाओं में तनाव प्रबंधन। यानी कि आज हमने बहुत चुनकर और बहुत ही समसामयिक विषय लिया है, और इस पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर संदीप कुमार। तो आइए सुनते हैं इनकी ये बातचीत।
2: दोस्तों स्वागत है आपका कार्यक्रम युवाणी के इस विशेष अंक मार्गदर्शन में। दोस्तों हम युवाओं में आजकल एक चीज है जो बहुत कॉमन है और वो है तनाव। चाहे हम पढ़ाई कर रहे हों या नौकरी में हों, हर कोई इससे जूझ रहा है। और इसी विषय पर बातचीत के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर संदीप कुमार। आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान विभाग में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद आलिया जी, बहुत ही समीचीन विषय का चयन किया है। आजकल युवाओं में, इवन जो नौकरी पेशा लोग हैं, उन सभी लोगों में तनाव का काफी वृद्धि हो गई है। इसलिए जरूरी है कि हम इस संबंध में चर्चा करें और कुछ मार्गदर्शन कर सकें, ताकि लोग अपनी जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान अच्छी तरीके से कर सकें।
2: बिल्कुल सर, जैसा आपने कहा कि कुछ वृद्धि हुई है तनाव में, तो आप इनके पीछे जो कारण है उनके बारे में अगर कुछ बात करें, जो हमारे युवा हैं उनमें कैसे मतलब तनाव बढ़ा है।
3: काफी परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं आजकल, जो कि हम यदि पहले की तुलना में करें तो बहुत से ऐसे साधन थे जो पहले उपलब्ध नहीं थे और जो एक तरीके से तनाव का कारण नहीं थे, लेकिन आज के युग में आप देखेंगे जैसे प्रतिस्पर्धा है, वो एक कारण है। आपस में जो भी हमारी दिनचर्या है वो भी हम संयमित तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। इवन हमारा खान पान भी जो है उसमें भी बहुत सारी समस्याएं आ गई हैं, जिसकी वजह से तनाव के कारण, इवन हमारे जो सामाजिक संबंध हैं उसमें भी बहुत से परिवर्तन हुए हैं जिसके कारण ये तनाव में वृद्धि हुई है।
2: सर जैसा आपने बताया कि सामाजिक जो संबंध हैं और बाकी आपने जो फैक्टर्स बताए वो हमारे तनाव का कारण है, लेकिन जो युवाओं के लिए तनाव का एक मेजर कारण ऐसा माना जाता है कि पढ़ाई है, क्योंकि पढ़ाई आपका कोर्स बढ़ा है तो आपको तनाव भी उस हिसाब से बढ़ गया है। तो हम उसको किस तरह से नियंत्रित कर सकते हैं, किस तरह से हम उसमें स्टेबल हो सकते हैं?
3: पढ़ाई एक्चुअली क्या है ना, कि पढ़ाई को हम एक गोल से जोड़ लिए हैं। ठीक है, पढ़ाई करने से नौकरी मिलेगी, पढ़ाई करने से अच्छा जीवन मिलेगा, ये तो अच्छी बात है कि आपका जीवन अच्छा होगा पढ़ाई करने से, लेकिन हम कई बार उसको नौकरी से जोड़ लेते हैं। लेकिन ये सोचने की जरूरत है कि व्यक्ति यदि पढ़ता है तो पढ़ने से वो अपना जीवन कैसे बेहतर बना सकता है, अपना स्वास्थ्य का ख्याल कैसे रख सकता है, आपसी जो संबंध है वो कैसे बेहतर रख सकता है, इन सभी बातों के बारे में बहुत अच्छे से समझ जाता है। तो इसलिए आज के संबंध में आप देखिए कि इवन जो हमारे पेरेंट्स हैं उनका जो इंटरेक्शन है अपने बच्चों के साथ, जो बातचीत है वो कम हो गई है। और उसके पीछे कहीं ना कहीं आजकल देखेंगे सोशल मीडिया भी एक रीजन है। ठीक है, जो और विद्यार्थियों में बाहर जाके खेलने की जो प्रवृत्ति है वो थोड़ी कम हो गई है। इससे बहुत से और जितने भी ये कारण हैं कहीं ना कहीं जाके वो बहुत सी समस्याएं पैदा करते हैं, जिसमें स्वास्थ्य से संबंधित, इवन आपको विश्वास नहीं होगा 25 साल के लोग, 30 साल के लोग जो है वो हार्ट अटैक के पीड़ित हो जा रहे हैं, बीपी के पीड़ित हो जा रहे हैं, इवन डायबिटीज के पीड़ित हो जा रहे हैं। तो ये बहुत से प्रभाव है। इवन हम तो शारीरिक बात करें, इवन मानसिक समस्याएं भी बहुत सारी हैं। अवसाद की समस्या है, ठीक है, डिप्रेशन जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स हैं, ये बहुत से समस्याएं हैं जो मानसिक रूप से भी, इवन शारीरिक रूप से ही नहीं आदमी परेशान हो रहा है, मानसिक रूप से भी बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जा रही हैं। तो इसलिए भी हम एक बेहतर जीवन शैली, एक इसका मूल मंत्र कह सकते हैं कि बेहतर जीवन शैली यदि होगी तो तनाव कम से कम होगा।
2: सर, जो आजकल का माहौल है जिसमें कॉम्पिटिटिवनेस बहुत ज्यादा है और हमेशा

0: हर जगह फर्स्ट आने की एक जो रेस लगी है वो बहुत ज्यादा है, और इसमें साथ में पेरेंट्स का प्रेशर भी होता है उतना ही कि नहीं आपको मतलब अपना 100% देना है तो रिजल्ट भी 100% ही लाइए। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब पेरेंट्स किस तरह से तालमेल बैठे हैं?
1: पेरेंट्स को, टीचर्स को, इवन समाज के जो लोग हैं, सभी को ये समझने की जरूरत है कि हर व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है, हर व्यक्ति फर्स्ट नहीं आ सकता है। ठीक है, तो इवन पेरेंट्स को भी समझने की जरूरत है कि बच्चे की जो क्षमता है वो सीमित है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी क्षमता होती है और उस क्षमता के अनुसार ही वो अपनी उपलब्धि प्राप्त करता है। यदि हम क्षमता से अधिक उस पे दबाव डालने की कोशिश करेंगे, जाहिर है कि क्षमता से अधिक जब दबाव पड़ेगा तो तनाव उत्पन्न होगा, क्योंकि हम उस हिसाब से अपनी उपलब्धि नहीं पा सकेंगे, और वो उपलब्धि नहीं होगी तो अल्टीमेटली होगा क्या कि वो जितने भी आप कहते हैं अवसाद में व्यक्ति चला जाता है, बहुत सी मानसिक समस्याएं आ जाती हैं सब। और उसके अलावा आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है तो व्यक्ति अपनी दिनचर्या भी सही नहीं रख पाता है। सुबह उठ के पढ़ाई कर रहा है, दोपहर में पढ़ाई कर रहा है, रात में देर तक पढ़ाई कर रहा है, तो सिर्फ पढ़ने से क्या होगा, शारीरिक स्वास्थ्य नुकसान होगा ही, और शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम कहेंगे शारीरिक और मानसिक दोनों एक साथ जुड़ा हुआ है। शरीर स्वस्थ है, कहा नहीं आता है शरीर स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है, जब शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो मन कैसे स्वस्थ होगा। इसलिए बहुत सारी समस्याएं इसकी वजह से आ रही है।
0: सर, अच्छा, तनाव में रहने वाले युवाओं के क्या लक्षण है और किस तरह से हम उन्हें प्रोत्साहित कर सकते हैं कि वो तनाव से निकले?
1: बहुत से मतलब शारीरिक है तो सिर में दर्द रहना एक कॉमन है, नींद अच्छे से पूरी नहीं होना, ठीक है, दिन के समय निद्रा का अनुभव होना, ये बहुत से चीजें हैं। और अल्टीमेटली क्या होगा कि आप एक ध्यान नहीं, कोई भी काम करते हैं उसमें ध्यान नहीं लगता है, या आम बोलचाल की भाषा में लोग कहते हैं कि मन नहीं लग रहा है। ठीक है, इस तरीके से बहुत सी चीजें हैं वो होती हैं, क्योंकि बहुत से आप भी हाई स्कूल के भी बच्चे हैं, इंटर के भी बच्चे हैं, उनसे बातचीत करते हैं, बोलते हैं हम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। कंसंट्रेट नहीं क्या कि बहुत सारे विषय हैं पढ़ने होते हैं, एक समय में एक विषय को पढ़ेंगे तो वो ध्यान केंद्रित हो पाएगा, यदि इसके अलावा और भी समस्याएं हैं तो उसकी वजह से और ध्यान भटकता है, तो वो तनाव में और बढ़ोतरी कर देता है।
0: और अब जैसे तनाव हमें आपने लक्षण बता दिए, तो मैं जानना चाहती हूँ कि जो तनाव है इसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य पर कितना असर हो रहा है और किस तरह से हो रहा है?
1: इस विषय में तो बहुत सारे हम लोग बातें करते हैं, और जो थियरी है उसमें थियरी के हिसाब से तनाव में व्यक्ति रहेगा तो हमारे शरीर की जो धमनियां हैं वो सिकुड़ जाती हैं। ठीक है, खान पान बेहतर नहीं होता है तो उससे क्या होता है कि हमारे आर्टरीज में जाके कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, तो दो तरीके होते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक बीपी, आप समझते हैं बीपी की समस्या होती है, ब्लड प्रेशर लोगों को बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है, प्लस खान पान बेहतर नहीं होने से बहुत से एक लेवल पर ना इंसुलिन का रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, तो अल्टीमेटली बाद में जाके वो डायबिटीज के रूप में देखने को मिलता है, ये एक प्रभाव आप कह सकते हैं। इसके अलावा बहुत से इवन मानसिक चीजें हैं, आप कहते हैं कि लक्ष्य गोल हमारा प्राप्त नहीं हुआ, ठीक है, तो जाहिर है फ्रस्ट्रेट होगा आदमी, फ्रस्ट्रेट होगा तो डिप्रेशन की समस्या आएगी, अवसाद ग्रस्त हो जाएगा। इसके अलावा और भी जो क्लिष्ट बीमारियां हैं, वो मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स होते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स होते हैं, बहुत से ऐसे समस्याएं हैं वो पैदा हो जाती है। इसके अलावा जो हमारा जो समय है वो अच्छे से प्रबंधित नहीं कर पाते हैं, समय प्रबंधन अच्छी नहीं करने की वजह से कोई भी काम व्यक्ति समय से पूरा नहीं कर पाता है, तो चाहे वो विद्यार्थी हो चाहे वो पेशेवर व्यक्ति हो, वो कहीं न कहीं इसकी वजह से जूझ रहे होते हैं। और इसके कारण जाहिर है कि जो अपना संबंध है, परिवार के संबंध बेहतर नहीं हो पाते हैं, अपने मित्र हैं उनको समय नहीं दे पाते हैं, और एक होता ना कि शेड्यूल, एक अच्छी दिनचर्या में जाहिर है कि आपके पास ऐसा समय होना चाहिए कि आप अपने स्वास्थ्य के ऊपर, अपने परिवार के साथ समय व्यतीत कर पाए, जो आप काम कर रहे हैं चाहे पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में अच्छा व्यतीत करें समय, इसके अलावा जहां पे आप काम कर रहे हैं वहां बेहतर तरीके से काम, तो ये तनाव रहने की वजह से क्या हुआ कि संबंध भी खराब हो रहे हैं, चाहे वो संबंध आपके बच्चों से हो, चाहे वो पत्नी से हो, चाहे वो पति से हो, चाहे आप जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं उन सभी लोगों के साथ संबंध, तो शारीरिक मानसिक इसके अलावा जो संबंध है वो भी प्रभावित होते हैं। और उसके पीछे बहुत से और भी, जो आजकल मॉडर्न युग है, सोशल मीडिया है, तरह तरह की चीजें आती हैं और एक्सपेक्टेशंस बढ़ा लेता है आदमी। ठीक है, क्षमता से अधिक यदि अपेक्षा आप किसी व्यक्ति से कर लेंगे तो जाहिर है कि व्यक्ति तनाव में रहता है। एक सिद्धांत है ना कि जितनी हमारी क्षमता होगी उससे ज्यादा हम किसी व्यक्ति पर पर अपेक्षा रखेंगे तो व्यक्ति तनाव में आता है। वैसे ही यदि खुद हमारी जितनी क्षमता है उससे ज्यादा यदि हम खुद से भी अपेक्षा करेंगे तो हम खुद तनाव में आ जाते हैं, तो सेम कंडीशन सभी के लिए लागू होती है।
0: सर, जैसे अभी तो स्ट्रेस को लेकर के, डिप्रेशन को लेकर के काफी अवेयरनेस है, लेकिन फिर भी कई पेरेंट्स हैं या कई स्टूडेंट्स हैं जो इस बारे में खुलकर बात नहीं करते हैं, नहीं बताते हैं, तो उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे कि वो किस तरह से खुलें और दूसरों को बताएं अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में?
1: एक्चुअली क्या है कि हम

0: दूसरे से शेयर करते हैं, ठीक है, तो शेयर करने से वो जो दबाव है, तनाव है, कम हो जाता है, ठीक है। कि कहते हैं ना कि दुख बांटने से दुख कम होता है, सुख बांटने से सुख बढ़ता है। तो यदि ये चीजें हैं तो जाहिर है कि दुख बांटने की जो प्रवृत्ति है लोगों को बढ़ानी चाहिए, अदरवाइज क्या होगा कि वो अंदर ही अंदर रखे रहेगा, घुटेगा, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे युवा हो, चाहे इवन बड़े भी हैं, तो वो अंदर अंदर जो चीजें होती है वो अच्छी नहीं होती, अल्टीमेटली वो जो फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन, बहुत सी चीजें उसके कारण पैदा हो जाती है। तो इसलिए शेयरिंग की जो प्रवृत्ति है आजकल, चूंकि आप माता पिता बच्चों को उतना समय नहीं दे पा रहे हैं, तो बच्चे को कोई समस्या भी है तो वो शेयर नहीं कर रहा है। एक दूसरे हम लोगों ने टैबू बना लिया है कि मानसिक समस्या है तो वो समाज के लोग आपको स्वीकार नहीं करेंगे, आपके हीन समझेंगे। ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो ठीक नहीं है। तो एक अवेयरनेस इस बारे में भी होनी चाहिए कि जैसे शारीरिक बीमारियां हैं वैसे ही तनाव संबंधित या इस तरह के जो मानसिक बीमारियां हैं वो भी एक नॉर्मल बीमारी है, और जिसका यदि उचित प्रबंधन किया जाए, उचित तरीके से इलाज किया जाए, तो उसका बेहतर प्रबंधन संभव है।
1: सर, क्या इन सब में सोशल मीडिया और फोन का कोई मतलब योगदान है? क्योंकि आजकल का युवा जो है वो ज्यादातर सोशल मीडिया और फोन पर एक्टिव रहता है और वहीं पर लोगों से अपनी बातें भी शेयर करना चाहता है।
0: डिपेंड करता है कि हम उसका यूज कैसे कर रहे हैं, ठीक है। हम यदि सोशल मीडिया को प्रतिस्पर्धा के रूप में यूज कर रहे हैं, जैसे कितने लाइक्स आए, कितने लोगों ने शेयर किया, यदि लाइक्स और शेयर नहीं किया तो हम दुखी हो गए, ठीक है, ये है। प्लस दूसरों को देखकर हम वैसा बनने की कोशिश करते हैं भले ही हमारे अंदर वो क्षमता नहीं है। तो इस तरीके से जो कॉम्पिटिशन एक दूसरे से आ गया, दूसरे से एक जो स्पर्धा की, जो स्पर्धा ठीक है लेकिन यदि वो स्वास्थ्यपूर्ण है तो बेहतर है, लेकिन यदि वो हमारी क्षमता से अधिक है तो फिर समस्या हो जाती है। तो इसलिए भी जो सोशल मीडिया है वो अल्टीमेटली बेहतर तरीके से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छी बातों के बारे में, जैसे हम भी कई बार करते हैं, तो अपना स्वास्थ्य कैसे बेहतर रख सकते हैं उसके बारे में लोगों को बताते हैं, ठीक है। बहुत सी चीजें हैं, खान पान कैसे बेहतर, दिनचर्या हम कैसी रख सकते हैं। जैसे हम बात करें कि एक हम लोगों का एक समूह है बीएचयू में, तो उसमें कुछ शिक्षक हैं, तो सुबह हम लोग की दिनचर्या होती है कि सुबह उठते हैं, उठने के बाद घर पर ही थोड़ा व्यायाम करते हैं, उसके बाद फिर उठ के जाते हैं, टहल कर आते हैं, ठीक है, तो एक दो घंटे का एक कार्यक्रम हो रहा था, फिर वापस आके नहा धो के फिर अपना डिपार्टमेंट चले गए, फिर शाम को आके थोड़ा सा करके पढ़ाई लिखाई कर, ये नियमित दिनचर्या यदि है व्यक्ति तो उसमें उतने तनाव नहीं होते हैं। लेकिन हम यदि कहें कि सुबह उठना है तो ये तनाव की बात है, तो इसको अपने जीवन में ढालने की जरूरत है। जो जीवन शैली है यदि वो स्वस्थ जीवन शैली है तो तनाव की संभावनाएं कम हो जाती है। तो हमको एक सलाह सभी के लिए है कि हम अपनी जीवन शैली को बेहतर बनाएं, ठीक है, स्वस्थ खाएं, प्रतिस्पर्धा उतनी करें, हम जितना कर सकते हैं उतना करने का प्रयास करें, ठीक है, क्योंकि हम कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे ना कि उंगलियां सारे बराबर नहीं है
1: जी।
0: एक दूसरे से छोटी होती है, तो इसलिए छोटी या बड़ी होती है, लेकिन इसलिए ये समझना है कि हमारी क्षमता कितनी है, उसके हिसाब से यदि हम काम करेंगे तो उतना तनाव नहीं होगा, ठीक है। दूसरे को देखो, वो तो भाई 95% आ गया, मेरे तो 65 ही आए हैं, भाई उसकी क्षमता अलग है, वो किस, उसके जेनेटिक मेकअप अलग है, वो किस समाज में रहता है, उसके माता पिता का जेनेटिक मेकअप कैसा है, इस वजह से भी वो आपसे बेहतर हो सकता है या कोई आपसे कमजोर भी हो सकता है। तो ये चीजें स्वीकार करना है कि हमें इतना ही मिला है और इसी में हमको करना है। यदि हमको 65 आया तो नेक्स्ट टाइम हम ट्राई करेंगे हमको 68 आ जाए या 70 आए, हम 95 के लिए नहीं टारगेट करेंगे, हम अपने को बेहतर करने का प्रयास कर सकते हैं। दूसरे से कंपेयर करेंगे तो तनाव होगा, हम अपने को जब अपने को बेहतर करेंगे, जैसे 65 से आपका मान लीजिए 66 आ गया, 67 आ गया, तो क्या हुआ, एक आपका मनोबल बढ़ता है, आप मोटिवेट होते हैं और अच्छा करने के लिए, लेकिन जब दूसरे से कंपेयर करते हैं तो फिर वो तनाव की स्थिति करती है।
1: सर, जैसे युवा जो है या जो अभी छोटे बच्चे भी हैं, जो भी लोग हैं, वो अगर किसी को अपना आइडल मान लेते हैं, जैसे कोई एक क्रिकेटर है उसको लोग अपना आइडल मान लिए हैं, या कोई एक्टर है, कोई IAS ऑफिसर है उसको उन्होंने अपना आइडल माना, उनका बताया गया रूटीन वो फॉलो कर रहे हैं और उसमें वो लोग थोड़ा नहीं हो पा रहा है उनसे, क्योंकि भाई सबका अपना अपना रूटीन है, अपनी कैपेबिलिटी है, जैसे आपने बताया, तो उसमें कैसे युवाओं को या लोगों को समझाया जाए कि आप अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से करिए।
0: ये आइडल मानना अच्छी चीज है, हम भी किसी को आइडल मान सकते हैं, कोई स्वामी विवेकानंद को आइडल मानते हैं, कोई गांधी जी को आइडल मानते हैं, कोई अपने शिक्षक को, कोई अपने माता पिता को ही आइडल मानते हैं, तो ये अच्छी चीज है। लेकिन ये कर लेना कि उनके जैसा ही हम बन जाएंगे, किसी एक्टर के जैसा बन जाएंगे या किसी पॉलिटिशियन के जैसा बन जाएंगे, लेकिन उसके पीछे समझने की जरूरत है कि उन्होंने क्या क्या प्रयास किया होगा, उनकी जीवन शैली किस तरह की रही होगी, तब अब उनके हिसाब से जीवन शैली में जब आप काम करेंगे तो

0: बेहतर हो सकता है।
1: सर अंत में हम आपसे जानना चाहेंगे कि तनाव प्रबंधन के क्या उपाय हैं और मतलब कैसे युवा अपना जो तनाव है उसको और कम करें।
0: तनाव प्रबंधन के लिए बहुत से मुद्दों पर हम लोग काम कर सकते हैं और उसके लिए जो अपने भारतीय जीवन शैली है वो सबसे बेहतर जीवन शैली है। यदि उसका हम चुनाव करेंगे तो आप देखेंगे हमारे भारतीय जीवन शैली में सम्यक भोजन जो भी हमारा खान पान है बेहतर होना चाहिए, सम्यक जो आचरण है, ठीक है, हम वैसा व्यवहार दूसरे से न करें जैसा दूसरे से हम अपेक्षा नहीं करते हैं, तो सम्यक आचरण यदि आप करते हैं तो तनाव की स्थिति कम होगी। सभी के साथ उचित व्यवहार करें, माता पिता से जैसा आपको व्यवहार करना चाहिए वैसा व्यवहार करें, अपने मित्र के साथ जैसे मित्रवत होना चाहिए वैसे व्यवहार करें, पति के साथ पत्नी के साथ अच्छा जो व्यवहार होता है उसी वो जो सम्यक आचरण आपका है वो यदि आप पालन करेंगे तो उसकी समस्या नहीं आएगी। प्लस तनाव प्रबंधन के लिए समय प्रबंधन भी जरूरी है क्योंकि समय आप देखिए हमारे पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे में ही हमको व्यायाम भी करना है, 24 घंटे में भी हमको पढ़ाई भी करनी है, अपना व्यवसाय भी करना है, तो उसके लिए समय का प्रबंधन जरूरी है और सभी पक्षों के लिए, परिवार के लिए भी समय चाहिए, आपके स्वयं के लिए भी समय चाहिए, आप जो व्यवसाय करते हैं उस व्यवसाय के लिए समय चाहिए। यदि आप समय देंगे तो सभी को समय देने से क्या उतनी गिल्ट फीलिंग भी नहीं होगी और अल्टीमेटली आप अच्छा महसूस करेंगे, खुश महसूस करेंगे।
1: जी सर, आप स्टूडियो में आए, आपने इतनी बातें बताई हमें, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद,
2: बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर संदीप सर आपका कि आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा की। साथ ही बहुत शुक्रिया आलिया आपका भी कि आपने इतना अच्छा विषय उठाया जो वाकई हमारे सभी युवा साथियों के लिए बेहतरीन और लाभदायक सिद्ध होंगे, है कि नहीं निशा?
3: बिल्कुल। तो दोस्तों अब वक्त हो चुका है यूथ डायरी का। इस सेगमेंट में हर दिन कुछ नया सीखते हैं, नए शब्द और उनका सही प्रयोग ताकि हमारी भाषा और भी बेहतर बन सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के शब्दों के साथ,
2: जिसमें हमारा आज का पहला हिंदी शब्द है निरपेक्ष, जिसका मतलब होता है कि जो किसी पर निर्भर ना हो, किसी से बंधा ना हो या किसी की अपेक्षा किसी तरह की न रखता हो, कोई आशा कोई अभिलाषा ना हो उसकी, जिसे अंग्रेजी में हम एब्सोल्यूट कह सकते हैं।
3: और इसे वाक्य में हम कुछ इस तरह बोल सकते हैं कि फैसला सुनाते समय न्यायाधीश को निरपेक्ष रहना चाहिए, सच्ची दोस्ती निरपेक्ष होती है, इसमें कोई स्वार्थ नहीं होता।
2: और अब बात करते हैं हमारे अंग्रेजी के शब्द की जो कि है वरेशियस, V-O-R-A-C-I-O-U-S, which means very eager or having a very strong appetite.
3: मतलब बहुत ज्यादा भूख लगना या किसी चीज को सीखने या पाने की बहुत इच्छा होना, और इसके synonyms होंगे greedy, ravenous, gluttonous and rapacious, etc.
2: And the sentence formation would be as, my sister is a voracious reader who finishes 5 books every week.
3: हाँ, तो दोस्तों ये रहे हमारे आज के शब्द और अब वक्त हो चला है कि आज के इतिहास पर भी एक नज़र दौड़ा ली जाए, जहां हम आपको बताते हैं कि आज ही के दिन इतिहास के पन्नों में कौन कौन सी अहम घटनाएं दर्ज हुई थी। तो चलिए जानते हैं आज के इतिहास से जुड़ी कुछ खास बातें,
2: और इसकी शुरुआत भी ना ऊंची ऊंची बातों से करेंगे, यानी भारत की आन बान शान तिरंगे की। जब साल 1947 में आज ही के दिन यानी कि 22 जुलाई को संविधान सभा ने तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अंगीकृत किया था, स्वीकार किया था।
3: हमारे तिरंगे में केसरिया, सफेद और हरे रंग की तीन पट्टियां होती हैं, जबकि बीच की सफेद पट्टी में अशोक चक्र होता है।
2: लेकिन क्या दोस्तों आपको पता है कि ये अशोक चक्र बाद में आया, इससे पहले कुछ और हुआ करता था?
3: हाँ सही कहा तैयबा, जिसमें आजादी से पहले चरखा हुआ करता था, लेकिन 15 अगस्त 1947 के बाद उसकी जगह अशोक चक्र को शामिल किया गया।
2: और तभी से मेरे दोस्तों तिरंगा हमारे देश की एकता, अदब, आबरू और खुददारी का प्रतीक बन गया। और इसी के साथ मेरे दोस्तों दूसरी आसमानी घटना आज के दिन ये हुई थी कि साल 2019 में आज ही के दिन चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया था।
3: इसे JSLV मार्क 3, जिसे बाहुबली रॉकेट भी कहा जाता है, के माध्यम से अंतरिक्ष में भेजा गया। इस मिशन का उद्देश्य था चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का अध्ययन करना, और इसने भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं को दुनिया के सामने मजबूती से प्रस्तुत किया।
2: और अब जानते हैं दोस्तों ऐसे साहसी कारनामे के बारे में जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, यानी बात साल 1983 की, जब आज ही के दिन ऑस्ट्रेलिया के डिक स्मिथ हेलीकॉप्टर से अकेले पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर अपने मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करके लौटे थे।
3: उन्होंने लगभग 11 महीने की इस रोमांचक यात्रा के बाद इतिहास रच दिया था। और अब बात है संगीत की दुनिया के उस सितारे की जिनकी आवाज आज भी लोगों के दिलों में

0: बसती हैं।
1: और सिर्फ बसती ही नहीं, गुनगुनाती भी है। और आज उन्हीं का दिन है मेरे दोस्तों, यानी कि महान पार्श्व गायक मुकेश का जन्म 22 जुलाई 1923 को दिल्ली में हुआ था। उनका पूरा नाम मुकेश चंद माथुर था, जिन्होंने बॉलीवुड के, जिन्हें हम शोमैन राज कपूर की आवाज कहते थे।
0: सावन का महीना, कोई जब तुम्हारे हृदय तोड़ दे और चांद आहें भरेगा, जैसे कई सदाबहार गीत आज भी लोगों की जुबान पर हैं। 27 अगस्त 1976 को अमेरिका के मिशिगन में उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी आवाज़ आज भी अमर है।
1: तो दोस्तों, ये तो रही हमारे आज के दिन के इतिहास से जुड़ी कुछ खास घटनाएं। बाकी जानकारियों के फहरिस्त में हम अब आगे बात करते हैं अपने परिश्रमी युवा साथियों के अगले काम की खबर की, यानी रोजगार सूचना की। तो हमारी आज की रोजगार सूचना है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। तो मेरे दोस्तों, यूबीआई ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर स्पेशलिस्ट ऑफिसर यानी कि एसओ पदों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जो है वो कल से शुरू भी हो गए हैं। और आप अगर इच्छुक हैं तो 10 अगस्त 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।
0: और अगर आप इंटरेस्टेड कैंडिडेट के पास भारत में किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय से किसी भी क्षेत्र में यूजी पीजी अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। बाकी इससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी के लिए आप यूबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट www.unionbankofindia.bank.in पर विजिट कर सकते हैं।
1: इसी के साथ अब विजिट करते हैं अपने विनर्स को भी, जिन्हें हमारा बेसब्री से इंतजार रहता है। लेकिन उससे पहले एक नजर अपने कल के सवाल पर डाल लेते हैं निशा।
0: तो हमने कल ये सवाल किया था कि डिजिटल कॉमर्स इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए जुलाई 2026 में किस संगठन ने ई कॉमर्स काउंसिलिंग ऑफ इंडिया यानी कि ECCI की शुरुआत की है।
1: तो इसका सही जवाब है,
0: इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, IAMIAI।
1: और जिन साथियों ने इसका सही जवाब दिया है उनके नाम हैं दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा, जो कि पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से हैं। मुकेश कुमार प्रजापति हैं सिगरा वाराणसी से। उत्तम कुमार बघेल, रुखमणी बघेल, साहिल भारती बघेल, ये हैं लगान से, जो कि छत्तीसगढ़ में है। तो आप सभी दोस्तों को हमारी युवाणी की तरफ से
0: बधाइयां और शुभकामनाएं। और इसी के साथ हमारा आज का प्रश्न सुनते हैं। जापानी मचा चाय का उत्पादन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है?
1: हम सवाल एक बार फिर से दोहराते हैं। जापानी माचा चाय का उत्पादन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो भेजिए अपने उत्तर हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल youth वाराणसी पर, या फिर मेल कीजिए youth@gmail.com पर। इसके साथ ही दोस्तों, चूंकि कल हम अपना फोन इन रिकॉर्ड करने वाले हैं, आपसे बातें होने वाली हैं, तो हम आज आपको वो विषय भी बताते चलें जिस पे कल हम आपसे बातचीत करेंगे। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, हमारा कल का विषय होने वाला है कि हमारे प्रिय त्यौहार कौन से हैं, भारतीय त्यौहार। तो आप फटाफट से अपने जो जवाब रहेंगे वो हमें दीजिएगा, अपनी बातें हमसे साझा कीजिएगा और हमारा फ़ोन नंबर ज़रूर डायल कीजिएगा। और निशा, एक बात कहते हैं ना कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, यानी यू आर वॉट यू ईट। ये कहावत तो हमने कभी ना कभी तो जरूरी सुनी होगी कि जैसा खाओगे वैसे ही बनोगे।
0: हाँ हाँ, बिल्कुल। आजकल की भाग दौड़ भरी लाइफ में लोग अक्सर अपनी डाइट को इग्नोर करते हैं। इशारा तो आप समझ ही रहे हैं ना दोस्तों कि जैसा खाएंगे वैसे ही तो बनेंगे, है ना?
1: बिल्कुल सही कहा। अगर दिन भर जंक फूड खाते रहेंगे तो बॉडी भी तो जंक हो जाएगी। फास्ट फूड, प्रोसेस स्नैक्स, ये सब ना टेस्ट में तो बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होता है, कभी सोचा है इसके बारे में? वेट गेन, लेजीनेस और कई सारी हेल्थ प्रॉब्लम।
0: बिल्कुल हाँ। और देखो ना, आजकल तो हर दूसरा इंसान डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या फिर कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियों से जूझ रहा है। और इसका बड़ा कारण क्या होता है? हमारा बिगड़ा हुआ खान पान, होम मेड खाना, देसी घी, दाल रोटी, हरी सब्जियाँ, ये सब तो हमारी थाली का ओरिजिनल खाना है। इन्हें कोई भूल क्यों रहा है?
1: बिल्कुल सही कहा। और बैलेंस डाइट का मतलब ये नहीं होता कि बोरिंग खाना खाया जाए। हम थोड़ा क्रिएटिव बन सकते हैं, सलाद में स्प्राउट्स या अंकुरित अनाज भी तो ले सकते हैं, फलों की स्मूदी बनाकर पी सकते हैं, और फिर देसी मसालों के साथ तो एक्सपेरिमेंट कर ही सकते हैं, जिससे फ्लेवर भी मिलेगा और न्यूट्रिशन भी।
0: लेकिन हाँ दोस्तों, इसके साथ ही पोर्शन कंट्रोल का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है, यानी कि खाने को सही मात्रा में खाना ताकि सेहत अच्छी रहे। सही मात्रा के साथ ही सही समय पर खाना भी बहुत ज़रूरी है।
1: और इसी के साथ समय का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। और समय का ध्यान रखते हुए अब आपसे अलविदा लेना चाहेंगे, लेकिन जाने से पहले दोस्तों यही कहूँगी, ख्याल रखिएगा अपना, अपनों का और अपने आसपास के लोगों का भी।

0: की अब हमें दीजिए इजाजत, यानी कि तैयबा
1: और मनीषा,
0: नमस्कार, जय हिंद।
2: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6 बजने को है। थोड़ी ही देर में आप हमारे गोरखपुर केंद्र से समाचार सुनेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।
3: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ ही हम वेद प्रकाश पाठक। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का कहना कि सरकार मानसून सत्र के पहले दिन से नीट परीक्षा पेपर लीक मामला पर चर्चा बधे तैयार हो। संसद परिसर में पत्रकार लोगों से बतियावत, उन्होंने कहा कि यह चर्चा बधे नियम का निर्धारण कर जाए के चाहिए। श्री रिजिजू कहना कि सरकार नीट परीक्षा प्रश्न पत्र पर गहन चर्चा चाहती बा।
4: देखिए, जो ऑपोजिशन पार्टी बोलना चाहते हैं तो बोलना ही है चर्चा के दौरान, हम मना नहीं कर सकते हैं। लेकिन चर्चा को रोकने के लिए आप अगर कंडीशन डालेंगे तो इसका मतलब आप चर्चा नहीं चाहते हैं। हमने जब खुले दिल से ऑफर किया सरकार की ओर से कि हम चर्चा चाहते हैं, तो उसको व्यवधान डालने के लिए कोई कंडीशन ऐसा डालेंगे ताकि चर्चा ही ना हो, ये तो ठीक बात नहीं है।
3: बीच संसद के दोनों सदनों का कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामला और कई गो मुद्दों पर विपक्ष के हंगामा के नाते अजो बाधित रहल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर के दौरा पर पहुंचने। वहां के योगीराज बाबा गंभीर नाथ प्रेक्षागृह में आयोजित गोरखपुर शहर और गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के बूथ अध्यक्षन के सम्मेलन में हिस्सा लेने। मुख्यमंत्री बिहार गोरखपुर में कई गो विकास कार्य के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुई हैं।
5: मुख्यमंत्री कल 6 लेन फ्लाईओवर सहित गोरखपुर को 995 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। वहाँ टीपी नगर पैडलगंज मार्ग पर बने 6 लेन फ्लाईओवर के समीप आयोजित समारोह में 813.52 करोड़ रुपए की 4 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। साथ ही 181.77 करोड़ रुपए की लागत वाली 10 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। टीपी नगर पैडलगंज मार्ग पर 2.6 किलोमीटर की लंबाई वाले और गोरखपुर के पहले 6 लेन फ्लाईओवर से अंतर जनपदीय कनेक्टिविटी को नया आयाम मिलेगा। इस फ्लाईओवर के जन समर्पित हो जाने से संत कबीर नगर, बस्ती, अयोध्या, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, आजमगढ़, कुशीनगढ़, देवरिया, बिहार, महाराजगंज और नेपाल तक आने जाने वाले लोगों की यात्रा काफी सुविधाजनक हो जाएगी। जीएन चौधरी, आकाशवाणी समाचार, गोरखपुर।
3: मुख्यमंत्री गोरखपुर के एनएक्सी भवन सभागार में जिला के अधिकारियों के साथ बैठक कई के विकास कार्यों, बाढ़ से बचाव और जल निकासी के तैयारियों का समीक्षा कई लें। आज राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एगो सोशल मीडिया पोस्ट में प्रदेशवासियों के दिवस का बधाई दे रहे हैं। वहां की कहानी के देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भारत के एकता, संप्रभुता, अखंडता, गौरव और आत्मसम्मान का प्रतीक हो। इस मौका पर वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार पर भइल एक आयोजन में तिरंगा लहरावल गयल और राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस के महात्मा के बारे में जिक्र कल गयल। जौनपुर औरैया के साथ ही प्रदेश के कई जिलों में जल शक्ति अभियान, कैच द रेन और भू जल सप्ताह के तहत जल संरक्षण और जल संवर्धन बदे आज कई गो आयोजन कल गये। इन मौका पर जन जागरूकता वाहन रैली निकाल गयी और लोगों के जल संरक्षण का शपथ दियावल गयी। एक कड़ी में प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर अम्बेडकर नगर जिला में जन जागरूकता वाहन रैली के हरियर झंडी देखा के जल संरक्षण का संदेश देने है। बिहार से शुरू होके 2 अगस्त ले स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित हो रहा राष्ट्रमंडल खेलों में प्रदेश के 10 गो एथलीट देश का प्रतिनिधित्व करी है। एक रिपोर्ट।
6: गुणवीर सिंह 5,000 मीटर और 10,000 मीटर दौड़ में पदक के लिए दौर आजमाइश करेंगे। प्रयागराज के कुलदीप कुमार पोल वॉल्ट में किस्मत आजमाएंगे। जौनपुर के रोहित यादव भाला फेंक में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। पारुल चौधरी 3,000 मीटर स्टिपल चेज और 5,000 मीटर की दौड़ में भाग लेंगे। प्रियंका गोस्वामी 10,000 मीटर की पैदल चाल और नीरू पाठक

0: चार गुना 400 मीटर की रिले दौड़ में पदक प्राप्त करने की कोशिश करेंगी। उत्तर प्रदेश पुलिस की अस्मिता डे जूडो में हाथ आजमाएंगी। बॉक्सिंग में आगरा के आदित्य प्रताप सिंह पदक जीतने की कोशिश करेंगे। लखनऊ के श्रियांश त्रिवेदी और भदोही के सागर पैरा एथलीट के रूप में भाग ले रहे हैं। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मौसम विभाग आज व अभी प्रदेश के पूर्वी इलाकन में कुछ जगह पर बरखा का संभावना जतौले हो।

0: से गोरखपुर आयकर लगे के जिलन में कई जगहों पर आज दिन में हल्का है बरखा भइल। सतही कुछ देर घाम निकल आ फिर आसमान में बदरो छा गए। समाचार पूरा भइल, नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। इस स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:05 हो रहे हैं। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत सुनिए आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

संसद समीक्षा आप सुनेंगे रात्रि 8 बजे प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात्रि 10:30 पर सुनिएगा नीरज मिश्रा का सितार वादन। गैर फिल्मी गीत और गजलों का कार्यक्रम अंजुमन आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर और अंग्रेजी कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिएगा तिरंगा अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर एवरी इंडियन, इस विषय पर डॉक्टर दिव्या सिंह की वार्ता शाम 7 बजे। किसान भाई सुनेंगे अपना मनपसंद कार्यक्रम कृषि जगत शाम 6:30 पर। अन्य बातों के अलावा सुनिएगा कृषि कार्य में उपयोगी आधुनिक कृषि यंत्र, इस विषय पर विनोद कुमार सिंह से बातचीत और साथ ही साथ सुनिएगा महेंद्र सिंह यादव और साथी का गाया लोकगीत। तो श्रोतो ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। अब सुनिए कल्याणी 23 जुलाई 2026 दिन गुरुवार को प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात्रि 10:30 पर सुनिएगा डॉक्टर गोपाल शंकर मिश्रा का वीणा वादन और शास्त्रीय संगीत के अन्य कार्यक्रमों में सुबह 7:31 पर और दिन 12:45 पर आप सुनेंगे डॉक्टर आर पी शास्त्री का वायलिन वादन। संसद में प्रश्नकाल की रिकॉर्डिंग का प्रसारण आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से रात्रि 10 बजे। गैर फिल्मी गीत और गजलों का कार्यक्रम अंजुमन का प्रसारण समय होगा रात्रि 9:30 पर।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में रात्रि 8 बजे सुनिएगा चंदन दास की गाई गजलें, और सुगम संगीत के अन्य कार्यक्रम में दिन 12:30 पर कलाकार होंगे लोकेश शुक्ला। संसद समीक्षा का प्रसारण समय होगा रात्रि 8 बजे, प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। किसान भाई सुनेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम कृषि जगत शाम 6:30 पर। अन्य बातों के अलावा सुनिएगा दुधारू पशुओं की प्रमुख बीमारियां और इसका इलाज, इस विषय पर डॉक्टर ए के प्रसाद से बातचीत, और अलावा इसके आनंद लीजिएगा डॉक्टर संध्या गुप्ता की आवाज में लोकगीत का भी। श्रोता इन्हीं के गाये लोकगीत आप सुन सकेंगे सुबह 9:50 पर और दिन 1:45 पर भी। युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवाणी शाम 5:15 पर। आज की बात यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन और रोजगार सूचना के अलावा आनंद लीजिएगा गीत संगीत का भी। संदेश टू सोल्जर्स ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 4:00, प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। ग्रामीण बहनें सुनेंगे अपना मनपसंद कार्यक्रम अंगनैया दिन में 1:15 पर। अन्य बातों के अलावा महिलाओं और बच्चों में कुपोषण की समस्या, कारण और समाधान, इस विषय पर गरिमा उपाध्याय से बातचीत आप सुनेंगे। अलावा इसके आनंद लीजिएगा गीत संगीत का भी। श्रोताओं के ईमेल पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस का प्रसारण समय होगा दिन 11:00। गुड मॉर्निंग बनारस आप सुनेंगे सुबह 7:00, और सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मधुरिमा का प्रसारण समय होगा सुबह 8:45 पर। श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ सुनिएगा सुबह 6:40 पर, और सुबह 6:35 पर सुनिएगा इस मौसम में आहार विहार, इस विषय पर डॉक्टर चंद्रशेखर पांडे की दी गई जानकारी कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में। भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम आराधना का प्रसारण समय होगा सुबह 6:10 पर, और खेती की बातें कार्यक्रम में करेला की खेती के बारे में जानकारी देंगे दिनेश कुमार सिंह सुबह 6:05 पर। तो श्रोताओं ये थी जानकारी आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की।

दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए
2: 0542227658।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें
3: 0542227658।
4: आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। प्रस्तुत है

यशोदास और हेमलता की युगल आवाजों में चितचोर फिल्म का ये गीत। गीत और संगीत है रविंद्र जैन का।

चितचोर फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:20 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। केन्द्रीय सर्वकारः संसदि नीट प्रश्नपत्र गोप्यता भंग विषये सारगर्भां चर्चां विधातुम् अंगीकृतवान्। तथापि विपक्षस्य श्रान्तं कोलाहलेन प्रावृत सत्रस्य तृतीयेपि दिने उभयोः सदनयोः कार्याचरणं स्थगितम्। सोमवासरे संसद भवनं प्रति आन्दोलनं कुर्वत्सु प्रदर्शनकारिषु आरक्षकैः कृतायाः अत्यधिक बलप्रयोगस्य आशंकायाः प्रकरणे देहली उच्च न्यायालयः केन्द्र सर्वकारात् देहली आरक्षक विभागाच स्पष्टीकरणम् आहूतवान्। फिलीपींस देशस्य मनीला नगरे समायोजिते क्वाड मंचस्य वैदेशिक मंत्रिणाम् उपवेशने मंत्रिभिः मुक्त उन्मुक्त समावेशे हिंद प्रशांत क्षेत्राय स्वकीया प्रतिबद्धता पुनरावर्तिता। असम राज्ये भीषण जलप्लावेन स्थितिः अद्यापि अत्यन्तं गभीरा वर्तते, यत्र जलौघे मृतकानां आहत्य संख्या संवर्ध्य 31 सम्प्राप्ता। अपि च चीन ओपन बैडमिंटन प्रतिस्पर्धायाम् अद्यापराह्णे वारद्वयस्य ओलंपिक पदक विजेत्री पीवी सिंधुः स्वस्यैव देशस्य उन्नति हुड्डां पराजित्य द्वितीय चक्रं प्राविशत्। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। नीट प्रश्नपत्र गोप्यता भंग प्रकरणम् अथ च छात्राणां विरोध प्रदर्शनं समेत्य विभिन्न प्रकरणेषु विपक्षिणां तृतीय दिवसेपि सदस्यानां अविरत कोलाहलत्वेन संसदः उभय सदनयोः कार्याचरणं स्थगितम्। अपराह्णे द्विवादने द्वितीय स्थगनात् परं यदा लोकसभायाः कार्याचरणं पुनरारब्धं तदा विक्षेपेण नीट प्रकरणमधिकृत्य उच्चैः कोलाहलो विहितः। अत्रांतरे सदनेन तृणमूल कांग्रेस दलस्य सांसदः कल्याण बैनर्जी इत्यस्य वर्षाकालीन सत्रस्य शेषावधेः निलंबन प्रस्तावोऽपि पारितः। पीठासीनः कृष्णा प्रसाद टेनेटी न्यगादीत् यत् कल्याण बैनर्जी इत्यसौ महिला सांसदानां विरुद्धं आपत्तियुक्ताम् असंसदीय टिप्पणीं विहितवान्। घटनेयम् आपत्तियुक्ता सदनस्य मर्यादायाः विरुद्धा च इत्यपि सः प्रावोचत्। संसदीय कार्य राज्यमन्त्रिणा अर्जुन राम मेघवालेन एषः प्रस्तावः उपस्थापितः, यश्च ध्वनिमतेन पारितः। निरन्तर कोलाहलेन पीठासीनाधिकारिणा लोकसभायाः कार्याचरणम् आगामि दिनं यावत् अपवारितम्। राज्यसभायामपि एतादृशः एव दृश्यः दृष्टिम् अगात्। अपराह्णे त्रिवादने तृतीय स्थगनात् परं यदा उच्च सदनं समवेतं तदा विपक्षिदलानि नीट विषये अन्य प्रकरणेषु च विरोधं प्रादर्शयन्। उपसभापतिः हरिवंशः अवदत् यत् सर्वकारः नीट विषये चर्चायै सज्जः अस्ति, विपक्षेण च सदन संचालने सहयोगः करणीयः। उच्चसदने भाषमाणः संसदीय कार्यमन्त्री किरण रिजिजुः कांग्रेस दलेन नवीनान् पक्षाश्रयानारोप्य सदने चर्चायां विघ्नोत्पादनाय प्रत्याक्षिपत। अविरत कोलाहलस्य मध्ये उपसभापतिना राज्यसभायाः कार्याचरणमपि आगामि दिनं यावत् स्थगितम्। इतः प्राक् संसदीय कार्यमन्त्री किरण रिजिजु उदघोषयत् यत् सर्वकारः नीट प्रश्नपत्र गोप्यताभंग विषये सर्वविधां विचार विनिमयं कर्तुं पूर्णतया सन्नद्धो वर्तते। राष्ट्रस्य यूनां भविष्यं मनसि निधाय रिजिजु वर्यः सबलम् आग्रहम् अकरोत् यत् सर्वकारः सर्वानपि पक्षान् समेत्य एकाम् उच्चस्तरीय चर्चाम् इच्छति।
1: सरकार नी पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है। माननीय स्पीकर महोदय, सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
0: दिल्ली उच्च न्यायालयः सोमवासरे संसद भवनं प्रति गच्छत्सु प्रदर्शनकारिषु आरक्षकैः कृतायाः अत्यधिक बलप्रयोगस्य आशंकायाः प्रकरणे केन्द्रीय सर्वकारात् दिल्ली आरक्षक विभागाच प्रत्युत्तरं याचितवान्। मुख्य न्यायाधीशस्य डीके उपाध्यायस्य च तथा न्यायाधीशस्य तेजस कारिया महोदयस्य न्यायपीठेन आरक्षक कार्याचरणात् सम्बद्धानि सर्वाणि प्रपत्राणि सीसीटीवी चित्राणि च सुरक्षितानि स्थापयितुं निर्देशो प्रख्यापितः।

0: पंचो राम राम सुद्धू भैया।
1: हाँ सत्तू भैया।
0: अरे कहा कुल अपने किसानी का हालचाल हो।
1: किसानी का हालचाल का भाई देखा हमहन तो गांव में जोन रहा थे ना, तो सबकर काम वह बा कि जब समय आ जाला ना तो सब अपने अपने काम में देखा जुट जाला। और ए बखत जब मुख्य फसल धान वाला बा, देखा भाई पानी के सुतार जेकर बैठ गल बा ना, वो तो भाई देखा रोपनी कह देले बा और ज्यादातर हो भी गल हो, हमारो निपटी गल बा। और एकरे बाद भाई देखा अब दऊ से यह हमन मनावत है कि हे दऊ समय से जो है बरखा कह दे, जैसे कि अपन धान का फसल जो है ठीक ठाक हो जाए।
0: और बरखा के भैया बनैले रह अंतिम ले, जब ले कि हमने के धान ठीक ठाक से पैदा हो न जा, फसल लग न जा।
1: हाँ हाँ बिल्कुल।
0: तो भाई
1: देखा हो हमन के गांव में न तो मुख्य रूप से काम यह हो, और कहल जाला कि अपन भारत देश जौन हो ना, ये देखा गांवन का देश हो, कृषि प्रधान देश हो। और महात्मा गांधी देखा कहले रहे ना कि अगर गांव का विकास हो जाए तो अपने देश का विकास हो जाए और भारत का आत्मा गांव में बसे ले।
0: बिल्कुल। और गांधी जी का ये भी कहना रहे कि अगर हमने के प्रगति की ओर जाए के है, हमने के अगर वैश्विक स्तर पर प्रगति दिखावे के है, तो भाई सबसे पहले अपने गांव का विकास कर जा और गांव की ओर विकास करते हुए शहर की ओर पहुँचल जाए।
1: बिल्कुल। और शहर से बढ़ते हुए फिर पूरे देश का विकास।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: से घूमी।
0: बिल्कुल।
1: तो देखा भाई यही बात के ध्यान में रखते हुए कि अपने गांव का विकास तेजी से हो ना, ये जो पंचायती राज व्यवस्था करी गई जानले,
0: बिल्कुल
1: यही विकास के ध्यान में रखते हुए एक मुख्य उद्देश्य भी यह हो।
0: बिल्कुल।
1: कि जो गांव का मूलभूत आवश्यकता हो है ना, चाहे बिजली भैल, पानी भैल, सड़क भैल है ना, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो,
0: एकदम
1: एकर समुचित रूप से विकास होए, ये बात के ध्यान में रखते हुए एकर जो हो देखा गठन कल गल। और पूरी तरह से समझ ला कि ये अपन काम करत भी हो, देखा तो देखत देखत गांव का कितना विकास हो।
0: बिल्कुल हो। सुद्धू भैया ये जान ला कि जब बूढ़ पुरानिया लोग से घरे में आज भी सुने के मिलेला कि भाई देखो पहले के जमाने में जब आई है बरसात का जब समय आवे ना, तो लोग एक एक दो दो महीना का राशन अपने घर में जुटान करके पहले से ही रखला कि भैया ज्यादा बारिश हुई सड़क खराब हो जाई। हम ये तो आजादी के समय का आसपास का बात बताओ थी।
1: अरे भाई सड़क रहबा नहीं, कल हमके डांड़ मेड़ रहल, कहाँ जौन हो डांड़ हो कहाँ मेड़ हो कुछ पता नहीं,
0: पानी है, पानी हो जा,
1: एकदम
0: संपर्क टूट जा, उतना नहर और उतना कह जाओ कि पक्की सड़क ना बनल रहे, तो लोग बड़ा परेशानी उठावा। लेकिन जौन तू बात कहला है कि धीरे धीरे हमने के विकास की ओर गई नहीं जा, ग्रामीण अपने पंचायती राज से अपने ग्रामीण का विकास भइल, तो भाई देखो हर सरकार आइल और हमने ग्रामीण इलाका ग्रामीण जगहन के बारे में सोचलस, ओकरी बदे तरह तरह के योजना बनली, चाहे वो ग्रामीण स्तर हो, ब्लॉक स्तर हो, जिला स्तर पर, और हर स्तर से अपने गांव का ग्रामीण क्षेत्र का विकास कैला।
1: और इमन हर एक ग्रामीण का संपूर्ण योगदान होला।
0: बिल्कुल
1: चलला ना गांव के ध्यान में रखते हुए जब एकर देखा वो मीटिंग होले ना, तो उमन हर व्यक्ति बराबर रूप से अपन योगदान देला जा करके कि कहाँ का समस्या हो गांव का, और वो बात के ध्यान में रखते हुए ओकर योजना बनेगी।
0: बिल्कुल है? अरे भाई योजना के ही तहत तो देखो ना मनरेगा जो बनल कि भाई गांव में अगर काम लगत हो तो गांव के ही लोगन से ओके काम करावल जाओ कि दो पैसा उनके भी कामे आ जाए, मिल जाए, और उनका घर गृहस्थी भी चली। तो देखा उसमें भूमिका तो जो बात तू कहला सुद्धू भैया ना कि ग्रामीण लोगन कह, तो बिल्कुल भाई ग्रामीण लोगन कह, अरे ये देखा कि गांव में खड़िंजा बिछे लगे।
1: हाँ।
0: तो पूरा गांव का लोग जो मजदूर लेबर लोग रहे ये काम करे वाला, उनकी संगे संगे वो लोग किनारे किनारे ईटा बिछावे लगा।
1: एकदम एकदम एकदम मिलजुल के समझ ला कि ना देखे कि भाई मन श्रमिक काम करत हुआ, हम तो श्रमिक है ना, वही में जुट करके समझ ला मिलजुल करके एकजुट होके काम करे ना।
0: बिल्कुल
1: ये चीज बड़ी अच्छी लगे ले। और देखा ये वजह

0: से अपन जो त्रिस्तरीय जो व्यवस्था बनल है जो कहले है कि ग्रामीण स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, भाई समन्वित रूप से एक साथ मिल करके जब एक विकास होला ना, तो भाई क्रमवार विकास हर जगह तक पहुँचल है
1: बिल्कुल।
0: भाई। जो भी योजना बनल ओके जो ना प्रस्तावित करके आगे बढ़ाए गए, वहाँ से प्रस्ताव आगे गए
1: आगे,
0: हाँ,
1: अरे एक
0: वहाँ
1: उदाहरण
0: से
1: ले लो
0: काम शुरू
1: भैया
0: हो गए।
1: कि जैसे ग्रामीण स्तर पर भाई अपन खड़िंजा का रोड भइल, कचिया रोड भइल, खड़िंजा तक भइल, ओकरी बाद भाई ब्लॉक स्तर से ओके आरसीसी होला, हाँ ओकरी जिला जिला स्तर से भाई ओके पिच हो जी, चाहे जौन भी आगे बढ़त जाई हर
0: और क्या,
1: कार्यक्रम। और
0: बिल्कुल।
1: गांव बदे देखा जौन बात तू कहला ना
0: अरे
1: त्रिस्तरीय वाला,
0: शिक्षा के देख ले क्या,
1: हाँ
0: पहले याद हो तोरे चना भुजाए के हमने जो है खलित्ता में धाय के जो है पैदल चल देवल जा झोला टांग के है ना, कितना दूर जाए को डर लगे हो रास्ता में।
1: तब का
0: अब देखा अपने गांव में देखा चट्ठे स्कूल हो गई
1: बिल्कुल बिल्कुल। अरे हर
0: है
1: किलो हर 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पे स्कूल है,
0: और क्या।
1: और ये जान लगे एकदम। और ये और चीज़ देखा, जब घरे को छोटे छोटे गदेला लोग रहे हैं तो भाई एक आदमी उनके पहुंचावे जाए,
0: जाए
1: हाँ कि
0: हाँ
1: कीड़ा फतिंगा कुछ काट न ले, हाँ
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: उधर
0: बिल्कुल
1: मूझ है, मतलब बड़े बड़े जो किनारे में घास जम जा,
0: हाँ हाँ
1: तो ये
0: हाँ
1: बदे भी रहे कि अरे भाई कुछ निकल के काट ले या कुछ निकल के पकड़ ही ले, तो लोग साथ साथ जहाँ सो करी हैं।
0: बिल्कुल
1: लेकिन
0: बिल्कुल।
1: अब तो ऐसा ना कि तू अपने दुआरे पे खड़ा
0: अरे
1: रहा,
0: खेलत
1: गदे
0: खात लड़का चल
1: हाँ
0: जात
1: गदेला
0: हुआ
1: स्कूल तक पहुँचे कुल दिखत
0: देखात
1: था,
0: रही
1: हाँ कि हो बबुआ
0: हाँ
1: जाते हैं हो रास्ते पहुँचल हैं। तो भाई
0: हाँ
1: देखो धीरे धीरे जमाना बदल गई, विकास बदल गई भैया, हाँ और विकास होत गई और हमने लोग देखा बहुत तरक्की में आगे नहीं जाए।
0: बिल्कुल बिल्कुल। बाकी तरक्की के पहिया देखा रुके के ना चाहिए, कबो रुकत नहीं है, तरक्की के कोनो सीमा नहीं है
1: बिल्कुल
0: जानले।
1: बिल्कुल।
0: तो हम लोग एक गति के बनौले रही और इमन सबकर योगदान रहे जैसे कि अपन भारत देश का विकास जो ना चरम पर हो।
1: भाई जो शुरू में कहला ना सुधु भैया कि भाई जब अपने गांव का विकास होला तो अपने शहर का, और शहर से देश का विकास होला, देश से हमनी का वैश्विक स्तर पर पहुँचे नहीं जा, तो
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल ही सही है। जैसे जैसे हमनी का ऊपर विकास बढ़त जाए वैसे वैसे हमनी का देश में नाम हो जाए,
0: बिल्कुल
1: विदेश में भी नाम हो जी। सुधु भैया देखा आगे बात बत कही भी कह लीजिए, लेकिन एगो है कुछ संदेश है वो सुन लिया जा, ओकरी बाद फिर बत कही
0: शुरुआत
1: हो।
0: है। एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

0: सुधु भैया,
1: हाँ सत्यम
0: देखा
1: भैया।
0: संन्यास तो हो गई और हम कहते हैं ना कि
1: हाँ
0: देखा इंजीनियर साहब भी आ गए ना, हम अपनी जगह पर उनके बैठावत हैं। आ तुहनी लोग ना ये जौन अपने धान का फसल है, या जौन अपने धान का मुख्य रूप से ये जौन फसल होके जात है, तो ये में भाई कृषि बदे कौन कौन उपयोगी आधुनिक कृषि यंत्र हुआ, आ ये
1: हाँ
0: विषय पर तोड़ों बात कही करा जाए
1: अरे
0: डॉक्टर
1: भाई
0: विनोद कुमार सिंह से, और हम तनिक कगरी हट जात
1: तो
0: हैं।
1: भाई बड़ा बढ़िया जौन हो बत कही का विषय बतौला है। देखा हम महान विकास के बात भी करत रहली है और विकास अपने खेती बारी में भी हो चुकल हो
0: बिल्कुल हो
1: है,
0: चुकल है।
1: और नया नया यंत्र जौन आ गए हुआ ना उसे कम समय में कम पैसा में और कम श्रम से उत्पादन अधिक होता हो।
0: बिल्कुल
1: तो
0: इंजीनियर साहब
1: काहे ना
0: के
1: हम कही भैया जानकार भैया हुआ उनसे बतिया ले।
0: एकदम बतियाओ जाए, हम कगरी हट जाते हैं।
1: तो इंजीनियर विनोद कुमार सिंह तैसे घुसू किया वा और तैसे बत कही हो जाए।
2: विनोद कुमार सिंह, आप सेवानिवृत्त कृषि वैज्ञानिक रहल हुआ कृषि अभियंत्रण विभाग में। आज हम आपसे ई जानल चाहब कि अपने खेती बाड़ी में जौन देखें तकनीकी का प्रयोग होत हो। भाई हर बैल वाली खेती अब ना रह गई न, पारंपरिक खेती से हट के देखें हर काम में अब जौन हो नया नया यंत्र संयंत्र कुल आएगी न,
0: बिल्कुल सही।
2: तो ये कौन कौन उपयोगी यंत्र हुआ जौन अभी ए फसल में हमन के जौन सहयोग कर सकना ओकर उपयोग हम कर सकीला।
3: बिल्कुल किसान भाई के लिए देखिए ये बहुत ही अच्छी चीज है कि समय से और खेती बाड़ी में

0: फिलहाल जो जिस समय चल रहा है धान की खेती खरीफ में, तो इसमें बहुत से आवश्यक उपयोगी कृषि यंत्र हैं। जैसे कि अभी तो मेरा ख्याल है कि अभी पूर्वोत्तर भाग में क्षेत्र में अभी तो रोपाई का कार्यक्रम शुरू भी नहीं हुआ है, या पश्चिम में शुरू हो रहा है। तो ऐसे में धान की पहले है कि मचाई करने के लिए, खेत पडल करने के लिए, तैयार करने के लिए, यानी उसका बिस्तरा जो है सबसे बढ़िया जो है, जैसे रोटावेटर हो गया, कल्टीवेटर हो गया, तो इस तरह से है, और डिस्क हैरो हो गया, ये सब ऐसे यंत्र हैं जो खेत में पानी लगा करके जुती हुई पहले की जो मिट्टी है उसमें जो है अच्छा वो प्रॉपर सीड बेड प्रिपेयर कर देता है, खेत की अच्छी तैयारी कर देता है, और उसके बाद धान की रोपाई करते हैं। और धान की रोपाई करने के लिए विशेष तौर पर मैं देख रहा हूं कि दिनों दिन महंगाई बढ़ती जा रही है और श्रमिकों की अनुपलब्धता हो रही है, कृषि कार्य बढ़ जा रहा है। और खेती बाड़ी जो हो है ऐसी चीज है कि जो एक समय से ही शुरू होता है, सीजनल, तो ऐसे में श्रमिक न मिलने से समय में खेती बाड़ी पिछड़ जा रहा है। तो ऐसे के लिए और पारंपरिक जो तरीके हैं रोपाई के धान का खेत में, वो उससे हट करके जैसे मानव द्वारा चली 6 कतारी धान रोपाई का यंत्र है, इसके बाद पावर ड्रान पावर शक्ति द्वारा चालित 8 कतारी धान का रोपाई का यंत्र है, इससे कम समय में और पंक्तिबद्ध तरीके से लाइन से रोपाई का कार्यक्रम हो जाता है, उचित गहराई पर रोपाई कर देता है। और इसके बाद इसमें बाद में लाइन से खेती करने पर होता क्या है कि जो दिया गया उर्वरक और पहले से पोषक तत्व तो बराबर मात्रा में अनुपात में फसल जो है पोषक तत्व तो उनको उपलब्ध होता है और एक बराबर बढ़वार विकास होता है। और बाद में खेत में जैसे खरपतवार हो जाता है तो इसकी निराई गुड़ाई भी कतारबद्ध तरीके से मशीनों से रोपाई करने में आसान हो जाता है। निराई गुड़ाई में जैसे कोनो वीडर वगैरह हुआ, तो कोनो वीडर से क्या होता है कि खेत की जो पपड़ी होती है वो मिट्टी की परत टूट जाती है, जल धारण की क्षमता बढ़ जाती है, खरपतवार कट करके उसमें शुद्ध जैविक खाद हो जाते हैं। और इस प्रकार से निराई गुड़ाई करने से फिर फसल में बढ़वार विकास अच्छा होता है और शुद्ध पोषक तत्व भी उसमें निराई गुड़ाई करने के बाद उसको प्राप्त हो जाते हैं और फसल की बढ़वार विकास अच्छा होता है। इसके बाद दाने बालियां निकलती हैं, उपज में इजाफा होता है।
1: ये जो 6 फार वाला आप बताओ थो,
0: 6 कतारी मानव द्वारा चली धान रोपाई का यंत्र,
1: हाँ
0: इसके
1: एकर
0: इससे रोपाई करने के लिए एक विशेष प्रकार की नर्सरी तैयार की जाती है। जैसे 50 से 60 प्रति हेक्टेयर धान की रोपाई करने के लिए 50 से 60 वर्ग मीटर नर्सरी का क्षेत्रफल होना चाहिए, जिसमें खर पतवार बिल्कुल न हो, सफाई कर करके और बेड को सीडलिंग्स यानी नर्सरी तैयार करने के लिए उसमें मिट्टी और गोबर कंपोस्ट खाद वगैरह मिला के थोड़ा जमीन से लेवल उठा देते हैं 4 इंच, और उसमें फिर जिस प्रति हेक्टेयर की दर से अच्छा बीज, 4-3 हाइब्रिड है तो 3 केजी, 3.5 केजी अच्छा, और बीज है तो 4 से 5 केजी प्रति हेक्टेयर के दर से बीज को छिटक देते हैं और उसमें पानी का फव्वारा चला कर देते हैं, छिड़काव कर देते हैं, फिर खर पतवार वगैरह जो भी पुआल हल्का सा परत से ढक देते हैं। तीसरे दिन वो बीज अंकुरित हो जाता है, फिर खेत से सारे अवांछनीय जो खर पतवार जिससे ढके हैं हटा के गड्ढे में डाल के पानी डाल के कंपोस्ट खाद बना लेते हैं।
1: जी
0: और खेत में आम विधि से पौध को बढ़ने के लिए नर्सरी का जिस तरह से हल्की सिंचाई करते रहते हैं। और इसके बाद इसमें क्या है कि पारंपरिक विधियों में 20-21 दिन का 22 दिन का पौध तैयार होना चाहिए जो मानव द्वारा श्रमिक द्वारा खेत में रोपाई होता है। इसमें जो है मशीन से पैडी ट्रांसप्लांटर से रोपने के लिए 8 से 10 दिन का ही पौध सीडलिंग्स पर्याप्त होता है। इसमें एक 1.25 फीट का स्क्रैपर होता है, जैसे खुरपी से घास छीला जाता है उस प्रकार से इसमें एक आदत बना ली जाती है और जड़ न कटने पाए, और खेत में जब रोपाई का कार्यक्रम हो तो सीडलिंग्स को नर्सरी के पौध को स्पाट स्पाट में एकदम चकत्ते के रूप में धीरे धीरे उखाड़ लेते हैं।
1: मट्टी के
0: और
1: साथ है?
0: मट्टी थोड़ी बहुत आती है,
1: अच्छा
0: ज्यादा नहीं आती, क्योंकि मिट्टी तो वहां आती है जहां जोताई किया हुआ खेत में नर्सरी पड़ा होता है, इसमें तो जोताई हुआ नहीं है, साफ

0: सुथरा करके नर्सरी पड़ा है तो मिट्टी ज्यादा होती नहीं है।
1: अच्छा।
0: और फिर तैयार खेत में, पडल खेत में, मचाई किए हुए खेत में लेबल करके, जिसमें धान के पौध की रोपाई करना है मशीन से, उसमें ज्यादा पानी न हो, अधिक पानी हो तो खेत से बाहर निकाल देते हैं, प्रयास हो कि कीचड़ युक्त की तरह से पानी खेत में हो, और उसमें पैडी ट्रांसप्लांटर को 6 कतारी या पावर ड्रान 8 कतारी पैडी ट्रांसप्लांटर है खेत में ले जाके खड़ा कर देते हैं, और उसमें एक स्लोप आकार का बोर्ड होता है, मानव द्वारा चालित कतारी में 6 भाग बटे होते हैं उस ढालू बोर्ड पर, उस पर जाके जो नर्सरी से पौध लाते हैं जगह जगह स्पाट का उसके ऊपर से नीचे तक बिछा देते हैं, और फिर सामने श्रमिक के एक हैंडल नीचे होता है, हैंडल को पकड़ करके हैंडल के नीचे एक छड़ होता है बार, उसमें दो दो खूटियां होती हैं, 6 खूटियां होती हैं, मुंह जो है खूटियों का फटा होता है।
1: अच्छा अच्छा।
0: तो इस तरह से 6 खूटियों का मुंह फटा होता है, हैंडल से अटैच है, हैंडल अपने तरह श्रमिक को ऐसे उठा खींचता है और फिर ले जाके सीधा बोर्ड पर जहाँ पौधा रखा है पैडी ट्रांसप्लांटर पर, वहाँ उसको पहुंचाता है, हर खूटी एक पौध पकड़ता है, इतनी जगह ही होती है कि एक से ज्यादा नहीं पकड़ता है।
1: अच्छा,
0: और पुनः नीचे करके ऐसे हैंडल नीचे को ऐसे मिट्टी में गड़ा देता है और वो नीचे जो है पौधे की रोपाई हो जाती है, और एक मानव जो कि चाल होती है खेत में कार्य करने की या धान रोपाई की, उस गति से धीरे धीरे हर कार्य आगे को चला जाता है, इसमें पीछे की तरफ कदम सामने ऑपरेटर ताकता है चलाने वाला पैडी ट्रांसप्लांटर, और पीछे की गति के एक औसत अनुरूप चलता रहता है, और बार बार हैंडल को पकड़ करके खूटियों को पौध पकड़ाता है, फिर नीचे गाड़ता है, इस प्रकार से धान की रोपाई बराबर से 8 से 10 सेंटीमीटर इस प्रकार से जो है लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी जो है 15 से 20 सेंटीमीटर इस प्रकार से होती है, यानी कतार से कतार लगभग 15 से 20 और पौध से पौध 8 से 10 दूरी जो होती है इस प्रकार से, एक हेक्टेयर में एक लगभग एक हेक्टेयर प्रतिदिन प्रति मानव दिवस कार्यकारी 8 से 10 घंटे में 8 से 10 एकड़ खेत की रोपाई संभव हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि जैसे श्रमिक से अगर रोपाई होती है तो श्रमिक की मजदूरी इस समय प्रति मानव दिवस में कम से कम 500 से 600 रुपया इस तरह से खर्च पड़ता है, इस प्रकार से एक हेक्टेयर रोपने के लिए एक श्रमिक जो है अधिक से अधिक 2 बिस्वा खेत रोपता है, तो इस प्रकार से 32 बिस्वा खेत रोपने एक हेक्टेयर में, 80 बिस्वा होता है, और एक हेक्टेयर खेत रोपने के लिए 2 बिस्वा के हिसाब से अधिक श्रमिक लगेंगे, लगभग 40 श्रमिक लगेंगे, ऐसे जोड़ा जाए तो उनकी मजदूरी बहुत बढ़ जाती है।
1: जी जी।
0: और इसको पैडी ट्रांसप्लांटर से रोपाई करने में सिर्फ एक ऑपरेटर रहेगा ट्रेन जो कि ट्रांसप्लांटर को चलाएगा, और इस प्रकार से एक जो है सीडलिंग्स नर्सरी निकालेगा, उखाड़ेगा पौध करके, तो 2 श्रमिक का इसमें लगते हैं और दोनों अपना चेंज हेर फेर कर करके बारी बारी से कोई ऑपरेट कर रहा है, चला रहा है, कोई सीडलिंग्स पौध निकाल रहा है, पहुंचा रहा है पैडी ट्रांसप्लांट, इस प्रकार पूरी रोपाई हो जाती है संभव।
1: अच्छा, तो एकरे बदे कोनो ईंधन की जरूरत ना पड़त?
0: ईंधन की इसमें कोई मानव द्वारा चलित में किसी प्रकार का फ्यूल ईंधन कोई खर्च नहीं है, सिर्फ 2 श्रमिक ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है, एक चलाता है, एक पौधा उखाड़ता है, और इस प्रकार से प्रति मानव कार्यकारी दिवस 8 से 10 घंटे में एक श्रमिक द्वारा लगभग 1 से 1.25 एकड़ खेत की रोपाई संभव हो जाती है, 1 से 1.25 एकड़ खेत की रोपाई।
1: उत्पादन पर अगर का असर पड़ा?
0: उत्पादन पर तो देखिए ऐसा है कि एक तो लाइन से रोपाई करने में इसमें अधिक से अधिक पोषक तत्व तो पौधे बराबर अनुपात में खेत में प्राप्त करते हैं, लाइन से रोपाई करने में निराई गुड़ाई आसान हो जाता है, और सबसे पहले चीज है कि कम खर्च में कम समय में अधिक क्षेत्रफल की रोपाई का काम होता है, उचित तरीके से है, पौधों में बढ़वार विकास होता है, खरपतवार नहीं रहते हैं, लिहाजा फसलें अच्छी होती हैं, उत्पादन में इजाफा होता है, और 20-25% उत्पादन बढ़ जाता है, और जब उत्पादन बढ़ता है फसल अच्छी रहेगी तो क्वालिटी भी उसकी अच्छी रहेगी,
1: गुणवत्ता अच्छी रही होकर,
0: इस प्रकार से जो है इस पैडी ट्रांसप्लांटर का प्रयोग करते हैं मानव द्वारा चलित। ये भारत ये उत्तर प्रदेश सरकार में हमने देखा है और मैंने दिलवाया भी है किसान भाइयों को कुछ जनपदों में कि

0: ये अपने कृषि विभाग द्वारा पहले इस पर सब्सिडी मिलती थी, पहले कीमत बहुत कम थी। पहले तो शुरुआती दौर में जब ये नया रिसर्च होकर आया है, तो इसका रिसर्च कुछ जनपदों में, प्रदेश में मैंने करवाया है। जैसे देश का बहुत अग्रणीय जनपद है, कृषि खेती किसानी में बाराबंकी जनपद है, तो अधिक पैमाने पर कराया है। और इसमें 800-900 रुपए में 500 की सब्सिडी मिलती थी, 450 की, और अब तो दिनों दिन उसकी कीमत लगभग 2-2.5-3 हजार 4 हजार रुपया बढ़ गया होगा। तो उसी हिसाब से हमारी सरकार जो है, और राज्य सरकार और भारत सरकार का दोनों का मिला अंशदान होता है। जो रजिस्टर्ड किसान होते हैं वो सब्सिडी के भागीदार होते हैं, और उसको जो है अपना रजिस्ट्रेशन करा करके और कृषक भाई खरीद के अपनी रसीद आधार कार्ड लगा के सब्सिडी अपने खाते में प्राप्त कर सकते हैं। और कार्य इसके दौरान इसकी मदद से अपनी खेती बाड़ी समय से सुनिश्चित करते हैं, उत्पादन अधिक पाते हैं, आय में वृद्धि होता है,
1: अभी
0: जिससे
1: योजना
0: उनको
1: हो
0: फायदा होता
1: एकर
0: है।
1: लाभ ले सकल
0: ये
1: किसान भाई।
0: योजना अब तो किसान की मांग करने के ऊपर है। प्रत्येक हर प्रदेश में, देश में जो है, ये बराबर कुछ जनपदों का समाचार माध्यम के द्वारा इसमें प्रकाशित होता है कि फला फला जनपद की कोई भी कृषि तकनीकी मशीनरी यंत्र का जो है फला फला डेट में वो रजिस्ट्रेशन होगा। वो ऑनलाइन या कंप्यूटर साइबर पर बैठ के या स्वयं कृषि विभाग के वेबसाइट पर अपने मोबाइल से वो रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, और वो रजिस्टर्ड हो जाते हैं कि हमें ये चीज चाहिए, ये स्ट्रिक कर देते हैं, और ये चीज नहीं चाहिए तो छोड़ देते हैं। और फिर बाद में वो अपना खरीद करके उसी आधार पर कि हम रजिस्टर्ड हैं, कृषि विभाग से लिंक वेबसाइट होता है, उनको जानकारी होती है, प्रपत्र जमा करके फिर छूट का फायदा ले लेते हैं, और यंत्र द्वारा अपनी अच्छी खेती किसानी किसान भाई करते
1: तो
0: हैं।
1: इतर रोपाई तक का बात हो गई। एकरे बाद अगर कोनो तरह का समस्या आवत हो धान में तो का कोनो रोग ऊपर जो लगत हो
0: हाँ
1: ऊपर दवा वगैरह छिड़काव का भी कोनो मशीन यंत्र
0: हाँ
1: हो?
0: दवा छिड़कने के लिए तो बहुत अच्छी अच्छी जो है कृषि यंत्र विकसित हुए हैं। जैसे कि ये प्लांट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट इसको बोलते हैं, छिड़कावकारी यंत्र बोलते हैं, फसल सुरक्षा के छिड़कावकारी यंत्र। जैसे कि किसान जो है, उनकी लैंड कैपेसिटी, होल्डिंग कैपेसिटी क्या है, कितने खेत का मालिक है किसान, उस
1: अच्छा।
0: आधार पर छोटे से छोटे, जैसे कि हाथ द्वारा चालित हैंड स्प्रेयर हो गया, इसके बाद पीठ पर बांध करके एक पावर ड्रॉन बैटरी द्वारा चलता है, नहीं बैटरी खत्म हो गई है तो हाथ से हैंडल से चलाते रहते, ऑपरेट करते रहते हैं, तो बैक पैक या नैपसैक स्प्रेयर हो गया, यह हैंड से अधिक काम करता है। इसके बाद पैर द्वारा चालित जो है फुट स्प्रेयर हो गया, इसकी लंबी नली होती है, कम समय में अधिक क्षेत्रफल में रसायनों का या कीटनाशक का या हर्बिसाइड का या फसलों पर किसी माइक्रो न्यूट्रिएंट पोषक तत्व का छिड़काव करता है, कम समय में अधिक क्षेत्रफल का। इसके बाद अधिक पैस में रोग लग गया है, पावर स्प्रेयर हो गया, इसकी रेंज लंबी होती है, कम समय में अधिक क्षेत्रफल फसलों का तय करता है। फिर बहुत अधिक एरिया में, जिलों में, जनपद में या प्रदेश में लग गया तो सरकार के तरफ से ड्रोन की सुविधा दी जाती है, ड्रोन स्प्रेयर से सामूहिक छिड़काव किया जाता है।
1: जी,
0: तो इस
1: माने
0: प्रकार
1: हर
0: से
1: आवश्यकता बदे जो है यंत्र मौजूद हो।
0: बस जानकारी होना चाहिए और वैसी मांग होनी चाहिए, उस प्रकार से सरकार के द्वारा किसान भाइयों को अधिक से अधिक खेती बाड़ी के लिए नाना प्रकार के उन्नतशील विकसित यंत्रों का इजाद हुआ है, जो छूट के तहत अनुमान कराती है, और वो उचित तरीके से किसान जो जब तक रजिस्टर्ड नहीं होगा वो छूट का के तहत अपना यंत्र नहीं सुलभ कर सकता है बिना रजिस्ट्रेशन के।
1: जी,
0: तो रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, पंजीकरण अनिवार्य है कृषि विभाग से।
1: तो इंजीनियर विनोद कुमार सिंह आप हमारे पंचायती में ही ना, और बड़ी अच्छी जानकारी देना कि कृषि कार्य में जौन आधुनिक कृषि यंत्र हुआ ओकर उपयोग किसान भैया लोग कैसे कर सकना और कैसे जौन हो ओके प्राप्त कर सकना जैसे कि
0: बिल्कुल,
1: उनका उत्पादन बढ़िया हो।
0: यह मुख्य चीज उत्पादन है,
1: जी
0: उत्पादन
1: जी
0: तो
1: तो ये
0: अधिक
1: जानकारी
0: बढ़ाना
1: दे
0: ही है।
1: बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बड़ा नगद के बतकाई कैला जा सुधू भैया, इंजीनियर विनोद कुमार सिंह से बतियला है। और एक और बात कहम
1: भैया
2: कि जीवन खेती बदे बढ़िया यंत्र का बात बतीना है ना कि देखा धीरे धीरे समय बदलत जाए, मजदूर लोगन का भी कमी हुई तो देखा यंत्र आवत जही हैं ओके अपनावे के जरूरत है। तो कितना बढ़िया ये विषय भी रहला कि कृषि कृषि कार्य में अपन उपयोगी आधुनिक कृषि यंत्र का हुआ। तो बात बत कही तो हो गई, अब हम ना भाई मन मन साइन भी करवा देते हैं महेंद्र सिंह यादव और साथी लोग उनका किसानी
1: वायदा भाई मौसम।

0: सत्तू भैया
1: हाँ भैया,
0: भाई मनमन साइन तो देखा बड़ा बढ़िया करवा दिला महेंद्र सिंह यादव और उनके साथी भैया लोगन के गौनई से हैं।
1: बिल्कुल भैया।
0: और हम कही कि चलत चलावत अब काली के जो कार्यक्रम सुनवाई बा पंच भैया लोगन के बताए दो के।
1: बिल्कुल बता देते हैं। तो बिहाने जो 6:05 पर अपन कार्यक्रम होला खेती की बातें ना, उसमें भाई करेला के खेती कैसे करे के है ये विषय पर जानकारी दिए हैं दिनेश कुमार सिंह। और संझा के अपने यही कार्यक्रम कृषि जगत में जो उनकी 6:30 पर होला, उसमें दुधारू पशुअन में होखे वाली जो प्रमुख बीमारी है ओकरी बारे में डॉक्टर साहब से बात बत कही हुई और उनकर का इलाज रही, इहो बतैया डॉक्टर AK प्रसाद और सुधीर कुमार श्रीवास्तव के बात बत कही रही। भैया लोग सुनिए।
0: हम कही कि एक साथी अब चल के मिला हो गए तो पंच भैया लोगों से आज्ञा लेवल जाए तब
1: बिल्कुल लिया जाए। तो
0: पंचो
1: पंचो राम
0: राम
1: राम।
0: राम।

0: or how proudly we wave the national flag. The true respect we offer the Tiranga lies in living by the ideals it represents. Truth over falsehood, duty over comfort, unity over division. Aao pyare veeron aao, desh par bali bali jao, ek saath sab milkar gao, jhanda uncha rahe hamara, vijay vishwa tiranga pyara, jhanda uncha rahe hamara. Jai Hind, Jai Bharat.
1: अंग्रेजी कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे द तिरंगा अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर एवरी इंडियन, इस विषय पर डॉक्टर दिव्या सिंह की वार्ता। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है।
2: आकाशवाणी वाराणसी मीडियम वेव और न्यूज ऑन AIR ऐप पर प्रोग्राम फरमाइश्री गीत एक्सप्रेस AIRVNSFGEXP@gmail.com। जी हाँ श्रोताओ, अब आप मेल के जरिए भी अपनी फरमाइश के फिल्मी गाने सुन सकते हैं। प्रोग्राम फरमाइश्री गीत एक्सप्रेस में आकाशवाणी वाराणसी से हमारा ईमेल आईडी आप नोट कर सकते हैं, यानी इस मेल पर आपको अपनी फरमाइशें हम तक पहुँचानी है AIRVNSFGEXP@gmail.com। तो अब खतों, फोन इन, व्हाट्सएप और SMS के बाद अपनी फरमाइशें हम तक पहुंचाइए मेल के जरिए भी, और सुनिए फरमाइशी गीत एक्सप्रेस प्रोग्राम। तो अब हम हैं आपके साथ हर घड़ी, हर पल और हर प्लेटफॉर्म पर, आकाशवाणी वाराणसी मीडियम वेव और न्यूज ऑन AIR ऐप पर प्रोग्राम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस।

जी हाँ श्रोताओं, सुनते रहिए आकाशवाणी वाराणसी और हमसे जुड़े रहिए। अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने विचार हम तक पहुंचाएं, उन्हें हम पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम में शामिल करेंगे। हमारा ईमेल आईडी है pkld@varanasi.gmail.com। हमारा फेसबुक पेज है ऑल इंडिया रेडियो वाराणसी। ट्विटर हैंडल है @AIR वाराणसी। इसमें ए और वी कैपिटल लेटर्स में है। तो हमें सुनिए, फील कीजिए और लिख भेजिए अपने विचार। मीडियम वेव FM और न्यूज ऑन AIR ऐप पर अब हम हैं आपके साथ हर पल हर घड़ी।

प्रत्येक रविवार को दिन में 1:30 पर प्रसारित होने वाला कार्यक्रम लोक रंग अब व्हाट्सएप पर आधारित होगा, यानी आप कार्यक्रम के आरंभ में बताए हुए कलाकारों के पसंदीदा लोक गीत व्हाट्सएप के जरिए सुन सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर वही है जो फरमाइशी गीत एक्सप्रेस का है। करना सिर्फ ये है कि मैसेज आपको लोक रंग कार्यक्रम में रविवार को दिन में 1:30 से 2 के बीच ही करना है, यानी कार्यक्रम के प्रसारण के दौरान, और बताए हुए कलाकारों से ही अपनी फरमाइशें हमें भेजें। व्हाट्सएप नंबर हमारा है 7905519981, यानी 7905519981। तो अब प्रत्येक रविवार को दिन में 1:30 पर सुनिए फरमाइशी लोक रंग कार्यक्रम व्हाट्सएप पर आधारित, और बने रहिए आकाशवाणी वाराणसी के साथ, हर पल हर घड़ी आपके साथ।

ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम की 7:15 हो रहे हैं। सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं। कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर से प्राप्त सूचना अनुसार रिंकी प्रजापति पुत्री होरीलाल प्रजापति 21 मई 2026 को लगभग 1:35 पर अपने घर से कुछ सामान लेने के लिए निकली और वापस नहीं आई। इनके बारे में जानकारी की बात इस प्रकार है। इनकी उम्र है 21 वर्ष, कद लगभग 5 फीट, चेहरा गोल और इनके बाल काले हैं। ये काला सूट, काले रंग का छीटदार प्लाजो और गुलाबी रंग का दुपट्टा ली हुई हैं। इनके बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी मिलने पर कृपया अपने निकटतम थाना या 9026540606

इस नंबर पर सूचित करें। सुनिए एक और सूचना। कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर से प्राप्त सूचना अनुसार अंजनी कुमारी पत्नी सुशील सिंह भवानीपुर चुनार निवासी 22 मई 2026 सुबह 7 बजे अपने मौसी के घर जाने की बात कहकर घर से निकली और वापस नहीं आई। आसपास के लोगों से और सभी रिश्तेदारों से पूछताछ किया गया पर कुछ पता नहीं लगाया जा सका। इनके बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। इनकी उम्र है 23 वर्ष, कद लगभग 5 फीट, चेहरा गोल, आंखें काली और इनका रंग सांवला है। इनके बाल काले और लंबे हैं और ये हरे रंग की साड़ी पहनी हुई हैं। इनके बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी मिलने पर कृपया अपने निकटतम थाना या 9170485321 इस नंबर पर सूचित करें। सुनिए एक और सूचना। कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर से प्राप्त सूचना अनुसार विशाल पुत्र विनोद सोनगढ़ा निवासी 20 मई 2026 को सुबह घर से गांव के कुछ लोगों के साथ गए और लौटकर वापस नहीं आए। इनके बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। इनकी उम्र है 22 वर्ष, कद 5 फीट, रंग सांवला, चेहरा गोल और विशाल, बोल नहीं सकते हैं। इनके बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी मिलने पर कृपया अपने निकटतम थाना या 6351306701 इस नंबर पर सूचित करें। सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:18 होने को है। थोड़ी ही देर में यानी ठीक 7:20 पर आप हमारे लखनऊ केंद्र से प्रादेशिक समाचार सुनेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सीईओ के चयन के लिए दिया एक महीने का अतिरिक्त समय। धार्मिक समिति के पुनर्गठन और प्रवक्ता की नियुक्ति को दी मंजूरी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों पर व्यक्त की चिंता, कहा युवा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में बाढ़ से बचाव की तैयारियों को परखा, बाढ़ चौकियों को सक्रिय रखने और बीमारियों से बचाव के लिए विशेष

0: विशेष सतर्कता बरतने के दिए निर्देश। और प्रदेश के 10 एथलीट राष्ट्रमंडल खेलों में करेंगे देश का प्रतिनिधित्व। ग्लासगो में कल होगा आयोजन का शुभारंभ। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी, और अब समाचार विस्तार से। अयोध्या के श्री मणिरामदास छावनी में आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में मंदिर प्रबंधन, चढ़ावा व्यवस्था, सीईओ की नियुक्ति, ट्रस्ट के रिक्त पदों और धार्मिक समिति के पुनर्गठन समेत कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। ट्रस्ट के महासचिव कृष्ण मोहन ने बताया कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी के चयन के लिए गठित समिति ने आवेदनों की अधिक संख्या और प्रक्रिया की गंभीरता को देखते हुए 1 महीने का अतिरिक्त समय मांगा था, जिसे ट्रस्ट ने मंजूरी दे दी है। तब तक प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रखने के लिए एक सचिव की नियुक्ति को भी स्वीकृति प्रदान की गई है।
1: एक उपयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी का चयन करने के निमित्त गठन समिति ने भारी संख्या में आवेदन प्राप्त होने से चयन में अधिक समय की आवश्यकता बताते हुए 1 माह का अतिरिक्त समय मांगा है। विषय की गंभीरता और परिस्थितियों को दृष्टिगत करते हुए न्यासी मंडल ने यह अनुरोध स्वीकार किया है। न्यास ने आगामी कालखंड में श्रद्धालुओं की संख्या में संभावित वृद्धि को देखते हुए मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति में इस विलंब के कारण एक सचिव की नियुक्ति की स्वीकृति प्रदान की है।
0: ट्रस्ट ने साफ किया कि राम भक्तों की आस्था पहले की तरह अटूट है और मंदिर में दर्शनार्थियों की संख्या लगातार बनी हुई है। बैठक में चढ़ावा गणना व्यवस्था की भी समीक्षा की गई। मीडिया के माध्यम से नियमित संवाद बनाए रखने के लिए ट्रस्ट ने आधिकारिक प्रवक्ता नियुक्त करने का भी फैसला किया है। ट्रस्ट ने धार्मिक समिति के पुनर्गठन का भी फैसला लिया है। इस समिति की अध्यक्षता स्वामी गोविंद देवगिरी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार युवाओं की भावनाओं और चिंताओं के प्रति संवेदनशील है। नई दिल्ली में आज रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार विद्यार्थियों की आकांक्षाएं पूरी करने और युवा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
2: अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारे छात्रों की हर चिंता को सुनना, उसका समाधान करना, यह हम सबकी जिम्मेदारी।
0: रक्षा मंत्री ने संसद में विपक्ष के हंगामे पर कहा कि सरकार ने प्रत्येक मुद्दे पर सार्थक बहस करने की इच्छा व्यक्त की है, लेकिन विपक्ष सड़कों पर उतरकर मुद्दों को उलझाने का प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के नेतृत्व में आज पार्टी कार्यकर्ताओं ने विपक्ष के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन कल नीट पेपर लीक मुद्दे पर प्रधानमंत्री आवास के बाहर किए गए प्रदर्शन के विरोध में किया गया। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि लोकतंत्र में प्रत्येक राजनीतिक दल को अपनी बात रखने और विरोध दर्ज कराने का अधिकार है, लेकिन देश की संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा बनाए रखना प्रत्येक जनप्रतिनिधि का दायित्व है। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विपक्ष छात्रों के नाम पर राजनीति करने का काम कर रहा है।
3: जो लोग संसद का छात्रों के नाम पर गुमराह करके, घेराव करके अव्यवस्था अराजकता पैदा करना चाहते हैं, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं। ये लोग भारत के लोकतंत्र को चुनौती दे रहे हैं। ये कांग्रेस प्रधानमंत्री जी के आवास को घेरती है, उनकी सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस करती है। कैसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है? आपने कल और परसों के इनके पूरे के पूरे षड्यंत्रों को देखा है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले के विकास कार्यों, बाढ़ बचाव और जल निकासी के तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री ने जल निकासी के प्रबंध पर जोर देते हुए कहा कि जल भराव की समस्या बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग को रोका जाए, ताकि

0: से नाले चौक न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ चौकियां सक्रिय रहें और बाढ़ से प्रभावित होने वाले गांवों में बीमारियों से बचाव के लिए विशेष सतर्कता बरती जाए। इससे पहले मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के बूथ सम्मेलन में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रति पूरी दुनिया की धारणा बदली है। श्री योगी ने कहा कि भाजपा ने सबसे बड़े दल के रूप में सुशासन और लोक कल्याण के नए प्रतिमान स्थापित किए हैं।
1: भारतीय जनता पार्टी ने दुनिया के अंदर एकमात्र एक राजनीतिक दल के रूप में, सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में, मूल्य और आदर्शों पर विश्वास करते हुए सुशासन लोक कल्याण के नए प्रतिमान स्थापित करते हुए दुनिया के लोकतांत्रिक इतिहास में अपनी एक मजबूत उपस्थिति प्रस्तुत की है। दल से बड़ा देश ये केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कह सकता है, कोई अन्य दल का व्यक्ति नहीं कह सकता।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज मेरठ में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के 38वें दीक्षांत समारोह में मेधावियों को पदक प्रदान किए। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालयों का दायित्व केवल शिक्षा देना ही नहीं बल्कि विद्यार्थियों में सही सोच और राष्ट्रहित की भावना विकसित करना भी है। त्रिपुरा के पुलिस महानिदेशक अनुराग धनखड़ का आज बागपत के बड़ौत में अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण भी मौजूद रहे। श्री अरुण ने शोकाकुल परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बधाया। 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी श्री धनखड़ का शव 20 जुलाई को अगरतला स्थित पुलिस मुख्यालय में मिला था। ग्लासगो में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों का कल से शुभारंभ होगा। 2 अगस्त तक चलने वाले इस आयोजन में उत्तर प्रदेश के 10 एथलीट भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इनमें 2 खिलाड़ी पैरा एथलेटिक्स में हिस्सा लेंगे। एक रिपोर्ट।
2: गुलवीर सिंह 5000 मीटर और 10000 मीटर दौड़ में पदक के लिए जोर आजमाइश करेंगे। प्रयागराज के कुलदीप कुमार पोल वॉल्ट और जौनपुर के रोहित यादव भाला फेंक में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। पारुल चौधरी 3000 मीटर स्टेपल चेस और 5000 मीटर दौड़ में भाग लेंगी। वहीं प्रियंका गोस्वामी 10000 मीटर की पैदल चाल और नीरू पाठक 400 मीटर की रिले दौड़ में प्रतिस्पर्धा करेंगी। यूपी पुलिस की अस्मिता डे जूडो और आगरा के आदित्य प्रताप सिंह बॉक्सिंग में दम दिखाएंगे। लखनऊ के श्रियांश त्रिवेदी और भदोही के सागर पैरा एथलीट के रूप में भाग लेंगे। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रदेश में बीते 3-4 दिनों से हो रही बारिश से कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित है। वहीं कई जनपदों में नदियां उफान पर हैं। लखीमपुर खीरी के पलियाकला में शारदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि बाराबंकी में घाघरा नदी भी खतरे के निशान के पास पहुंच गई है। गौतमबुद्ध नगर में हिंडन और यमुना नदी में बाढ़ की आशंका को देखते हुए सिंचाई विभाग और जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। अपर जिलाधिकारी वित्त और राजस्व अजीत कुमार सिंह ने बताया कि जिले में 18 बाढ़ चौकियां और 18 बाढ़ शरणार्थी स्थल बनाए गए हैं। प्रशासन की टीमें सतर्क हैं और जल भराव वाले इलाकों में सहायता पहुंचाई जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक कल से 25 जुलाई के बीच प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा का दौर जारी रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सीईओ के चयन के लिए दिया 1 महीने का अतिरिक्त समय। धार्मिक समिति के पुनर्गठन और प्रवक्ता की नियुक्ति को दी मंजूरी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों पर व्यक्त की चिंता, कहा युवा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में बाढ़ से बचाव की तैयारियों को परखा। बाढ़ चौकियों को सक्रिय रखने और बीमारियों से बचाव के लिए विशेष सतर्कता बरतने के दिए निर्देश। और प्रदेश के 10 एथलीट राष्ट्रमंडल खेलों में करेंगे देश का प्रतिनिधित्व। ग्लासगो में कल होगा आयोजन का शुभारंभ। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: स्वामी विवेकानंद।

0: अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।
1: मीडियम वेव के मीटर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंग। रसरंग कार्यक्रम में सुनिए बाजीगर फिल्म का ये गीत, आवाज है विनोद राठौर की।

विनोद राठौर की आवाज़ में आप सुन रहे थे बाजीगर फिल्म का गीत। इस गीत को लिखा रानी मलिक ने और धुन तैयार किया अनु मलिक ने। अलका याग्निक और कुमार सानू की युगल आवाज़ों में सुनिए यस बॉस फिल्म का ये गीत। इस गीत को लिखा जावेद अख्तर ने और धुन तैयार किया जतिन ललित ने।

सानू की मिलीजुली आवाजों में। अब सुनिए उदित नारायण और अलका याग्निक की मिलीजुली आवाजों में जोश फिल्म का ये गीत। इस गीत को लिखा समीर ने और धुन तैयार किया अनु मलिक ने।

जोश फिल्म का गीत आप सुन रहे थे उदित नारायण और अलका याग्निक की युगल आवाजों में। के एस चित्रा और शान की मिलीजुली आवाजों में सुनिए मैं प्रेम की दीवानी हूं इस फिल्म का गीत। इस गीत को लिखा देव कोहली ने और धुन तैयार किया अनु मलिक ने।

मैं प्रेम की दीवानी हूँ। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे के एस चित्रा और शान की मिलीजुली आवाजों में। अब आइए सुने कृष्णा कॉटेज फिल्म का गीत श्रेया घोषाल की आवाज में। इस गीत को लिखा नीलेश मिश्रा ने और धुन तैयार किया अनु मलिक ने।

कृष्णा कॉटेज फिल्म के इस गीत के साथ ही रसरंग कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम ठीक 8 बजे आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

ये आकाशवाणी है। अब आप जागृति शर्मा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा, लेखक हैं यूनिवार्ता के वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद आजाद। नीट पेपर लीक और विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में विपक्षी दलों के हंगामे के कारण लोकसभा में आज भी प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सका और सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में आज कहा कि सरकार नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। चर्चा किस नियम के अंतर्गत होगी और कितनी देर होनी चाहिए, ये बातचीत में तय होगा। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं के लिए सार्थक चर्चा हो, इसके लिए सरकार तैयार है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी को महिला सांसदों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के आरोप में मानसून सत्र की शेष

अवधि से निलंबित किया गया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद तेनेटी ने दो बार स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही शुरू की और हंगामे के बीच जरूरी कागजात सदन के पटल पर रखवाया। इसके बाद उन्होंने कहा कि श्री कल्याण बनर्जी के खिलाफ महिला सांसदों की ओर से महिला सांसदों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी किए जाने की लिखित शिकायत मिली है। संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रस्ताव किया कि महिला सांसदों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में श्री कल्याण बनर्जी को सत्र की शेष अवधि से निलंबित किया जाए, जिसे सदन ने ध्वनिमत से स्वीकार कर लिया। श्री तेनेटी ने प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद श्री बनर्जी को सदन से बाहर जाने का आग्रह किया और सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों के सदस्यों ने कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने इन मुद्दों को लेकर हंगामा शुरू कर दिया, जिससे कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे शुरू होते ही विपक्षी दल हंगामा करने लगे और कुछ सदस्य सदन के बीचों बीच आ गए। कई विपक्षी सदस्य नीट के विरोध में नारे लिखी तख्तियां लिए हुए थे। कांग्रेस सदस्य विरोध स्वरूप काले कपड़े पहने थे। इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल को बोलने की अनुमति दी। श्री वेणुगोपाल ने कहा कि जिस तरीके से विपक्षी दलों और विद्यार्थियों के साथ पुलिस व्यवहार कर रही है वह बहुत अनुचित है। उनकी मांग है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, इसके बाद सदन में पेपर लीक मुद्दे पर विस्तृत चर्चा कराई जाए। अगर सरकार उनकी मांग स्वीकार करती है तो वे चर्चा के लिए तैयार हैं। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने कहा कि पेपर लीक मुद्दा कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का नहीं है, ये सभी लोगों से जुड़ा मसला है। इसके लिए सभी राजनीतिक दल लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के साथ पुलिस ने बर्बरता की, बेटियों के कपड़े फाड़े गए। श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री सदन से बाहर नीट मुद्दे पर बयान दे सकते हैं, सदन में आकर इस मसले पर क्यों नहीं बोल सकते। इसके बाद श्री ओम बिरला ने कहा कि कब चर्चा करनी है, कितनी देर चर्चा करनी है, ये बातचीत के दौरान तय होगा। सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है, विपक्षी सदस्य अपने अपने स्थानों पर जाएं और कार्यवाही चलने दें। श्री बिरला की अपील का विपक्षी सदस्यों पर कोई असर नहीं हुआ और हंगामा जारी रहा। हंगामा जारी रहने पर अध्यक्ष ने कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक स्थगित कर दी। इससे पहले सुबह 11 बजे श्री बिरला ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू करने की घोषणा की, उससे पहले ही विपक्षी सदस्य अपने सीटों पर खड़े होकर हंगामा करने लगे। श्री बिरला ने सदस्यों से शोर शराबा नहीं करने का आग्रह किया, लेकिन सदस्य उनकी बात पर ध्यान दिए बिना और नारे लगाते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। अध्यक्ष ने सदस्यों से सदन चलने देने का आग्रह करते हुए कहा कि आप प्रश्नकाल चलने दीजिए, प्रश्नकाल के बाद जिन विषयों पर नोटिस आए हैं उन सब पर चर्चा कराई जाएगी, लेकिन ये सब प्रश्नकाल के बाद ही संभव होगा। मैं आपके मुद्दे पर चर्चा देने के लिए तैयार हूं। उन्होंने कहा कि सदस्य सदन नहीं चलाना चाहते हैं, ये अच्छा संदेश नहीं है। उनकी किसी बात पर जब सदस्यों ने ध्यान नहीं दिया तो श्री बिरला ने सदन की कार्यवाही 1 मिनट के भीतर ही 12 बजे तक स्थगित कर दी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका उद्देश्य देश भर में चिन्हित अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में सामुदायिक अवसंरचना का सृजन करना है। इस योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, महिला केंद्रित पहलों, पेयजल, स्वच्छता, खेल, नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन, पशुपालन तथा अन्य सामुदायिक अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में परियोजनाओं को सहायता प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि पीएमजेवी के एक मांग आधारित योजना है और इस योजना के अंतर्गत निधियों का राज्यवार आवंटन नहीं किया जाता है। योजना के अंतर्गत अनुमोदित पात्र परियोजनाओं के लिए निधियां जारी की जाती हैं। विगत 5 वर्षों के दौरान पीएमजेवीके के अंतर्गत तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में कोई परियोजना स्वीकृत नहीं की गई है। इस अवधि के दौरान जिले के लिए न तो कोई निधि आवंटित या जारी की गई है और न ही योजना के अंतर्गत जिसे कोई कार्य किया गया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ एल मुर्गुन ने एक लिखित जवाब में कहा कि सरकार ने डिजिटल मीडिया पर समाचार और समसामयिक मामलों के प्रकाशकों और ओटीटी प्लेटफॉर्म के प्रकाशकों के लिए एक संस्थागत तंत्र स्थापित करने के लिए आईटी अधिनियम 2000 के तहत 25 फरवरी 2021 को सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 अधिसूचित किए गए हैं। इन नियमों के भाग 3 में डिजिटल समाचार प्रकाशकों और ओटीटी प्लेटफॉर्म के प्रकाशकों के लिए एक आचार संहिता का प्रावधान है।
शिकायतों का निपटान आईटी नियम 2021 के प्रावधान

प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 79(3)(ख) अवैध सामग्री को हटाने या उस तक पहुंच को अक्षम करने के लिए मध्यस्थों को अधिसूचना का प्रावधान करती है। उन्होंने कहा कि शिकायतों के आधार पर सरकार ऐसे मध्यस्थों और ओटीटी प्लेटफॉर्म के खिलाफ नियमित रूप से कार्रवाई करती है। सरकार ने पिछले 2 वर्षों में अश्लील सामग्री प्रदर्शित करने

देशों में अश्लील सामग्री प्रदर्शित करने और आईटी अधिनियम की धारा 67 और 67 क, भारतीय न्याय संहिता की धारा 294 और स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की धारा 4 के उल्लंघन के लिए भारत में 50 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को सार्वजनिक पहुंच से प्रतिबंधित कर दिया है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक है पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज भी नीट प्रश्नपत्र लीक मामले और इसके विरोध में दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर लगातार तीसरे दिन गतिरोध जारी रहा। हंगामे के बीच जहां सरकार ने कहा कि वह नीट प्रश्नपत्र लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है, वहीं विपक्ष इस चर्चा को नियम 267 के तहत कराने की मांग पर अड़ा रहा। विपक्ष ने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ही इस विषय पर चर्चा हो सकती है। इस मुद्दे पर हंगामे के बीच उच्च सदन की कार्यवाही 3 बार बाधित होने के बाद अपराह्न 3 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के कारण आज भी उच्च सदन में शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। सुबह 11 बजे जब सदन की बैठक शुरू हुई तो सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सिक्किम में तीस्ता नदी पर सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनएचपीसी की निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना की सुरंग में हुए हादसे में 20 लोगों की मौत की जानकारी दी। सदस्यों ने इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के सम्मान में कुछ क्षण का मौन रखा। श्री राधाकृष्णन ने सदन को भारत में स्वदेश में विकसित पहली हाइड्रोजन ईंधन से संचालित रेलगाड़ी के परिचालन शुरू होने की भी जानकारी दी और इसे स्वच्छ, टिकाऊ तथा तकनीकी रूप से उन्नत रेल परिवहन की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि सदन इस उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री, रेल मंत्री और रेल अधिकारियों को बधाई देता है। बाद में विपक्षी सदस्यों ने अपने अपने मुद्दे उठाने चाहे। सभापति ने सदन में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। उनकी बात शुरू होते ही सत्ता पक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। इसके जवाब में विपक्षी सदस्यों ने भी नारेबाजी शुरू कर दी। श्री खड़गे ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया और उन्हें तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। उन्होंने कहा कि सोमवार को छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई से उन्हें बेहद पीड़ा हुई है। छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस के अधिकतर सांसद काली शर्ट और काला कुर्ता पहनकर सदन पहुंचे। श्री खड़गे की बाह में काले रंग की पट्टी बंधी हुई थी। हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद जब बैठक 12 बजे फिर शुरू हुई तब उपसभापति हरिवंश ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन विपक्षी सदस्य प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के विरोध में हंगामा करने लगे। श्री हरिवंश ने सदस्यों को शांत रहने की अपील करते हुए कहा कि ये प्रश्नकाल है। आजादी के 50 वर्ष पूरे होने पर सदन में यह संकल्प लिया गया था कि किसी भी हालत में प्रश्नकाल और शून्यकाल चलाया जाएगा। अगर सदन अपनी बात पर कायम नहीं रहता है तो जनता के बीच क्या संदेश जाएगा। उन्होंने कहा कि सवालों के जवाब तैयार करने में कितना समय और जनता का धन लगता है, इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उन्होंने अपील की कि कृपया प्रश्नकाल चलने दें, अपनी बात का असर न होते देख श्री हरिवंश ने 1 मिनट के भीतर ही बैठक दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने कार्यवाही को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्य छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे को लेकर हंगामा करने लगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट पेपर लीक सहित हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और आसन की व्यवस्था मिलने पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार युवाओं और छात्रों के भविष्य के लिए नीट परीक्षा से जुड़े विषय पर चर्चा के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। सरकार ने एक एक करके जो भी कदम उठाए हैं उन्हें देश के सामने रखना हमारा दायित्व है। श्री रिजिजू ने कहा कि उन्होंने कई दलों के सदस्यों से बात की है और वे सभी चर्चा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पहले तो चर्चा की मांग करती है और फिर नारेबाजी करके सदन को बाधित करती है, जो ठीक नहीं है। श्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट पेपर लीक पर चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है, हमने पहले दिन से बात कही है, लेकिन चर्चा नियम के तहत होती है। चर्चा कब होनी है, कितनी लंबी होनी है और किस नियम के तहत होनी है, इसका निर्णय सभापति सभी दलों के नेताओं से बात करने के बाद लेंगे।

0: सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्षी सदस्यों के आचरण की निंदा करते हुए कहा कि सरकार हर अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। श्री नड्डा ने कहा विपक्ष की ओर इंगित करते हुए कहा कि ये इंडी गठबंधन का व्यवहार बहुत गैर जिम्मेदाराना है। यह प्रजातांत्रिक विरोधी गतिविधि साफ साफ संसद में दिख रही है। विपक्ष संसद की मर्यादाओं को तार तार करके प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन कर रहा है। सदन के नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार एक पारदर्शी और लोगों के हित में फैसले करने वाली सरकार है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की जो जन विरोधी गतिविधियां चल रही हैं, वे उसकी कड़ी भर्त्सना करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष का प्रजातांत्रिक व्यवस्था और उसके मूल्यों में कोई विश्वास नहीं है। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्षी सदस्य नियम 267 के तहत चर्चा करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि चर्चा तब तक संभव नहीं है जब तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं दे देते। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि पिछले चार दशकों में राज्यसभा में नियम 267 का इस्तेमाल दुर्लभतम मामलों में हुआ है। द्रमुक सदस्य तिरुचि शिवा ने सवाल किया कि दुर्लभतम मामला क्या होता है। उन्होंने कहा कि विपक्ष जिस मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा है वह दुर्लभतम ही है। इस दौरान सदन में हंगामा तेज हो गया और उपसभापति हरिवंश ने बैठक अपराह्न 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 3 बार के स्थगन के बाद अपराह्न 3 बजे बैठक शुरू होने पर सदन में नीट प्रश्न पत्र लीक मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। इस बीच आसन की अनुमति से संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कांग्रेस ने चर्चा की मांग की थी, सरकार चर्चा के लिए तैयार है, अब विपक्षी सदस्य शर्त रखकर चर्चा टालने की कोशिश कर रहे हैं। उच्च सदन में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आपने कहा है कि नियम 267 का उपयोग दुर्लभतम मामलों में किया जाता है। जो घटना हुई है उससे अधिक दुर्लभ से दुर्लभतम मामला भला और क्या हो सकता है। बच्चों पर बल प्रयोग किया गया है। इसी दौरान विपक्षी सदस्यों ने हंगामा तेज कर दिया और उपसभापति हरिवंश ने सदन में व्यवस्था बनते न देख बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। राज्यसभा की कार्यवाही संचालन संबंधी नियम 267 के तहत सभापति की अनुमति से कोई सदस्य अत्यंत महत्वपूर्ण जनहित के किसी विषय पर चर्चा। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:15 होने को हैं। कुछ ही पलों में हम हाजिर होंगे रसमाधुरी कार्यक्रम के साथ।

नमस्कार, आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आज की ये सुरमई महफिल समर्पित है उस आवाज़ को जो सीधे दिल से निकलकर दिलों तक पहुंची। एक ऐसी आवाज़ जिसमें दर्द भी था, अपनापन भी था और सच्ची भावनाओं की गहराई भी। हम बात कर रहे हैं महान पार्श्व गायक मुकेश जी की।

मुकेश जी ने अपने गीतों से प्यार, बिछड़न, उम्मीद और जीवन के हर एहसास को सुरों में पिरो दिया। उनकी गायकी की सबसे बड़ी खूबी यही थी कि वो गीत गाते नहीं थे, बल्कि उन्हें जीते थे।

पार्श्व गायक मुकेश की आवाज की सबसे बड़ी खूबी यही थी कि वह अभिनय नहीं करती थी, बल्कि हर एहसास को सच्चाई के साथ जीती थी। शायद इसीलिए उनके गीत आज भी उतने ही ताजा लगते हैं जितने अपने दौर में थे। कहा जाता है कि जब राज कपूर पर्दे पर होते थे और पीछे से मुकेश की आवाज सुनाई देती थी, तो लगता था मानो दोनों एक ही आत्मा के दो रूप हों। यह जोड़ी भारतीय सिनेमा की सबसे यादगार जोड़ियों में से एक रही। आइए सुनते हैं ये अगला सदाबहार नगमा।

पार्श्व गायक मुकेश की गायकी हमें सिखाती है कि सच्ची भावनाओं को किसी बनावट की जरूरत नहीं होती, उनके सादगी ही उनकी सबसे बड़ी पहचान थी।

समय बदल गया, संगीत का अंदाज भी बदल गया, लेकिन कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो कभी पुरानी नहीं होती। मुकेश जी की आवाज़ भी उन्हीं अनमोल आवाज़ों में से एक है जिसे हर पीढ़ी उतने ही प्यार से सुनती है।

जब दिल अपनी बात शब्दों से नहीं कह पाता, तब मुकेश की आवाज़ उसे अपनी आवाज़ दे देती है। इनकी गायकी ने साबित किया कि सादगी में भी बेमिसाल जादू होता है।

27 अगस्त 1976 को मुकेश जी इस दुनिया से विदा हो गए, लेकिन उनकी आवाज़ कभी हमसे दूर नहीं हुई। जब भी दिल उदास होता है या यादों की कोई खिड़की खुलती है तो कहीं ना कहीं मुकेश जी का कोई गीत ज़रूर सुनाई देता है। वो कहते हैं ना, आवाज़ें कभी नहीं मरती, वो समय की सरहदों को पार कर अमर हो जाती हैं। मुकेश जी की आवाज़ भी ऐसी ही एक अमर विरासत है।

इस गीत के साथ ही रसमाधुरी कार्यक्रम संपन्न करने की दीजिए इजाजत। नमस्कार। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:45 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या सुनेंगे। कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इसकी नींव बनना चाहिए। सरकार संसद में नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार। युवाओं के विरोध प्रदर्शनों का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने की आलोचना की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित। विपक्ष ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, बेहतर रेल सुरक्षा, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीक के कारण रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की और चीन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में।

0: और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इस परिकल्पना की नींव बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबद्ध क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने युवाओं में मादक पदार्थों के सेवन की गंभीर समस्या से निपटने के महत्व पर भी बल दिया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी को मॉनसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणी की।
1: आज श्री कल्याण बनर्जी ने हमारी महिला सांसदों के साथ असंसदीय भाषा एवं असंसदीय टिप्पणियां की है, जिसकी लिखित शिकायत माननीय अध्यक्ष जी को प्राप्त हुआ है। ये सदन की गरिमा के विरुद्ध है।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
2: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
0: राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए। सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्ष के आचरण की कड़ी निंदा करते हुए इसे अत्यधिक गैर जिम्मेदाराना और लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध बताया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मॉनसून सत्र के लगातार तीसरे दिन विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित होती रही। व्यवधान के कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सका। दोनों सदनों में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं चल सका। सरकार की ओर से बार बार यह आश्वासन दिए जाने के बावजूद कि वह नीट पेपर लीक मामले से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष ने अपना विरोध जारी रखा। आज लोकसभा की कार्यवाही 3 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 4 बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि उन्होंने दोनों पक्षों के विचार सुने हैं और सरकार खुले मन से चर्चा करने के लिए तैयार है। उन्होंने विपक्षी दलों से कार्यवाही बाधित करने के बजाय विस्तृत चर्चा में भाग लेने का आग्रह किया। अनुपम मित्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं की भावनाओं और चिंताओं के प्रति संवेदनशील है।
4: यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारे छात्रों की हर चिंता को सुनना, उसका समाधान करना, यह हम सबकी जिम्मेदारी है।
0: उधर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि छात्रों का संघर्ष वास्तविक है और वे बदलाव की मांग कर रहे हैं।
5: हम जनरल मोशन मांग रहे हैं ताकि ठीक से डिस्कशन हो। आप 8 घंटे के लिए वंदे मातरम डिस्कस कर सकते हैं, तो आप लंबे समय के लिए ठीक ढंग से और जनरल मोशन पे ये इशू भी डिस्कस कर सकते हैं।
0: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कहा है कि सरकार से नीट परीक्षा लीक मामले पर युवा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करने का आश्वासन मिलने पर वे अपना अनशन समाप्त कर देंगे। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह को लिखे पत्र में श्री वांगचुक ने कल रात अस्पताल में उनसे मिलने के लिए दोनों मंत्रियों का आभार व्यक्त किया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। सरकार ने दिल्ली में विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों के मरने के सोशल मीडिया के दावों का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य

0: जांच इकाई ने इन दावों को असत्य बताया है। दिल्ली पुलिस ने पुष्टि की है कि प्रदर्शन के दौरान किसी की मौत होने की कोई खबर नहीं है। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी स्टेशन अब यात्रियों के लिए खुल गए हैं। इससे पहले दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सुरक्षा कारणों से 17 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेल सुरक्षा में सुधार, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। लोकसभा में आज एक लिखित प्रश्न के उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि वर्ष 2014-15 में हुई 135 रेल घटनाओं की संख्या घटकर इस वित्त वर्ष में अब तक केवल 2 रह गई है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा संबंधी गतिविधियों पर व्यय 2013-14 में लगभग 39,000 करोड़ रूपये से बढ़कर 2026-27 में 1,20,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। पिछले 2 वर्षों में सरकार ने अश्लील सामग्री प्रदर्शित करने के आरोप में देश भर में 50 ओटीटी प्लेटफॉर्म को सार्वजनिक पहुंच से बाहर कर दिया है। लोकसभा में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुर्गुन ने कहा कि सरकार शिकायतों के आधार पर ऐसे मध्यस्थों और ओटीटी प्लेटफॉर्म के खिलाफ नियमित रूप से कार्रवाई करती है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में तोतापुरी आमों की खेती, प्रसंस्करण और विपणन प्रणाली में व्यापक सुधार के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश तीनों राज्यों में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की आय में लगातार हो रही गिरावट की शिकायतों के मद्देनजर जारी किए गए हैं। अयोध्या में आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की हुई बैठक में मंदिर प्रबंधन, दान प्रणाली, मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति, ट्रस्ट में रिक्त पद भरने और धार्मिक समिति के पुनर्गठन से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ट्रस्ट ने कहा कि श्रद्धालुओं की आस्था पहले की तरह ही अडिग है और मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या स्थिर है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 7वें वेतन आयोग का गठन कर दिया है। आयोग राज्य सरकार और सरकारी सहायता प्राप्त संगठनों के कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों के वेतन, भत्ते, पदोन्नति और पेंशन से संबंधित संशोधनों की सिफारिश करेगा। आयोग अगले 6 महीनों के भीतर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। छत्तीसगढ़ में अब अग्निवीर सैनिकों को पुलिस विभाग में आरक्षक, वन विभाग में वनरक्षक और जेल विभाग में प्रहरी की सीधी भर्ती में 10% आरक्षण मिलेगा। इसका लाभ उन अग्निवीरों को मिलेगा जो 4 वर्ष की सेवा पूरी कर वैध सेवा प्रमाण पत्र के साथ सेवामुक्त हुए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। कल हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा और राजस्थान में भी तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में भी इसी तरह के मौसम की स्थिति बने रहने का अनुमान है। सिक्किम के नामची जिले के समरदुंग स्थित सुरंग में बचाव दल ने 8 और शव बरामद किए हैं। अब तक 13 शव बरामद किए जा चुके हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: नामची जिले के NSPC की टनल के अंदर फंसे लोगों को बचाने के लिए आज तीसरे दिन भी रेस्क्यू दल काम कर रही है। कम विजिबिलिटी और मीथेन गैस के लीकेज के वजह से शवों को निकालना मुश्किल हो गया है। इस बीच सिक्किम सरकार ने मरने वालों के पार्थिव शरीर उनके परिवारों को सौंप दिए है। केंद्र सरकार के अलावा सिक्किम सरकार और NSPC ने मरने वालों के परिवारों को मुआवजा देने का ऐलान किया है। घटना के समय टनल के अंदर कम से कम 25 लोगों के फंसे होने की आशंका है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
0: कश्मीर में आज अनंतनाग जिले के लालचौक इलाके में आतंकी हमले में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। हमले के बाद सुरक्षा बलों का पूरे इलाके में तलाशी अभियान जारी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मृतक पुलिसकर्मी को श्रद्धांजलि देते हुए दोषियों को सजा दिलाने का आश्वासन दिया है। भारतीय नौसेना ने कर्नाटक के कारवार में स्वदेशी रूप से निर्मित माहे श्रेणी का एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट INS मालवन को शामिल किया है। ये नौका जलमग्न निगरानी, पनडुब्बी रोधी युद्ध अभियानों और कम तीव्रता वाले समुद्री अभियानों के साथ साथ बारूदी सुरंगों को नष्ट करने की क्षमता से लैस

0: 80% से अधिक स्वदेशी घटकों से निर्मित ये नौका आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को बल देती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तरी मैसेडोनिया में आज स्कोपिया शहर के संग्रहालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि संघर्ष, असहिष्णुता और विभाजन से जूझ रही दुनिया में गांधी जी के संवाद, करुणा और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के आदर्श अत्यंत प्रासंगिक बने हुए हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठकों के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचावास के से मुलाकात की। श्री सोनोवाल ने कहा कि दोनों देश बेहतर भविष्य के लिए परस्पर संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। चीन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने हमवतन उन्नति हुड्डा को हराया, वहीं आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अलवी फरहान को शिकस्त दी। इस बीच पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन का मुकाबला जापान के युशी तनाका से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लक्ष्य सेन ने पहला गेम अपने नाम कर लिया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल।
1: बम्बे शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.9% के नुकसान से 715 अंक लुढ़क कर 76,755 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.8% की गिरावट से 191 अंक गिरकर 23,996 के स्तर पर बंद हुआ। एनएसई मिड कैप सूचकांक में 1% से अधिक और स्मॉल कैप सूचकांक में 1.5% से अधिक की गिरावट दर्ज हुई। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 33 पैसे के नुकसान से 96.57 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर रहा।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 61 वर्ष करने पर विचार करने का निर्देश दिया। न्यायालय की पीठ ने पूरे देश में जिला न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु को 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की समान मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इसकी नींव बनाना चाहिए। सरकार संसद में नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार। युवाओं के विरोध प्रदर्शनों का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने की आलोचना की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित। विपक्ष ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा। मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls for making the dream of Viksit Bharat a mass movement with youth playing a key role in it. Government reiterates readiness for meaningful discussion on NEET paper leak issue. In Parliament, criticizes attempts to use youth protests for political gains. Opposition disrupts proceedings in both houses, demands resignation of the Education Minister before discussion. Delhi High Court seeks responses from centre and police on pleas alleging use of excessive force on protesters during Parliament March. Railway Minister Ashwini Vaishnav says train accidents decline sharply with improved rail safety, infrastructure maintenance and use of modern technologies. The US blames Iran for the naval blockade against Saudi Arabia in the Red Sea by Yemen's Houthi group. And in China Open badminton, PV Sindhu and Ayush Shetty enter singles pre-quarterfinals. Prime Minister Narendra Modi has emphasized that the dream to build a Viksit Bharat should become a Jan Andolan and the country's youth should form the foundation of this vision. He said the welfare of citizens must

किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने पार्लियामेंट मार्च के दौरान मुजाहिरीन पर मुबैना तौर पर ज्यादा ताकत का इस्तेमाल करने से मुतालिक दरखास्तों पर मरकज और पुलिस से जवाब तलब किए हैं। और चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।

0: चर्चा का विषय है।
1: ये आकाशवाणी है।
2: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 9:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है गैर फिल्मी गीत और गजलों का कार्यक्रम अंजुमन।

हमारे पास मालो मताए दुनिया में से तो कोई चीज नहीं है जो आइंदा तुम्हारे काम आए, लेकिन हमारा सरमाया नाज कानून जबान है, जिस पर हमारी जिंदगी और इज्जत का दारोमदार रहा है, जिसने हमें खाके मजिल्लत से आसमान शोहरत पर पहुंचा दिया। उस दौलत के आगे हम सल्तनत आलम को हैच समझते रहे। तुमको भी अपने तरके में यही दौलत देते हैं। नाम है खस्ता हो आवारा हो बदनाम मेरे, एक आलम ने गरज मुझको कहा क्या क्या कुछ। एक महरूम चले मीर हमी आलम से, वरना आलम को जमाने ने दिया क्या क्या कुछ।

अभी आप सुन रहे थे अंजुमन कार्यक्रम में रूप कुमार राठौर की गाई ये गजल, और अब आइए सुनते हैं चंदन दास की गाई गजल।

आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से आप सुन रहे हैं गैर फिल्मी गीत और गजलों का कार्यक्रम अंजुमन। सुनिए भूपिंदर सिंह और मिताली सिंह की गाई ये गजल।

0: इस गज़ल के साथ ही गैर फिल्मी गीत और गज़लों का कार्यक्रम अंजुमन अब यहीं संपन्न होता है।
1: स्वास्थ्य फोनिंग कार्यक्रम आरोग्य में इस बार दिनांक 26 जुलाई 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम में आप सुनेंगे जानकारी इनफर्टिलिटी यानी संतानता पर, जिसके रिकॉर्डिंग के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं गुरुवार 23 जुलाई 2026 को प्रातः 10 बजे से 11 बजे के बीच। विषय विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर श्रुति उपाध्याय और हमारा फोन नंबर है 222-1052। वाराणसी का एसटीडी कोड है 0542। तो जरूर फोन करें और सुनते रहें कार्यक्रम आरोग्य।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बज रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम वट वृक्ष। वट वृक्ष कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिए वृद्धावस्था में मानसिक समस्याएं, इस विषय पर डॉक्टर लक्ष्मण जी यादव से चंदन सिंह की बातचीत।
3: श्रोताओं नमस्कार, आकाशवाणी वाराणसी से मैं चंदन सिंह आप सभी का कार्यक्रम वट वृक्ष में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। श्रोताओं, वृद्धावस्था एक ऐसी अवस्था है जहां एक व्यक्ति तमाम तरह की परेशानियों से जूझ रहा होता है, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो। ये परेशानियां अक्सर ही एक वृद्ध को चिंतित करती हैं। आज के कार्यक्रम में हम वृद्धों के मानसिक समस्याओं से संबंधित चर्चा करेंगे और इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर लक्ष्मण जी यादव। आप एक मनोचिकित्सक हैं। सर, हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
4: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
3: सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा सर कि जो वृद्धावस्था होती है, जो हमारे बुजुर्ग हैं उनमें जो तमाम तरह की समस्याएं होती हैं, उसमें एक समस्या जो मानसिक है वो कौन कौन सी है या क्या है और उसका जो है मुख्य कारण क्या है?
4: देखिए, बहुत कॉमन समस्या है आज के टाइम पे, वो है तनाव
3: जी,
4: स्ट्रेस जिसको हम कहते हैं। कारण पे हम बाद में आएंगे। इसके अलावा डिप्रेशन, अवसाद जिसको हम कहते हैं, उसके अलावा चिंता है, डिमेंशिया एक बहुत न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है लेकिन ये बहुत युवाओं में कॉमन है, अल्जाइमर्स की प्रॉब्लम, इसमें भूलने की समस्या हम कहते हैं
3: बुजुर्गों में।
4: हाँ जी, भूलते हैं लोग जल्दी। उसके अलावा अकेलेपन की बीमारी
3: जी,
4: ये कुछ एक समस्याएं जो मुख्य रूप से देखने को, वैसे तो बहुत सारी हैं बट ये आमतौर पे ज्यादातर ये चीजें देखने को मिलती है। इसमें खासकर भ्रम की बीमारी भी हो जाती है जिसमें हम साइकोसिस की बात करते हैं, तो वो भी एक समस्या देखने को मिलती है
3: जी।
4: तो ये कुछ एक समस्याएं हैं जो बुजुर्गों में देखने को मिलती है। गुस्सा देखेंगे, इरिटेबिलिटी रहती है उनमें, चिड़चिड़ापन, छोटी-छोटी बातों पे बहुत जल्दी वो बुरा मान जाते हैं, इम्पल्सिविटी जिसको हम कहते हैं
3: जी,
4: तो इम्पल्सिव क्षणिक वो गुस्सा थोड़ी देर के लिए रहता है।

0: ये कुछ एक समस्याएं हैं जो हमारे बुजुर्गों में होती हैं।
1: जी, और अगर इनके कारण की हम बात करें तो सर, इन समस्याओं के पीछे कारण आप क्या देखते हैं?
0: देखिए, जब आदमी बुजुर्ग हो रहा होता है तो जाहिर सी बात है कि उसकी शारीरिक क्षमता कम हो रही होती है, और कई बार मन की बात करते हैं तो जो मानसिक स्तर पे तो कम नहीं होती है, लेकिन वो शारीरिक रूप से जब कमजोर होते हैं तो उसका सीधा असर उनके मन पे पड़ता है। तो उसमें देखिए, एक होता है ना सामाजिक अलगाव, एक समाज में रहते थे पहले, रिटायर हो गए, अब घर में रह रहे हैं, तो एक जो कट ऑफ हो जाता है लोगों के बीच में, और एक भाव नहीं मिलता उनको परिवार में, अरे आपको क्या मालूम। मैं बहुत एक जो स्तर, छोटे स्तर से बात कर रहे हैं, परिवार में उनको एक इम्पोर्टेंस नहीं मिलता, कई बार वो खुद भी उनको लगता है कि एक सेल्फ में आता है कि अब मैं किसी काम का नहीं हूं, काइंड ऑफ रिटायर हो चुका हूं, तो उनको ये लगता है कि अब मैं आर्थिक निर्भरता आ जाएगी, कई बार लगेगा कि अकेले रह रहे उनको कोई भाव नहीं दे रहा है परिवार में, या उनका कोई सदुपयोग नहीं है उस परिवार में, अकेलापन। उसके बाद जो होता है कि लगता है कि वो डिपेंडेंट, एक बोझ बनते जा रहे हैं घर के ऊपर, उनके मन में ऐसा चलता है
1: जी।
0: और कई बार ये रहता है कि वो एज हो रहे हैं तो उनके साथी जो होते हैं वो छूट जाते हैं, कुछ लोगों का डेथ, या कई दोस्त ऐसे हैं या उनका आसपास के लोग हैं उनको कोई इस तरह शारीरिक या मानसिक समस्या हो गई उसको लेकर के, और सबसे ज्यादा उनको इश्यू आता है डिपेंडेंसी, एक होता है ना कि उनको लगता है कि वो निर्भर हो रहे हैं लोगों के ऊपर, हाँ वो बोझ ना बन जाए लोगों पर, तो इस बात का डर रहता है कि कहीं ना कहीं, एक वर्ड लोग नहीं कहते सठियाना, सुना होगा कि 60 के बाद ये वो तमाम जो छीणता आने लगती है शरीर के अंदर, वो थोड़ा सा मेंटली और फिजिकली दोनों, तो उसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आदमी कई बार अपने पूरे जीवन में देखता है, एक आकलन करता है कि मैंने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, क्या कमाया, तो जब उसका आकलन करता है तो कई बार वो अपने आप को, जब वो एक बैलेंस करता है, इस बात से भी उसको दुख होता है, इस बात से भी उसको एक मानसिक पीड़ा होती है कि मेरा लाइफ में जो अचीव करना चाहता था वो अचीव नहीं कर पाया, ऐसा कर सकता था, वैसा कर सकता था, तो ये सब जो तमाम कारण होते हैं जिसकी वजह से समस्याएं उत्पन्न होती
1: हैं। अच्छा, चर्चा के दौरान आपने अभी बताया सर कि जैसे जैसे उनका शरीर कमजोर होने लग जाता है तो उसका असर मन पे उनको लगता है कि होता है, जैसा मुझे लगता है ये, तो क्या मन वाकई ऐसा होता है क्या कि हमारे शरीर के साथ, हमारे जो तमाम श्रोता हैं वो मुख्यतः अभी बुजुर्ग ही हैं जो इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, तो आपके माध्यम से मैं चाहता हूं कि ये जो संदेश है उन तक जाए कि क्या वाकई में शरीर कमजोर होने पे हमारा मन कमजोर होता है।
0: देखिए, ये तो ट्रेनिंग की बात है, टेम्परामेंट की बात है, किस तरह से कौन देखता है चीजों को। कुछ लोग होते हैं कि कहते मन के हारे हार, मन के जीते जीत, तो मन से आप हार जाते हैं, मान लेते हैं कि मैं अब बूढ़ा हो रहा हूं, मेरा शरीर, जाहिर सी बात है शरीर है, आप यंग थे तब भी बहुत सारी समस्याएं आती थी, अब आप बुजुर्ग हैं तो एक टैग लगा लेते हैं, वो दिमाग में जो एक टैगिंग होती है ना कि मैं बूढ़ा हूं, वो जो एक छप जाता है कि मैं बूढ़ा हूं, तो बूढ़ा एक शब्द अपने आप में एक कमजोर और एक असहाय प्रतीकात्मक एक चिन्ह या लक्षण कह सकते हैं
1: जी।
0: तो पहली बात तो मानने वाली बात है कि भाई मैं बूढ़ा हूं, ये तो एक शारीरिक, अब हो सकता है कि आपका शरीर एक एज जिसको कहते हैं एक नंबर है, हो सकता है कि आप 40 के थे, 55 के हो गए, लेकिन बुढ़ापा सिर्फ बुढ़ापा नहीं होता, बुढ़ापा बहुत सारी पॉजिटिविटी लेकर के आता है, आपके पास एक एक्सपीरियंस होता है सबसे बड़ी बात। दूसरी चीज क्या होती है कि आप जीवन के एक ऐसे दौर में जा रहे होते हैं जहां पे आपके अंदर बैलेंस आता है, क्योंकि आप जिंदगी के हर रंग को जी चुके होते हैं
1: जी,
0: है ना, दुख छाव, है ना, अब ये उस अवस्था में है जहां पर आपके पास एक पूरा गहरा नॉलेज है, ज्ञान है, आपके पास स्किल है, जो आपके पास एक नए तरीके से उसको सांचे में ढाल करके एक नया आयाम सामाजिक स्तर पे लोगों के लिए आप फायदा पहुंचा सकते हैं
1: जी।
0: तो कहते हैं ना कि अब ठीक है, शरीर आपका कब दुख में होता है, जब आप मानसिक स्तर पे ठीक नहीं रहते हैं तो उसका भी एक नेगेटिव इफेक्ट आपके शरीर पे पड़ता है, तो जब मन से खुश रहेंगे ना तो आपका शरीर भी खुश रहेगा, छोटी मोटी चीजें आपको नहीं आएंगी प्रॉब्लम, क्योंकि आप तनाव में होते हैं तो ये जाहिर सी बात है कि जो आपका इम्यूनिटी है, वो जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बेहतर रहता है। अगर जो आप मानसिक रूप से कमजोर हैं या आप ज्यादा इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड हैं, आप तनाव में ज्यादा जी रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसका शरीर पे, पेट पे असर पड़ता है, दिमाग पे असर पड़ेगा, आपके मन पे असर पड़ने की वजह से आपकी मेमोरी, याददाश्त कमजोर होने लग जाएगी। तो एक स्टेबल अवस्था में रहने के लिए आपको हमेशा ये चीज ध्यान रखना है कि मुझे एक एंगेजमेंट रखना है और मैं जो स्किल रखता हूं, है ना, कोई भी आदमी हो, हर आदमी में कोई ना कोई क्वालिटी होती है, और जब वो एज के साथ साथ उसकी क्वालिटी भी और इन्हांस होती चली जाती है
1: जी,
0: तो बहुत अच्छा सदुपयोग कर सकते हैं उसका।
1: सर, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जो एक मुख्य

आपने जो कारण बताया कि ये मानसिक समस्याएं जो होती है उसमें एक अकेलापन जो होता है, जैसे एक कोई अगर बुजुर्ग हैं वो तमाम अपने जीवन में अगर 24 घंटे ले तो 24 घंटे में 10 घंटे 12 घंटे वो काम करते हैं, किसी न किसी संस्था से वो जुड़े रहते हैं जहां पे दिन का वो 8 से 10 घंटे लगाते हैं, वो उस जगह में काम करते हैं, लेकिन जब वो रिटायर कर जाते हैं तो वो 8 से 10 घंटा जो होता है वो वहां पे उनके लिए कुछ करने को होता नहीं है।

0: लिए कुछ करने को होता नहीं है, जहां पे वो हमेशा एक अकेलापन महसूस करते हैं और अपने आप को कहते हैं कि एक बोझ की तरह वो महसूस करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे तमाम श्रोता हैं, जो बुजुर्गन हमसे जुड़े हुए हैं, उन्हें ये बताइए कि वो जो 10-12 घंटे जो उनके पास खाली रह गया है उसका सदुपयोग कैसे कर सकते हैं ताकि इससे उनका भाई मानसिक स्वास्थ्य बना रहे और साथ ही साथ जिस माहौल में वो रह रहे हैं वहां का भी स्वास्थ्य बना रहे।
1: देखिए मैं एक यंग अपने आप को मान रहा हूँ और मेरे माता पिता भी बुजुर्ग हो रहे हैं। जो वातावरण है या जो हमारी लाइफ है तो साइकिल है कि हर आदमी कल को हम भी बूढ़े हो जाएंगे, लेकिन वो बूढ़ा एक सोचने वाली जो वर्ड बुजुर्ग जो हम यूज करते हैं ना कि बुजुर्ग, बुजुर्ग में सबसे अच्छी बात क्या होती है कि जो 8 घंटे आप काम करते थे, मान लीजिए आप अब आप उस अवस्था में आ गए हैं जहां पे आपके पास 10 घंटे अब आपको अपनी जिंदगी जीने के लिए मिल रहा है, इस तरीके से देख सकते हैं। ये सब कुछ माइंडसेट का है, आप किस मानसिकता के साथ किस चीज को कैसे देख रहे हैं। अब एक दूसरे ड्यूटी से विदा ले रहे हैं, अब आपका काम हो गया, दूसरा आदमी आएगा उस चीज को और आगे लेके जाएगा। एक कहते ना बैटन, हम दौड़ते हैं जब रिले रेस होता है तो सामने वाला उसको पकड़ा देता, वो लेके अब दौड़ेगा। तो ऐसे में होता है कि एक जिम्मेदारी खत्म होगी तो अब दूसरी एक सामाजिक स्तर पर आपकी जिम्मेदारी है। देखिये भारत एक बहुसंख्यक देश है जिसमें संख्या जो है 140 करोड़ के आसपास है, तो बहुत कुछ है करने को। आप आइए जहां पे आप आ रहे हैं वहां पे आपकी कोई हॉबी रह गई हो अधूरी तो उसको आप पूरी करिए, साथ में अगर जो आपको पढ़ना लिखना आता है आप चीजों को समझते हैं तो आसपास के जो नीडी लोग हैं, जो गरीब तबके के जिनका हो सकता है आर्थिक स्तर उतना अच्छा नहीं हो, तो उनको आप पढ़ा लिखा सकते हैं, कुछ नया आप स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं, कोई एनजीओ के साथ या खुद का एनजीओ आप स्टार्ट कर सकते हैं, कोई कला के माध्यम से आप जिस भी क्षेत्र में है उस क्षेत्र में आपको लगता है कि आपको एक महारत हासिल है तो आप आइए उस एरिया में, उन लोगों के लिए काम करिए, उन लोगों को स्किलफुल बनाइए जो युवा पीढ़ी है, ताकि देश में एक पॉजिटिव योगदान वो लोग दे सके जिनको आप सिखा रहे हैं। वो 10 घंटे कहीं खाली नहीं गए, 24 घंटे हमारे दिन के होते हैं, तो वो आपको तय करना है कि आप वो जो 8 घंटे आप कंपनी के लिए या किसी इंस्टीट्यूशन के लिए देते थे या XYZ आप कहीं भी काम करते थे, वो अब आप जाकर के सामाजिक स्तर पर लोगों को देना है। तो इससे आपको भी एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन होगा, लोगों को भी एक आप ट्रेंड कर पाएंगे तो उनकी एक भागीदारी बढ़ेगी हमारे समाज में, और जिस एरिया में आप रहते हैं अपने अपने एरिया को और क्वालिटी ऑफ लाइफ एनहेंस हो जाएगी, लोगों की स्किलफुल होंगे लोग, और कहते हैं डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट रूप से इसका हमारे समाज पे एक पॉजिटिव इफेक्ट आएगा
0: जी।
1: तो अब मोटिवेशन, जैसे मैं ही हूं अब मनोचिकित्सक हूं, कल को मैं जब बुजुर्ग होऊंगा तो मैं इस स्किल को कैसे इस्तेमाल कर सकता हूं या कुछ और नया करना चाहता हूं जो करने को रह गया है। हो सकता है कि आफ्टर माय रिटायरमेंट, रिटायरमेंट इज अ न्यू जर्नी, एक कहते हैं ना एक नई तरीके से एक जर्नी स्टार्ट होती है, एक नई जिंदगी की नई शुरुआत। तो सिर्फ परिवार की नहीं, मुझे लगता है देश ही हमारा परिवार है, और जिस एरिया में हम रहते हैं, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, सोसाइटी हमारा परिवार है, तो सोसाइटी को भी बेहतर बनाना मेरी ही जिम्मेदारी है। तो मुझे लगता है कि वहां पे एक हम अपना सार्थक और एक पॉजिटिव सकारात्मक योगदान दे सके।
0: अच्छा, अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए और अपने मानसिक स्थिति को और भी ज्यादा दुरुस्त रखने के लिए बुजुर्गों को क्या कुछ करना चाहिए?
1: मुझे लगता है कि सबसे पहले उनको उन नेगेटिविटी से दूर रहना चाहिए जो अपने अंदर वो क्रिएट कर लेते हैं कि अब मैं बूढ़ा हो गया, मुझे कोई नहीं पूछेगा, अकेलापन हो गया है मुझे, या कई बार ये उनको लगता है कि अरे अब लग रहा है कि लोग मेरे को पूछेंगे नहीं, मेरी पूछ कम हो जाएंगी, या छोटी छोटी बातों को वो दिल से लगा लेते हैं। उससे अच्छा है कि लोगों को उनके हाल पे छोड़िए। सबसे पहले आप अपनी नियमित दिनचर्या तय करिए, क्योंकि देखिए शरीर के हिसाब से आप पहले तो तय करिए कि मुझे क्या करना है, कितना खाना है, कब सोना है, कब उठना है, क्या हेल्दी फूड्स खाने हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करना है और अच्छे लोगों की संगति में रहना है। आपके पास अगर जो आप दादा हैं, दादी हैं, आप किसी के नाना है, नानी है, बच्चों के साथ कनेक्टिविटी बनाए रखिए। देखिए आप एक रिजिडिटी होती है ना, कहते हैं कि कई बार लोग बहुत रिजिड होते हैं, छोटी छोटी बातों को ना मानते नहीं है, सुनते नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक पुराने और नए का जो मिश्रण होगा ना, थोड़ी उनको भी सुनिए, थोड़ा अपने आपको फ्लेक्सीबल रखिए। सबसे ज्यादा जरूरी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है कि अरे नई नई चीजों की सीखने की कोशिश करिए, नई नई टेक्नोलॉजी है, क्योंकि मन एक ऐसा चीज है ना कि मन कभी बुजुर्ग नहीं होता है, मन हमेशा जवान रहता है
0: जी,
1: है ना, मन का कोई उम्र नहीं होती
0: जी,
1: है ना, ये तो सब चीज से बहुत परे है ये। तो मुझे लगता है कि मन को लगाने के लिए, मन को मनाने के लिए और मन को बहलाने के लिए सकारात्मकता बहुत जरूरी है। वो आपको हर इंसान में देखने को मिलेगी। हर इंसान में कुछ अच्छाइयां कुछ बुराइयां होती हैं, तो सबसे पहले आप अपने अंदर देखिए कि मुझे अपने मन को खुश रखने के लिए मैं कहां कहां पे जुड़ सकता हूं, किस तरीके से जुड़ सकता हूं, परिवार में मेरी क्या सहभागिता होगी, मैं उनसे संवाद

0: खुल के कुछ बुरा लग रहा हो तो मैं इरिटेट ना हूं, फ्रस्ट्रेट ना हूं, बात करूं, ऐसी बात है। पहले भी ओपिनियंस डिफरेंट होते थे लोगों के, अब भी हैं, बट आप ये देखेंगे कि अरे मेरी एज की वजह से ये हो रहा है, तो फिर वही बात है कि वो समझने और मानने और परसेप्शन की बात है
1: जी,
0: है ना। तो आप एक्सरसाइज, लोगों के साथ मिलना जुलना, हर दिन कुछ नया सीखना, आपके नाती पोते हैं उनके साथ खेलना, उनके साथ नई नई चीजें सीखना, चलो आज पेंटिंग सीख लेते हैं, चलो मैं तुम्हें ये सिखाता हूँ, कहानियां सुनाना, कहानी लिखना, किताबें लिख सकते हैं अगर जो आप कुछ अपने जो जीवन के अनुभव को, अगर जो आप रोज एक एक पन्ना भी लिखते हैं, दो दो पन्ने लिखते हैं
1: जी,
0: गार्डनिंग कर सकते हैं या कुछ जो भी आपको पता है, अगर जो आपको लगता है कि आपके इस जीवन में विदा लेने से पहले इस समाज को देकर के आप जा सकते हैं, तो आपके पास शायद, मेरे पास शब्द कम है, बताने को कम है, इससे ज्यादा आपके पास स्किल है, इससे ज्यादा आपके पास अनुभव है, उससे बड़ा कुछ दुनिया में होता नहीं है मुझे लगता है। तो मुझे लगता है ये सारी चीजें करके एक बैलेंस जिंदगी अपने साथ, अपने परिवार के साथ आप व्यतीत कर सकते हैं
1: जी।
0: बस अड़ना नहीं है किसी चीज के लिए
1: जी।
0: और एक बैलेंस डाइट और डॉक्टर के साथ हमेशा एक मिलते जुलते रहिए, एक प्रॉपर टाइम पे अपना बॉडी का, अपने फिजिकल मेंटल असेसमेंट कराते रहिए
1: जी। जैसे समाज में एक कथन है कि एक बुजुर्ग जो है वो बच्चे के समान होता है, तो कुल मिलाकर आप भी वही कहना चाहते हैं कि अगर समाज आपको एक बच्चे की तरह मानता है तो आप भी अपने आप को एक बच्चे की तरह ही मानिए और अपने मन को एक बच्चे की तरह ही रखिए, और रोज जो है जो नई चीजें सीखने को अगर अवसर मिले तो वो आप कर सकते हैं और नए काम कर सकते हैं।
0: एक होता है, देखिए बच्चा बनना चाहिए बट बच्चे के साथ आपका विवेक है। देखिए बच्चे में ना वो विवेक नहीं होता है, वो उस चीजों को उस स्तर पर समझ नहीं सकता क्योंकि बच्चा तो बच्चा होता है
1: जी।
0: लेकिन आपका मन बच्चा जरूर है पर आपके पास बुद्धि है, विवेक है, उस बुद्धि और विवेक का भी इस्तेमाल करना है। जिद करिए, खुश रहिए, जॉय करिए लोगों को, लेकिन बच्चा बन के भी रहिए, लेकिन उस बच्चे में विवेक स्तर को बेहतर रखिए, तब आप समझ पाएंगे कि आप कहां बच्चा बनना और कहां नहीं बनना।
1: आगे इस चर्चा को सर आगे बढ़ाते हैं। हमारे इस कार्यक्रम में कुछ ऐसे बुजुर्ग भी जुड़े हुए होंगे जो सुन रहे होंगे हमें, जो अगले 10 साल में वो इस स्थिति में आ जाएंगे जब उनका रिटायरमेंट होगा या अगले 15 साल में रिटायरमेंट उनकी होगी, तो सर इस तरह की समस्याओं से बचने के लिए वो अभी से कैसी तैयारियां रखें ताकि रिटायरमेंट के बाद जो एक अकेलापन या फिर जो एक मानसिक समस्याएं जो उनको होती है उनसे वो बच सकें, इसके बारे में आप हमारे श्रोताओं को बताएं।
0: मैं देखिए दो तीन चीजें सबसे महत्वपूर्ण मानता हूं जीवन में। कहते हैं ना कि आज को जिंदगी में जब हम कल देखते हैं तो जब बहुत कुछ हमारा आज सिखा देता है कि आज कोई चैलेंजेस है तो इस आज के चैलेंजेस को मैं कल में कैसे देखता हूं
1: जी?
0: तो मेरी क्या तैयारी होगी, मेरे गोल्स क्या होंगे, है ना। जीवन में मैं जब आज से 10 साल बाद अपने आप को देखूंगा तो सबसे पहले आर्थिक निर्भरता ना आए उसके लिए कुछ अपने गोल प्लान करके रखिए, तो
1: फाइनेंशियल
0: जो गोल्स होते हैं। उसके अलावा फिजिकली फिट रहने के लिए, अगर जो आपकी कोई ऐसी आदत है स्मोकिंग की है या ड्रिंकिंग की है या कोई ऐसी आदत है कि आप आज किसी इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, कहीं कर रहे हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं, कोई दिक्कत नहीं, कल को आप परिवार में जाएंगे तो हो सकता है कि आपको कोई ड्रिंकिंग हैबिट हो, आपको कोई गुस्सा करने की आदत हो
1: जी,
0: या आपको एकदम 4 बजे एकदम चाय चाहिए ही तो चाहिए, हो सकता है अभी आपके पास नौकर चाकर हो, बहुत सारे आपकी सुविधाएं हो, गवर्नमेंट जॉब में हो, तो कल को ये नहीं रहेगी
1: जी,
0: अचानक से वो चीजें हटेंगे तो क्या आप उसके लिए, तो धीरे धीरे आप वहां पे अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना शुरू करिए, कोशिश करिए कि कम लोगों को जरूरत पड़े आपको असिस्ट करने के लिए, है ना
1: जी।
0: क्योंकि कई बार लोगों को क्या रहता है कि आज तक बस 15-20 लोग हैं, आप ऐसी स्टेज पर हैं या ऐसा स्टेटस है आपका जहां पे लोग ही लोग हैं आपके पास, तो ये भूल जाइए कि कल को हो सकता है कि लोग आपके पास अचानक से नहीं रहेंगे, तो हाउ विल सर्वाइव
1: जी। जी
0: जैसे कोरोना में जहां लोग जैसे थे फंस गए थे, सबको अपनी ही मदद करनी पड़ रही थी, तो क्या इस प्रस्पेक्टिव से आप जिंदगी जी रहे हैं कि आज मेरे पास 4 लोग हैं, कल को 4 लोग नहीं रहेंगे, तो मैं क्या अपने जीवन को उतनी ही सक्षमता से जी पाऊंगा
1: जी?
0: तो एक चीज तो ये, दूसरी चीज ये कि अपने लाइफ पार्टनर जो आपकी वाइफ है उसके साथ एक बेहतर एडजस्टमेंट बनाइए, समय उनको भी दीजिए। कभी कभी क्या होता है ना कि हम उनको कोई भाव ही नहीं देते हैं, जब हम बूढ़े होते हैं तब हमें होता है कि अरे वो भी है मेरे लाइफ में, जब कोई नहीं मिलता है तो फिर हम उनके पास फाइनली जाते हैं
1: जी।
0: तो चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, स्त्री हैं पुरुष हैं, पुरुष हैं तो स्त्री का सम्मान करिए और उनको पूरा एक लाइफ में जो कहते हैं इम्पोर्टेंस, वो अभी से ही देना स्टार्ट कर दीजिए। बच्चे हैं, बच्चों के साथ प्रॉपर संवाद रखिए, दोस्त बना के रखिए। अगर जो आप बहुत अकेले अकेले रह रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि चीजें गुजर जाएगी जिंदगी तो बहुत मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल होता है एक दिन काटना। तो अभी से ही लोगों के साथ मिलना जुलना स्टार्ट कर दीजिए। आजकल देखिए मोबाइल के दौर में वैसे ही लोग बहुत ज्यादा सोशली डिवीट हो गए हैं, लोग कोई किसी से मिलना नहीं चाहता है
1: जी।
0: तो अभी दोस्त बनाना शुरू कर दीजिए, गांव घर में जाकर के आप तय कर लीजिए कि क्या करने वाले हैं, उस एरिया जिस एरिया में काम करने वाले

0: इस एरिया में क्या क्या जरूरत पड़ेगी, वो आप कितना है आपके पास कितना नहीं है। अगर किसी गांव घर में जाने वाले हैं, कहीं जाके स्कूल कॉलेज आपका कुछ भी है नया, तो उसको आज से ही उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। क्या क्या चाहिए, कुछ नया आपको सीखना है तो उसका स्किल आज से ही धीरे धीरे डेवलप करना शुरू कर दीजिए।
1: जी
0: तो
1: जी
0: मुझे लगता है कि आज जो हम जीते हैं वही आने वाला कल होता है,
1: जी
0: क्योंकि कल ही आज है और गुजरा हुआ भी कल ही आज ही था।
1: जी
0: तो आज में रहने के लिए और कल को ठीक करने के लिए आज बेटर रखना बहुत जरूरी है। तो इन सारी चीजों को ध्यान रखेंगे और खासकर अपना हेल्थ है
1: जी
0: ना, समय समय पे अपना चेकअप कराते रहिए। मेंटल चेकअप को हम, मेंटल हेल्थ को बिल्कुल भी हम इग्नोर करते हैं, बहुत
1: जी
0: ज्यादा में इग्नोरेंस है मेंटल हेल्थ को लेकर के। इस पे भी ज्यादा से ज्यादा आप जोर रखिए कि समय समय पर मनोचिकित्सक से मिलते रहिए, आपकी जो भी एज वाइज जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स होते हैं वो कराते रहिए,
1: जी
0: और फिजिकल फिटनेस बनाए रखिए, ताकि आप फिजिकल फिट रहेंगे तो मेंटली भी फिट रहेंगे। और मेंटली फिट रखने के लिए आप जो भी डेली बेसिस पे काम कर सकते हैं, एक कहते हैं ना, हॉबी आपकी जरूर होनी चाहिए,
1: जी
0: और जीवंत रखिए अपने आप को।
1: जी
0: जीवंत रखने के कोई पैसे नहीं लगते, लाइव रहिए, लोगों से जुड़े रहिए, कनेक्टेड रहिए, और खूब सारा प्यार दे सकते हैं। एक्सपेक्टेशन जितना कम रख सकते हैं उतना रखिए, खुद से भी एक्सपेक्टेशन रखिए, पर जरूरी नहीं है कि वो चीज जैसा सोच रहे हैं वैसा ही पूरा होगा,
1: जी
0: ये बिल्कुल भी इस बात की गारंटी नहीं है।
1: अच्छा, मैं एक सवाल मेरे मन में आ रहा था सर, जैसे कि हमारे जो घर में जो वृद्ध लोग होते हैं, अक्सर उनके मन में कई सारे विचार आते हैं, कई सारे जो हैं वो बात कहना चाहते हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से अपने भावनाओं को स्पष्ट रूप से वो बता नहीं पाते हैं। कई बार झिझकते हैं बताने से कि पता नहीं जो हमारे घर में मेरे हमारे जो बेटे हैं या जो हमारी बहू हैं उनको पता नहीं कैसा लगेगा कैसा नहीं लगेगा। पहला सवाल सर आपसे ये है इस संदर्भ में कि ये कितना खतरनाक हो सकता है, और दूसरा कि वो इसको कैसे अपने जो भी उनके साथ रह रहे हैं उनके साथ ये साझा करें।
0: ये बहुत एक चैलेंजिंग बात है, आप सही कह रहे हैं। ये मैक्सिमम लोग ना मन की बात मन में ही रख लेते हैं,
1: जी
0: कन्वे नहीं करते हैं। फिर जब कन्वे करते हैं, जब कुछ बहुत ऐसे बात बिगड़ने को होती है या बहुत खराब स्तर पे पहुंच जाती है, तो लोग नहीं कहते हैं कि मैं, मेरे दिमाग में था, मेरे मन में तो चल ही रहा था एक दिन ये होगा। तो एक दिन जब आपको चल रहा था तो उसी वक्त कहना चाहिए था। देखिए,
1: जी
0: संवाद, कम्युनिकेशन एक ऐसा चीज है ना कि हर इंसान को हर इंसान से रखना चाहिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो,
1: जी
0: क्योंकि आप भी इस दुनिया में, आपका एग्जिस्टेंस है। कहते हैं ना कि एक एग्जिस्टेंशियल साइकोथेरेपी एक अप्रोच है ना।
1: जी
0: तो एग्जिस्टेंशियल की जब हम बात करते हैं तो आप भी एग्जिस्ट करते हैं जिंदगी में, सामने वाला भी एग्जिस्ट करता है, वो भी इंसान है, आप भी एक इंसान है।
1: जी
0: आप जब बहुत ज्यादा किसी चीज को लेकर जजमेंटल हो जाते हैं कि मैं कहूंगा तो ऐसा उसको लगेगा, ये आपका अपना थॉट
1: जी
0: है ना। आप जो भी सोच रहे हैं, जो भी समझ रहे हैं सामने वाले को, आप समझ रहे हैं, पहले आप कह के देखिए। और मुझे लगता है किसी बात पे जब आप बात करेंगे तो एक सवाल का जब जवाब आएगा तो फिर उसी जवाब से ना एक नया सवाल खड़ा होगा,
1: जी
0: और आप जाहिर सी बात है सक्षम है। तो पहले से कोई प्री कंसीव नोशन मत बनाइए
1: जी
0: कि ऐसा मैं कहूंगा तो ऐसा वो लग जाएगा, लग जाए,
1: जी
0: बट जो सच्चाई है वो आपको सामने रखना ही चाहिए, प्यार से है ना, बिना लड़े झगड़े।
1: जी
0: और सामने वाला इस तरीके से करता है तो मुझे लगता है कि सामने वाले से फिर एक बार बात करनी चाहिए, नहीं लगता है तो आप किसी मनोचिकित्सक के पास आप अपनी बात रख सकते हैं, या घर का कोई और सदस्य है
1: जी
0: जिसको मुझे लगता है जोड़ करके इस बात को कहनी चाहिए, तो जरूर कहना चाहिए, क्योंकि घर है मेरा तो मेरी ही जिम्मेदारी है,
1: जी
0: कोई और नहीं आएगा उस चीज को ठीक करने के लिए।
1: जी
0: तो आपकी कोई मन की बात है तो, क्योंकि मन में रखने से वो एक घाव की तरह होता है,
1: जी
0: वो कैंसरस हो जाता है, तो कैंसर जब फोर्थ स्टेज में पहुंच जाएगा तो फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो
1: जी
0: बात भी ऐसी होती है कि जब आपको बहुत दर्द देने लग जाए तो इससे अच्छा कि उसको निकाल के कह लीजिए, इससे उनका भी क्या इस पे मानना है, उनका क्या इस पे एक परसेप्शन है आपको पता चलेगा, आपका क्या मानना है वो आज ही चीजें क्लियर हो जाएंगी।
1: जी
0: और क्लियरिटी ना बहुत दूर तक आपको एक दायरा तय करती है कि जिंदगी जीनी कैसी है,
1: जी
0: तब आप तय कर पाएंगे कि मुझे कहाँ कैसे एडजस्ट करना है।
1: जी जी
0: बिना कहे ही सब कुछ आप झेलते जाएंगे, अपने ऊपर लेते जाएंगे, या लोग समझ लेंगे तो हो सकता है कि उसमें उतनी समझ ना हो जैसा आप समझ रहे हो।
1: जी
0: तो
1: जी
0: इसीलिए बात करना बहुत जरूरी है, और ये बात जीवन की है, एक बार परिवार की है, बात खुद के परिवार की है, तो मुझे लगता है उसमें कहने में क्या
1: जी
0: मुश्किल है।
1: जी कुल मिलाकर संवाद का जो अवसर है वो हमेशा खुला रखना चाहिए।
0: हमेशा खुला रखना चाहिए।
1: जी अच्छा, अब दूसरे पक्ष की बात करते हैं सर, कि जो हमारे कई श्रोता ऐसे हैं जो सुन रहे होंगे वो युवा होंगे और उनके घर में ही बुजुर्ग होंगे, तो घर का माहौल कैसा होना चाहिए जहां पे बुजुर्ग जो है हमारे वो अपने जीवन का निर्वहन बहुत शांति से, अपने जीवन के जो अंतिम समय है वो खुशहाली के साथ और शांति के साथ वो बिताएं और हमेशा खुश रहें, इसके लिए जो घर के लोगों की जिम्मेदारियां हैं वो कैसी होनी चाहिए, कैसा माहौल रखें।

0: हैं वो इसके बारे में सर थोड़ा बता दें। सर
1: देखिए अंतिम समय की बात करते तो अंतिम तो किसी को पता नहीं कि किसी का अंतिम कब है
0: जी।
1: ये लाइफ बिल्कुल अनसर्टेन है, अनिश्चितता की बात करते हैं क्योंकि अनिश्चित है, पता नहीं कब कब चीजें होनी तय है, निश्चित है बट कब होंगी किसी को कुछ पता नहीं है। तो बुजुर्ग होकर के मृत्यु का इंतजार करना है, मुझे लगता है बिल्कुल भी ये सही प्रारूप नहीं है। मैंने बात करा था ना एग्जिस्टेंशियल, जिसको हम अस्तित्ववादिता कहते हैं, आप अस्तित्व में हैं, जीवन में आपका गोल है, पर्पज है, आप भी जीने हैं, आपका जीवन तब भी 0 साल के थे तब भी महत्वपूर्ण था, आज आप 90 साल 95 साल के आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हाँ थोड़ी सी शारीरिक क्षमता आ गई है क्योंकि वो एज फैक्टर जिसको हम कहते हैं। देखिए परिवार का एक बहुत बड़ा रोल आता है, उसी आदमी ने एक पूरा परिवार खड़ा किया है, वो उस पेड़ के तने की तरह है जो धीरे धीरे धीरे धीरे कई डालियों को जन्म दिया, उसमें कई पत्ते हैं, कई चिड़िया के घोंसला उसमें आके लगते हैं, है ना, उसपे हर कोई आके चिड़िया रहती है, इंसान भी उसी पेड़ के छांव के नीचे आके बैठता है, सुस्ताता है, जिसको हम कहते हैं ना जब थक हार के जाता है तो पेड़ के नीचे बैठ जाता है, राही जिसको कहते हैं ना कि कोई राही है वो भी जाकर के उसी पेड़ के नीचे बैठता है।
0: जी।
1: वो बुजुर्ग वैसे ही पेड़ की तरह है जो छाया देता है, फल भी दिया समय के साथ, अब समय के साथ उसकी पत्तियां भी हो सकते हैं थोड़ी पत्तियां झड़ जाए, बट वो पेड़ हमारे ही, हम उसी पेड़ से हम उत्पन्न हुए हैं
0: जी।
1: तो उसका एग्जिस्टेंस खतरे में, यानी मेरा एग्जिस्टेंस खतरे में, क्योंकि आप जो आज अपने बुजुर्गों के साथ करेंगे कल आपका बच्चा भी वही आपके साथ करेगा
0: जी।
1: ये तो जीवन का ऐसा साइकिल है कि आज मैं हूं कल कोई और होगा
0: जी।
1: बड़े कहने वाले तुमसे बड़े सुनने वाले, है ना। तो परिवार का एक सबसे बड़ा पहला प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि उसको बुजुर्ग को इस तरह बुजुर्ग मान के साइडलाइन नहीं करें, उनको भी हर में शामिल करें। हो सकता है उनसे कुछ गलतियां हुई है जीवन में, उसको लेकर के कोई नेगेटिव परसेप्शन ना बनाए, वो गुजर गया, वो बात चली गई, या कई बार कहते हैं ये तो वैसे थे, इन्होंने बड़ा तंग किया है मुझे, अब मैं इनको नहीं, ठीक है उनका ऐसा देखना था, आप भी वैसी हो जाएंगे तो उनमें आपमें फर्क क्या है, उनको रियलाइज करा दीजिए उनके साथ बेहतर करके
0: जी
1: कि हाँ उनके लिए आपने बहुत अच्छा किया, राइट। उनको हर सुख दुख में शामिल करिए, बर्थडे हो कुछ भी हो, लोगों को लगता है अरे इनको नहीं चाहिए, अरे इनको क्या है
0: जी,
1: आप
0: जी,
1: उनको अच्छा खाना पीना अच्छा पहनना वैसे ही एहसास दिलाइए जैसे आपके घर के हिस्सा है, उनको अलग से कुछ भी मत मानिए
0: जी।
1: आज हम ये कार्यक्रम जरूर बुजुर्गों के लिए कर रहे हैं, बट ये करना इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि लोग कई बार वंचित रह जा रहे हैं चीजों को करने से, बोझ लगने लग जा रहे हैं, इसलिए भारत जैसा देश जहां इतनी संस्कृति की बात करते हैं उसमें वृद्धाश्रम होना ठीक है कई कारणों से हो सकता है, हो सकता है सबके घर में नहीं हो देख रेख करने वाले, बट जिनके घर में लोग हैं उनको जाके वृद्धाश्रम में रहना पड़ रहा है, तो इससे बुरा समय उस इंसान के लिए, इससे बुरा समय हो ही नहीं सकता,
0: हो ही नहीं सकता,
1: सब कुछ होके भी उसके पास कुछ नहीं है, वो कंगाल है। तो मुझे लगता है कि उनको समझिए, उनको प्रेम दीजिए, क्योंकि उसी प्रेम के साथ एक पिता, और मैं एक पिता भी हूं तो समझ सकता हूं कि अपने बच्चे को जब मैं बड़ा कर रहा हूं तो कितना सैक्रिफाइस करना होता है, है ना। आप एक बार खुद को महसूस करके देखिए कि जिस कितने जंग के साथ, कितने मतलब जंग लड़ी होंगे उन्होंने जीवन में आपको बचाने के लिए, डॉक्टर एजुकेशन, है ना, आप बुखार हो जाए तो पूरे रात रात मां बाप जाग करके आपकी सेवा करके आपको बड़ा किए, सिर्फ उनको कुछ चाहिए नहीं, बस उनको प्रेम चाहिए, एक रिस्पेक्ट चाहिए, और उनको एक आजादी चाहिए, उनको एक कमरे में बंद करके मत रखिए, सिर्फ कहानियां सुनने तक मत रखिए, है ना, कुछ अपनी कहानियां भी सुनाइए, रोज उनसे बात करिए, उनका कुछ फेवरेट है तो लेके आइए, उनको अपने साथ टहलने को लेके जाइए, हो सकता है वो थोड़ा धीरे धीरे चीजों को चलें कर पाए, लेकिन इरिटेट मत होइए, और सिर्फ स्टेटस पे हैप्पी पेरेंट्स डे और ये मम्मी डे पापा डे मत मनाइए, मुझे लगता है उसको जीवन के आत्मसात करिए, उस जीवन में आकर के रियलिटी को जिए आप
0: जी।
1: सच में उनको सम्मान करिए, प्रेम से रखिए, उनका खूब सारा खाना पीना, उनका जो फेवरेट है खिलाइए, उनको भी अच्छे अच्छे कपड़े कलरफुल कपड़े पहनाइए, माँ बाप आपके जीवन के सबसे बड़े वरदान हैं जो मिले हैं, और शायद मेरे माता पिता ने इस लायक मुझे बनाया, इसलिए आज ये हम प्रोग्राम कर पा रहे हैं, आप भी कर पा रहे हैं
0: जी।
1: तो जो सुन रहे हैं वो सबके लिए यही एक संदेश है कि कुल मिला जुला करके वो हमारे ही हैं, वो कहीं बुजुर्ग एक ठीक है बट वो एक्चुअल में हमसे कहीं ज्यादा फले फूले, और उनका दिमाग उनका शक्ति हमसे ज्यादा है, अनुभव हमसे ज्यादा है
0: जी।
1: तो एक बेहतर अनुभव आपको देंगे, हमेशा उनको आप एक बार शामिल करके देखें अपने जीवन में जी।
0: डॉक्टर लक्ष्मण जी यादव, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमसे इतनी सारी जानकारी आपने साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे वट वृक्ष कार्यक्रम के अंतर्गत वृद्धावस्था में मानसिक समस्याएं, इस विषय पर डॉक्टर लक्ष्मण जी यादव से चंदन सिंह की बातचीत।
3: स्वास्थ्य फोन इन कार्यक्रम आरोग्य में इस बार दिनांक 26 जुलाई 2026 को

0: और हमारा फोन नंबर है 222-1052। वाराणसी का एसटीडी कोड है 0542। तो जरूर फोन करें और सुनते रहें कार्यक्रम आरोग्य।
1: हाँ, बॉडी में जो म्यूजिक है उसमें भी तो मैजिक है, इसमें जो रिदम है वो।
2: जी हाँ श्रोताओं, सुनते रहिए आकाशवाणी वाराणसी और हमसे जुड़े रहिए। अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने विचार हम तक पहुंचाएं, उन्हें हम पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम में शामिल करेंगे। हमारा ईमेल आईडी है pkld@varanasi.gmail.com। हमारा फेसबुक पेज है ऑल इंडिया रेडियो वाराणसी। ट्विटर हैंडल है @AIR वाराणसी। इसमें ए और वी कैपिटल लेटर्स में है। तो हमें सुनिए, फील कीजिए और लिख भेजिए अपने विचार। मीडियम वेव FM और न्यूज ऑन AIR ऐप पर अब हम हैं आपके साथ हर पल हर घड़ी।

0: 26 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम में आप सुनेंगे जानकारी इनफर्टिलिटी यानी निसंतानता पर, जिसके रिकॉर्डिंग के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं गुरुवार 23 जुलाई 2026 को प्रातः 10 बजे से 11 बजे के बीच। विषय विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर श्रुति उपाध्याय और हमारा फोन नंबर है 222-1052। वाराणसी का एसटीडी कोड है 0542। तो जरूर फोन करें और सुनते रहें कार्यक्रम आरोग्य।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। शास्त्रीय संगीत में सुनिए नीरज मिश्रा का सितार वादन, राग है बागेश्वरी।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे नीरज मिश्रा का सितार वादन, राग था बागेश्वरी। आपके साथ तबले पर संगति की थी श्याम कुमार मिश्रा ने। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।
1: स्वास्थ्य फोन इन कार्यक्रम आरोग्य में इस बार दिनांक 26 जुलाई 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम में आप सुनेंगे जानकारी इनफर्टिलिटी यानी संतान का पर, जिसके रिकॉर्डिंग के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं गुरुवार 23 जुलाई 2026 को प्रातः 10 बजे से 11 बजे के बीच। विषय विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर श्रुति उपाध्याय और हमारा फोन नंबर है 222-1052। वाराणसी का एसटीडी कोड है 0542। तो जरूर फोन करें और सुनते रहें कार्यक्रम आरोग्य।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। इस स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे, कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इस परिकल्पना की नींव बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबद्ध क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बैनर्जी को मानसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बैनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणी की।
1: आज श्री कल्याण बनर्जी ने हमारी महिला सांसदों के साथ असंसदीय भाषा एवं असंसदीय टिप्पणियां की है, जिसकी लिखित शिकायत माननीय अध्यक्ष जी को प्राप्त हुआ है। ये सदन की गरिमा के विरुद्ध है।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
2: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूँ कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
0: राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए। सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्ष के आचरण की कड़ी निंदा करते हुए इसे गैर जिम्मेदाराना और लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध बताया। विपक्ष के नेता

मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेल सुरक्षा में सुधार, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। लोकसभा में आज एक लिखित प्रश्न के उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि वर्ष 2014-15 में हुई 135 रेल घटनाओं की संख्या घटकर इस वित्त वर्ष में अब केवल 2 रह गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा ने कहा है कि नीट पेपर लीक के मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। श्री नड्डा ने कहा कि ये गंभीर मामला है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा कि सरकार संसद में नीट के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष चर्चा की अवधि तय करे और सभी पहलुओं पर खुलकर बात करे ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। उन्होंने विपक्ष से इस मुद्दे के समाधान के लिए सरकार का साथ देने की अपील भी की। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी स्टेशन अब यात्रियों के लिए खुल गए हैं। इससे पहले दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सुरक्षा कारणों से 17 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए थे। चीन के चांगझोउ में चल रहे चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स के पहले दौर में पीवी सिंधु ने हमवतन उन्नति हुड्डा को हराया। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अल्वी फरहान को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। वहीं लक्ष्य सेन ने जापान के युशी तनाका को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। के साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: दुर्भाग्यपूर्ण है।
1: इट इज डीपली अनफॉर्चुनेट दैट सम पीपल आर ट्राइंग टू यूज द स्टूडेंट्स एंड यूथ ऑफ आर कंट्री एज पॉलिटिकल टूल्स टू सर्व देयर ओन पॉलिटिकल इंटरेस्ट। अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आर गवर्नमेंट इज फुल्ली कमिटेड टू फुलफिलिंग द एस्पिरेशन ऑफ स्टूडेंट्स एंड यंग पीपल एंड एंश्योरिंग देयर वेलफेयर। लिसनिंग टू एवरी कंसर्न ऑफ स्टूडेंट्स एंड एड्रेसिंग देम इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल ऑफ अस।
0: उसका समाधान करना ये हम सबकी जिम्मेदारी है।
2: The Delhi High Court today sought responses from the Centre and Delhi Police on pleas alleging use of excessive force against protesters marching to Parliament on Monday. The court directed the authorities to preserve all relevant records in relation to the police action, including CCTV camera footage and videography. The court gave 4 weeks to the authorities to file their replies. Union Coal and Mines Minister G. Kishan Reddy today said the government has